0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

भूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओ, भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीश मजरामरमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी और समानता अथवा तुलना और कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके पांच मुख हैं और खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन और संगार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का और हम मन ही मन चिंतन करते हैं। शूला ही टंक घंटा शिशिणी कुलिशा नशाग्नभिर्दधानम दौर्भिर शीतांशु खंड प्रतिघटित जटा भारमौलिम त्रिनेत्रम नाना कल्पाभिरामापघन मभितमतार्थ प्रदम सुप्रसन्नम पद्मस्थम पंचवक्त्रम स्फटकमणि निभम पार्वतीशम नमामि। जो अपने कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल

0: सर्प परशु घंटा तलवार अंकुश वज्र पास अग्नि और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका और प्रत्येक मुखमंडल द्वितीया के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है, जिनके चंद्रमा और सूर्य और अग्नि ये तीन नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्षों के समान अपने भक्तों को स्थिर करने वाले मनोरथों से परिपूर्ण कर देते हैं, और जो सदा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजमान हैं, जिनके पांच मुख हैं तथा जिनका वर्ण स्फटिक के समान दिव्य प्रभा से आभासित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान सदाशिव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विवरासत शंभु सुजाना। सच है सुजान भक्तों की भक्ति का इससे परिचय मिलता है, यही मर्म श्री गुरु वशिष्ठ के इस वाक्य में भरा हुआ है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे हूँ मुनि नाथा, क्योंकि जब अगात हृदय श्री भरत जी ने कहा कि सो गोसाई विधि गति जही छय की, सकही को टाकी टेक जो टेकी, भुजही मोही उपाहू अब सो सब मोर अभाऊं, तब वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कह दिया, तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख विधि सपन हु नाही। वस्तुतः बात भी यही है, भगवान शिव तथा श्री वशिष्ठ जी को भवानी के मिटने वाले समर्थ भी तो राम भक्ति के प्रताप से ही मिली थी, नहीं तो

कारण श्री महादेव अथवा मुनि वशिष्ठ जी अपने देवपन या मुनिपन के बल से विधि अंक के मिटाने की सामर्थ्य तो रखते नहीं थे। यह अघटित सामर्थ्य भगवान की दया से और भागवत भक्ति के प्रताप से भक्तों के ही तो शक्ति है। अतः उन धर्म यह सिद्धांत रहता है कि हम तो तुम्हारे खुशी में खुश हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सती को परीक्षा लेने का आदेश करते समय

0: ऐ भगवान शिव ने इतना ही चेतना दे दिया था। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत्।

स्वरूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमेश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज फ्राइडे 14 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। कल जो मानस पाठ चल रहे हैं, कल दोहा संख्या 54 यानी दोहा नंबर 54 पर हम लोगों ने विराम लिया। माँ सती जो अपनी ओर से चारों ओर भगवान राम की सर्वव्यापकता की दर्शन कर रहे हैं, इसको तुलसीदास जी और विस्तार से बताते हुए आगे लिख रहे हैं। चलिए आज का पाठ हम लोग करें।

माता सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे।

उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी की बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे।

0: आज इसी चौपाय के साथ हम विराम लें, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

हसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयम् न पशुभ्यः। आर्यसभा मॉरिशस के पुरोहित रामसुंदर शोभन का सादर सुप्रेम नमस्ते और सुप्रभात। श्रावण मास की वेद चर्चा विषय में निर्भय होना पर विचार करूंगा। यह मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 22वां मंत्र है। प्रिय श्रोतागण, सारे संसार में परमपिता परमेश्वर का वास है। ईश्वर स्वयं चारों ओर अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहता है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं बचा है जहाँ ईश्वर का हाथ न गया हो। इस मंत्र में भक्त अपने ईश सर्वरक्षक से प्रार्थना करता है, हे महेश्वर दयालु, मैं डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ, मुझे कभी किसी मनुष्य या व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी घटना से भय न हो। मन में कभी कभी ऐसी ऐसी बातें सोच सोच कर व्यर्थ में भय पैदा हो जाता है। कभी किसी प्रकार आशंका करके मन को डर का डर बना रहता है। प्रिय श्रोतागण, अनेक बार ऐसा भी होता है कि भय इतना बलवान हो जाता है कि दिन भर मन मस्तिष्क में छाया रहता है, दिमाग से हटाओ हटता नहीं, भुलाने पर भी नहीं भूलता है, बलपूर्वक मन को किसी दूसरे काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक फिर वही चिंता भय आशंका आ घेरती है। आजकल वर्तमान समय में समस्याएं और भी गंभीर हो गई हैं। परिवार में आपसी तनाव के कारण भय उत्पन्न हो गया है। घरों में स्त्रियों का पुरुषों से भय है, बेटियों को गलियों में बदमाशों से डर है, बच्चों को माता पिता से भय है, पड़ोसी को पड़ोसी से भय है, अध्यापक को विद्यार्थी से, यहाँ तक पत्नी को पति से भय, भाई को भाई से डर बना रहता है, आदमियों को आदमी से अर्थात मनुष्य को एक दूसरे से भय रहता ही रहता है। इस समय संसार में भय और आतंक का तांडव नृत्य हो रहा है। प्रतिदिन कहीं न कहीं 50 से अधिक लोग अकाल के काल में समा जाते हैं। इसका महान कारण क्या है? अविश्वास। संसार का सामाजिक संतुलन बिगड़ गया है। झूठ,

0: छल कपट वर्ताव में न्याय का तनिक भी भाव नहीं। कब किसी पर कौन आक्रमण कर दे विश्वास नहीं है। संसार भोगवाद का पिटारा बन गया है। उस पिटारे में मनुष्य के धर्म अधर्म सत्य असत्य न्याय अन्याय उचित अनुचित आदर्श अनादर्श का ज्ञान सब बंद गया है। उसमें स्वार्थ का ताला लग गया है। ऐसा लग रहा है कि उस ताले में अज्ञानता की जंग लग गई है और ज्ञान की चाबी खो भी गई है। प्रिय श्रोतागण, आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: हमारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगल का सादर से प्रेम नमस्ते। और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम मूर्धासी राध ध्रुवासी धरुणा धर्त्रयसी धरणी आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा। यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 21। अर्थात कुछ अहंकार ग्रस्त पुरुष स्त्री को पुरुष की तुलना में न्यून बुद्धिमती न्यून शक्तिधारी दुर्बल प्राणी के रूप में हेय दृष्टि से देखते हैं। उनकी दोषपूर्ण मान्यता है कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम श्रेष्ठ है, अतः उसे अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। उनकी यह भी धारणा है कि पुरुष को ही न कि स्त्री को परिवार का प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार पुरुष की क्षमता स्त्री से कहीं अधिक ऊंच होती है। यजुर्वेद का निम्नलिखित मंत्र लोगों की धारणा को मिथ्या ठहराता है। पवित्र वेद स्त्री की स्थिति को ऊंच और श्रेष्ठ ठहराते हैं तथा उसके प्रति ऊंच सम्मान व्यक्त करते हैं। वैदिक धर्म के अनुसार स्त्री श्रेष्ठ व्यक्तित्व की धनी है, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है। यह स्त्री ही है जो परिवार की प्रमुख होने के नाते गृहस्थ की बुद्धिमत्ता पूर्ण देखभाल करती है, परिवार के सदस्यों का सावधानी पूर्वक पालन करती है और वंश की प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखती है। वह पुरुष की प्रथम अध्यापिका है, पुरुष की प्रथम पाठशाला उसकी माँ की ममतामयी गोद है। घर में सबसे बड़ी अर्थशास्त्री पुरुष नहीं वरन स्त्री है। यह स्त्री ही है जो घर को चलाती है, जो घर की आय तथा व्यय में बुद्धिपूर्ण सामंजस्य रखती है। संक्षेप में वही घर का स्तंभ और धुरी है, वही घर की संरक्षण तथा त्राणदाता है, वही शांति और समृद्धि की अग्रदूत है। अतः उसे उचित रूप में ही श्रेष्ठ पद की अधिकारिणी कहा जाता है। जो वेदों में सुलभ है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ओम शांति शांति शांति।

सब मनुष्यों को परमेश्वर की उपासना वेद के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा करने से मन, बुद्धि और आत्मा में पवित्रता का संचार होता है। जैसे सूर्य की किरणों में ऊर्जा होती है, वैसे ही भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही परमात्मा की भक्ति से बुद्धि प्रकाशित होकर निर्मल और दिव्य बन जाती है। अतः सब मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना से सुमति को प्राप्त करें और ईश्वर प्रदत्त ऐश्वर्य से लाभ उठाएं तथा सब जीवों के उपकार में सदा तत्पर रहें।

0: अंतरिक्षं शिवं तुभ्यं कल्पतां ते दिशः सर्वाः।
1: जीव के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं अत्यंत सुखकारिणी होवें। प्राण प्रद स्वस्थ वायु और जल अत्यंत शांतिदायक होवें। समुद्र और नदियां सब जीवों के लिए लाभकारी होवें। मेघ से युक्त अंतरिक्ष व आकाश सब जीव के लिए कल्याणकारी होवें। ईशान नैऋत्य आग्नेय वायव्य ऊपर नीचे ये सब उपदिशाएं जीव के कर्म में मंगलकारी सिद्ध होवें। जो लोग अधर्म को छोड़कर सब प्रकार से धर्म का ही आचरण करते हैं उनके लिए यह धरती एवं संपूर्ण सृष्टि के उपयोगी पदार्थ सुखकारक तथा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होवें।
0: ओ

0: पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनम् महत्।
1: हे जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों, सूर्य परमात्मा की व्यवस्था से बिना किसी आधार या अन्य साधन के अपनी कक्षा में गतिशील रहता है। इसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रलोक प्रकाशित होता है। अग्नि हिम, बर्फ व ठंड की औषधि है। अग्नि ठंड व शीतलता को समाप्त कर देती है। विशाल भूमि बीज बोने का स्थान है। इस सृष्टि में सूर्यलोक अपनी आकर्षण शक्ति से आकाश में विद्यमान है और नियमित रूप से गतिशील होकर सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। उसी से धरती और चंद्रादि लोक प्रकाशित होते हैं। अग्नि शीत को हटाती है। फसल उगाने योग्य भूमि के तुल्य विशाल और कल्याणकारी और कोई भी स्थान नहीं है।

नमस्कार। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज शुक्रवार को लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। समिति को ये फैसला करना होगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएं या इनमें बढ़ोतरी की जाए। रिजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज लिमिटेड का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करना है। कंपनी ने कल एबन स्थित हेनेसी पार्क होटल में प्रोजेक्ट एलयूएस की शुरुआत की। इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए रिजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड ने अपना खुद का सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाया है और रिश्लियो में एक सोलर पावर फार्म भी तैयार कर रही है। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने बताया कि सरकार की ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बस ऑपरेटरों को हर इलेक्ट्रिक बस के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के ये युवा देश के चारों क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्हें अपनी आवाज उठाने के साथ साथ युवाओं से जुड़े विचार विमर्श और विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और विदेश में ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से में कल एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना में कम से कम 3 डिब्बे पलट गए हैं। 18 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अस्थिरता से जुड़े सक्रिय बादलों का असर आज रात से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को पश्चिम, उत्तर पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बादल घिर आएंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात के दौरान दक्षिण, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। आज रात से हवा की रफ्तार तेज होने लगेगी। लगुनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और आज दोपहर बाद से दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:32 पर और शाम 5:56 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।

प्रणाम और सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, इस समय सुबह के 6:04 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 14 अगस्त 2024 को साथ निभा रही है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है सूरज की पहली किरण हमें स्मरण दिलाती है कि अंधकार कितना भी घना हो, प्रकाश की एक किरण ही पर्याप्त है। आइए इसी

0: महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
1: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओं नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज फ्राइडे 14 अगस्त 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल गुरुवार 13 अगस्त से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का शुभारंभ हुआ और आज श्रावण शुक्ल द्वितीय है। आगामी सोमवार 17 अगस्त मंडे 17 अगस्त को श्रावण शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास के अधिष्ठाता देव भगवान शिव के परम प्रिय आभूषण एवं परम भक्त नाग देवता की आराधना का यह अत्यंत पवित्र दिवस है। नाग पंचमी प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि की अधिपति नाग देवता है, इसलिए इस दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए तथा खेती बारी हल चलाने जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करके पंचमी के दिन उपवास रखा जाता है तथा सायंकाल पूजा के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। सनातन परंपरा में नाग पंचमी का पर्व अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा विधि विधान और निष्काम भाव से नाग देवता की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाले अनेक प्रकार की बाधाएं एवं कष्टों के शमन के लिए भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अनेक लोग इस दिन काल सर्प दोष, पितृदोष, नाग दोष, कुल दोष तथा अन्य ग्रह जनित या पारिवारिक कष्टों की शांति के लिए भी प्रार्थना और पूजा करती है। साथ ही यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी दोष का अंतिम समाधान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सदाचार, सत्कर्म, ईश्वर भक्ति, योग आरोग्य एवं अपने गुरु के मार्गदर्शन का भी विशेष महत्व है। नागों का महत्व केवल ज्योतिषीय मान्यताओं तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म में नाग देवताओं का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। एक ओर नाग भगवान महादेव के दिव्याभूषण है जो निर्भयता, वैराग्य और प्रकृति पर आत्मसंयम के प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु अनंत शेषनाग की दिव्य शैया पर योग निद्रा में विराजमान रहती है। अनंत शेष को समस्त ब्रह्मांड का आधार माना गया है। इस प्रकार नाग देवता भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों से जुड़े हुए हैं और हमें यह संदेश देता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की रचना है। इसलिए प्रत्येक जीव के प्रति श्रद्धा, करुणा और संरक्षण का भाव रखना ही सनातन धर्म का सच्चा आचरण है। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी के

दिन घर के दोनों ओर नाग का चित्र बनाकर अनंत आदि महानागों का पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण के नगर खंड में वर्णित है कि श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन चमत्कारपुर में निवास करने वाले नागों की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नारद पुराण में सर्प दंश की रक्षा हेतु कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के नाग व्रत का विधान बताया गया है। नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा भी प्रचलित है। एक नगर में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन खेत जोतते समय उनके हल से अनजाने में सांप के तीन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अपने बच्चों की मृत्यु से दुखी नागिन ने किसान से प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। एक रात नागिन ने किसान, उसकी पत्नी तथा उसके दोनों पुत्रों को डस लिया। अगले दिन जब वह किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची, तब उस कन्या ने भयभीत होकर उसके सामने दूध से भरा कठोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। इस दिन नाग पंचमी का पवित्र दिन था। कन्या की श्रद्धा और विनम्रता से प्रसन्न होकर नागिन ने उसे वर मांगने को कहा। कन्या ने प्रार्थना की कि हे नागिन, मेरे माता पिता और भाई पुनः जीवित हो जाए तथा जो भी श्रद्धापूर्वक नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें उसे कभी सर्प दंश का भय ना हो। नागिन ने तथास्तु की और किसान का पूरा परिवार पुनः जीवित हो गया। तभी से नाग पंचमी के दिन हल चलाना तथा हरी सब्जियां काटना निषेध माना गया है और इसी कारण से भी हम लोग श्रावण मास में हरी सब्जियां नहीं खाते। नाग पंचमी की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान करें, तत्पश्चात व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। नाग नागिन की प्रतिमा को गाय के दूध से स्नान कराकर गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। हल्दी रोली अक्षत तथा पुष्प अर्पण करें। घी के दिया प्रज्वलित करें और चीनी से मिश्रित कच्चा दूध चराएं तथा श्रद्धापूर्वक नाग देवता की आरती करें। श्रोताओं, नाग पंचमी के दिन मुख्य इन अष्ट नागों की पूजन का विधान दिया गया है। ये अष्ट नाग इस प्रकार है: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और तुलिक। इन अष्ट नागों की पूजा करने से आयु, आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दोष से मुक्ति मिलती है। भविष्योत्तर पुराण में नाग पंचमी का विशेष महत्व वर्णित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की रक्षा नाग देवता करते हैं। अतः नाग पंचमी के दिन महालक्ष्मी, नाग देवता तथा शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक उपासना करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब थोड़ा आपको यह भी संकेत दूं कि इस वर्ष जो है 19 अगस्त यानी वेडनेसडे 19 अगस्त को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की जन्म जयंती मनाई जाएगी। कली पावन अवतार परम पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महान संत, कवि और अद्वितीय विद्वान रहे। उन्होंने लगभग 12 ग्रंथों की रचना की, जिसमें श्री रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा विश्व भर में सर्वाधिक लोकप्रिय है और उन्हीं के स्मरण में रामचरितमानस मास हम इस श्रावण मास के अंतर्गत मना रहे हैं। वैसे तुलसीदास जी का जन्म 1579 सांवत 1589 में उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुआ। पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे तथा माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी था। उनका विवाह रत्नावली से हो जाते हैं। पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें उनकी वह अमर फटकार सुननी पड़ी। लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अर्थात तुलसीदास जी की पत्नी कहते हैं कि आपको लाज नहीं आई कि दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। हे नाथ, आप से मैं क्या कहूँ, आपके ऐसे प्रेम पर

0: धिक्कार है। इसी एक वाक्य ने तुलसीदास जी की जीवन की दशा बदल दी। उनके हृदय में वैराग्य जागृत हुआ और वे संपूर्ण रूप से भगवान श्री राम की भक्ति में समर्पित हो गया। यद्यपि उनके दीक्षा गुरु स्वामी नर हरिदास जी महाराज रहे, किंतु बाबा तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में अपनी पत्नी रत्नावली को भी अपने वैराग्य का प्रेरणा स्रोत एवं गुरु के समान सम्मान दिया है। यदि कलयुग में सनातन वैदिक धर्म को दो पुरुषों का सर्वाधिक ऋणी होनी चाहिए, एक जगत गुरु शंकराचार्य और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। यदि शंकराचार्य भगवान नहीं होते तो आज जो हमारे सनातन परंपरा चल रही है वो शायद दूसरे ही ढंग से होता। आदि गुरु शंकराचार्य ने लगभग 2500 वर्ष पहले अपने जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हो रहा था उसके पुनरावृत्ति किया। वहीं विदेशी आक्रमणों के समय जब मंदिर ध्वज जो है तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल नष्ट होते जा रहे थे, शास्त्र और शास्त्रज्ञ दोनों संकट में थे, तब गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी प्रखंड सूर्य के समान प्रकट हुए। उन्होंने जन भाषा में रामचरितमानस की रचना करके वेद उपनिषद पुराण तथा समस्त वैदिक ज्ञान का सार जन जन तक पहुंचा दिया और सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर को सदैव बनाए रखा। इसलिए ऐसे महान संत की हमें जयंती बड़े भक्ति के साथ और बड़े उत्साह के साथ मनानी चाहिए। तुलसीदास जयंती के दिन गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के चित्र के सामने पुष्प अर्पण करें, गुरु पूजा करें, यथाशक्ति भोग लगाएं, पुष्पांजलि करें और अवश्य ही उस दिन श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का पाठ करें। यह अवसर है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों और शिक्षाओं का चिंतन करें तथा अपनी नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करें। तभी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सनातन संस्कृति आगे बढ़ा रहेगा और हमारा गौरवशाली जो परंपरा है वो बनी रहेगी। नागपंचमी और तुलसीदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को हिंदू महासभा की ओर से। आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम दूं। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रावणी पर्व पर वेद संदेश के सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्ते। श्रावणी पर्व के अवसर पर हम सभी वेद का स्वाध्याय करते हैं और वेद का स्वाध्याय करते समय हमारे जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होते हैं, हम उन संदेशों को वेद के माध्यम से निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। आज सर्वत्र विकास की चर्चा होती है। विकास का अभिप्राय केवल सड़कों का बढ़िया बन जाना नहीं है, ऊंचे-ऊंचे भवनों का बनना विकास का पर्याय नहीं है। विकास का पर्याय वेद के शब्दों में हम निम्न मंत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ओम अप अमीवाम अप सृधम अप सेधत दुर्मतिम आदित्यासो युयोतना नो अंघस। इस मंत्र में विकास की परिभाषा दी गई है और विकास की परिभाषा देते हुए वेद ने कहा अमीवाम अपसेधत, अर्थात विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है

जो व्यक्ति है, जो किसी भी राष्ट्र के नागरिक हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का आरोग्यवान होना, उन सदस्यों का रोग रहित होना, किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि, चाहे वो किसी भी वायरस से उत्पन्न होने वाली हो अथवा दूसरे मौसम के अनुकूल होने वाले जो रोग हैं, उन सब रोगों से, उन व्याधियों से मानव मात्र का मुक्त होना, यह विकास के लिए पहली शर्त है। और उसके लिए जो भी संसाधन अपेक्षित हैं वह हमें करने चाहिए। उसके लिए ऋतु के अनुकूल भोजन करना, ऋतु के अनुकूल वस्त्रादि का धारण करना, यह सब कार्य ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ रखने वाले हैं, तो उनका ध्यान रखना यह सबसे पहली शर्त है विकास करने के लिए। इसके पश्चात दूसरी बात कही वेद ने, अपसेधत श्रिधम, जो श्रिद है अर्थात इस प्रकार के विचार हैं, जो ऐसे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प हैं जो मानव की प्रगति में बाधक हैं, और इस प्रकार के विचारों को हम कह सकते हैं ईर्ष्या, राग, द्वेष। अब ईर्ष्या जैसी बात सुनने में बड़ी साधारण सी लगती है, किंतु ईर्ष्या का अभिप्राय है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से अधिक गुण संपन्न देखते हैं तो उसे देखने के पश्चात हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि यह व्यक्ति इतना गुणी क्यों है, इस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है, इस प्रकार की प्रशंसा मुझे क्यों प्राप्त नहीं होती जो इसे प्राप्त होती है। और कई बार लगने लगता है कि लोग इसे बिना समझे ही प्रशंसित किए जा रहे हैं, इसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है व्यक्ति के अंदर, वह उसके विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक है, और इस प्रकार से वह बाधा उत्पन्न करता है कि व्यक्ति मृत मना हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है कि उसके संकल्प विकल्प का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। महाभारत का उदाहरण देखें तो दुर्योधन इसका जीता जागता उदाहरण है। ईर्ष्या के कारण उसने अपने कुल से द्वेष करते हुए, अपने भाइयों से द्वेष करते हुए अपने स्वयं के संपूर्ण कुल को नष्ट कर दिया, सारा परिवार नष्ट हो गया, और इसका मूल था केवल उसका ईर्ष्या करना। दूसरा ऐसा जो कार्य है जो हमारे लिए बाधक है, जिसको हमें छोड़ देना चाहिए, उसका नाम है असूया। असूया का अभिप्राय है कि दूसरे व्यक्ति कितने ही गुणवान हों, उनमें कितना ही श्रेष्ठ आचरण हो, कैसी ही उनकी अच्छाइयाँ हों, उन सबको छोड़ करके उनमें दोषारोपण करना। जिस प्रकार से हम चींटी को देखते हैं, आप कितना ही बढ़िया भवन बनाएं, उसमें बढ़िया से बढ़िया सोफे डाल दें, बहुत अच्छी आपने जो डाइनिंग टेबल लगाई हो, कुछ भी किया हो, किंतु चींटी आकर के उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं करती। आने के बाद आपके भवन में सबसे पहले वो छिद्र देखती है, दोष देखती है। आपने जितना महंगा पत्थर फर्श में लगाया था, उस पत्थर को न देख करके वो केवल ये देखती है कि जहाँ दो पत्थर का जोड़ है वहाँ पर अवकाश कहाँ पर रह गया है, गैप कहाँ पर रह गया है। इस प्रकार से जो प्रवृत्ति जब व्यक्ति के अंदर आ जाए, छिद्र अन्वेषण करने की प्रवृत्ति, वह असूया की प्रवृत्ति है, और असूया की प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए विकास का साधन न हो करके उसके पतन का साधन बनती है। अतः हमें उससे भी बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी बात कही वेद ने कि हमें करना क्या है, दुर्मतिम अपसेधत, जो दुर्मति है, बुद्धि है, कैसी बुद्धि, जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाली बुद्धि है, उसको श्रेष्ठ मार्ग से हटा करके कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाले जितने भी विचार हैं, जितने भी साधन हैं, माध्यम हैं, वह सारे के सारे माध्यम ऐसे हैं कि जो अपसेधत है उन्हें पीछे हटा देना चाहिए। और यदि व्यक्ति

0: व्यक्ति उनको पीछे नहीं हटाएगा तो उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। संतुलित विकास करने के लिए अपेक्षित है कि जीवन का ऐसा संतुलित हो जाना जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिसे हम स्वस्थ समझते हैं, कब स्वस्थ समझते हैं, जब वह स्वस्थ व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है, आत्मा के स्तर पर, मन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, जब यहाँ तीनों में संतुलन हो। प्रसन्नता तो है, किंतु वह प्रसन्नता किस प्रकार की है? दूसरे के कष्ट को देख करके होने वाली प्रसन्नता व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं देती, क्योंकि धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर दुर्मति बढ़ती है, कुबुद्धि बढ़ती है। अतः उस कुबुद्धि से बचने के लिए आत्मिक कल्याण की दृष्टि से, आत्मिक कल्याण की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए? प्राणी मात्र के अभ्युदय की कामना करनी चाहिए, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करनी चाहिए, और अपना संतुलित विकास इसी प्रकार करना चाहिए कि जैसे शरीर के सब अंग संतुलित हों तो व्यक्ति स्वस्थ है, सुंदर है, तो हमारी भी आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि, यह सब संतुलित हों, उचित मार्ग पर चलते हों तो हम विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा, यह श्रावणी पर्व हमारा।
2: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
3: KHz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
4: श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। पैतो कानूनी कोस्टर रोड पैतो कानूनी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी, और वाकवा के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मोसलमा ओगिया और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 19 अगस्त 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिश।
4: श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ। 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक आप सभी को शुभ दिन।

0: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज शुक्रवार को लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। समिति को ये फैसला लेना होगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएं या इनमें बढ़ोतरी की जाए। रिजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करना है। कंपनी ने कल एबेन स्थित हेनेसी पार्क होटल में प्रोजेक्ट हेलजेस की शुरुआत की। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने बताया कि सरकार की ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बस ऑपरेटरों को हर इलेक्ट्रिक बस के लिए 3.5 मिलियन रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के ये युवक देश के चारों क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। और विदेश में ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से में कल एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना में कम से कम 3 डिब्बे पलट गए, 18 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज शुक्रवार को लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। ये फैसला लेना होगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएं या इनमें बढ़ोतरी की जाए। ये फैसला ऐसे समय हो रहा है जब मध्य पूर्व में राजनीतिक तनाव और होमुस जलमार्ग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 15 अप्रैल को हुई पिछली बैठक में समिति ने पेट्रोल की कीमत 58.45 रुपये से बढ़ाकर 64.25 रुपये प्रति लीटर करने और डीजल की कीमत 64.80 रुपये से बढ़ाकर 71.25 रुपये प्रति लीटर करने की सिफारिश की थी। इसलिए आज शुक्रवार को होने वाले फैसले पर सभी की खास नजर रहेगी। रोजेल बस सर्विस लिमिटेड के पास फिलहाल 8 इलेक्ट्रिक बसें हैं जिन्हें सोलर एनर्जी से चार्ज किया जाता है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करना है। कंपनी ने कल एबेन स्थित हेनेसी पार्क होटल में प्रोजेक्ट हेलजेस की शुरुआत की। इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए रिजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड ने अपना खुद का सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाया है और रिश्लियो में एक सोलर पावर फॉर्म भी तैयार कर रही है। पूरी तरह जीरो एमिशन बसों की फ्लीट बनाने की इस लक्ष्य के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा को सुनते हैं, उनसे बात की हमारी सहयोगी राजमिला सीतामुनि ने। सुमेरा अकबर अली का विवरण।
1: अक्सर ये ख्याल है कि बसें प्रदूषण फैलाती हैं, परिवहन क्षेत्र में दाम बढ़ गए हैं और मुनाफे कम पड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह हम उत्पादन दामों को घटा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसें पहला तरीका है। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता को भी ध्यान में रख रहे हैं, हमें जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा मुख्य क्षेत्र रोजिल है, इसलिए हम इस इलाके में हवा की किस्म को देख रहे हैं।
0: समारोह में भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बस ऑपरेटरों को हर इलेक्ट्रिक बस के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। अभी तक केवल 11 बसों को इस योजना का लाभ हुआ है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की एक परियोजना भी है, जिसके लिए 5.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग दी गई है। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद को सुनते हैं।
1: UNDP के फंड के जरिए हम बस ऑपरेटरों का समर्थन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों को चार्जिंग सुविधाएं देंगे जिनके लिए काफी पैसे लगते हैं। NTC की कुल 105 इलेक्ट्रिक बसें हैं, इसलिए हम बस कंपनियों की हिम्मत अफजाई करते हैं कि वे इलेक्ट्रिक बसें खरीदें, फोटोवोल्टाइक पैनल्स स्थापित करें और चार्जिंग सहूलतें दें। सरकार ने पहले से मिसाल कायम कर ली है।

0: photovoltaïque et le gouvernement peut lead by example là, ça comment tout le dire.
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन देवयानी रामचंद्र पर लगी मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थाई आरोप को हटाने का विरोध करेगी। एफसीसी की कानूनी प्रतिनिधि ने कल पॉम्पलोमिसिस की अदालत में ये जानकारी दी। वाक्वा फिनिक्स की पूर्व उप मेयर देवयानी रामचंद्र पर करीब 11,40,00,000 रुपए की जब्त की गई नकदी के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थाई आरोप लगा है। मामले की सुनवाई मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 तक टाल दी गई है। उस दिन अदालत एफसीसी की दलीलें सुनेगी। देवयानी रामचंद्र के वकील रवि रत्ना ने अस्थाई आरोप हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ कोई रीजनेबल सस्पिशन यानी उचित संदेह नहीं है और एफसीसी की जाँच में अत्यधिक देरी हुई है। देवयानी रामचंद्र को फरवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। रवि रत्ना के अनुसार इस आरोप को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऑरोजिल की अदालत ने कल अद्रियन जुवाल के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह खत्म करने की बचाव पक्ष की मांग खारिज कर दी है, जो 21 सितंबर 2022 को एबेन में हुए हादसे के मामले से संबंधित है। बहस का मुख्य मुद्दा मुस्तास लीक्स नाम से सामने आए ऑडियो रिकॉर्डिंग थे। अद्रियन जुवाल के वकील जाक पोंग्लोस और अविनेश्वर दयाल का कहना है कि मामले से जुड़े कई लोगों के बीच हुई कुछ टेलीफोन बातचीत से ऐसा लगता है कि उनके मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र किया गया था। इस बारे में ज्यादा जानकारी सुमेरा अकबर अली के साथ शबनीस उजिया वाहिडाली की रिपोर्ट पर।
2: अपने रूलिंग में मैजिस्ट्रेट पामेला वीराबाद्रन मुदालियो का कहना है कि प्रतिरक्षा ने सबूत के जरूरी स्तर पर यह साबित नहीं किया कि अद्रियन जुवाल को फंसाने के लिए किसी सबूत या सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अदालत के मुताबिक प्रतिरक्षा की तरफ से पेश किए गए गवाह न तो रिकॉर्डिंग्स के स्रोत न ही उनकी प्रामाणिकता को साबित कर सके। ये भी स्थापित नहीं हो सका कि रिकॉर्डिंग्स में सुनाई देने वाली आवाजें किन किन लोगों की हैं, बातों की सच्चाई और उनके स्रोत को भी साबित नहीं किया गया। प्रतिरक्षा ने संसदीय संदर्भ में कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया। मामले से जुड़े कुछ तथ्यों और सवालों को राष्ट्रसभा में भी उठाया गया था, लेकिन अदालत का कहना है कि सार्वजनिक तौर पर उठाए गए सवाल उन दलीलों का स्थान नहीं ले सकते जिन पर मुकदमे के दौरान विचार किया जाएगा। अदालत के मुताबिक अद्रियन जुवाल को मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए सबूतों को चुनौती देने, गवाहों से बात करने या अपना बचाव पेश करने का पूरा अधिकार होगा। याद रहे कि अद्रियन जुवाल पर 4 औपचारिक इल्जामात हैं: लापरवाही के कारण अनिश्चित रूप से किसी को चोट पहुंचाना, अनुमति सीमा से अधिक शराब के साथ गाड़ी चलाना, अल्कोटेस्ट करने से इनकार करना और जांच के लिए खून या पेशाब का सैंपल देने से इनकार करना। वो खुद को गुनहगार नहीं मानते हैं।
1: युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के ये युवा देश के चारों क्षेत्रों में अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्हें अपनी आवाज उठाने के साथ साथ युवाओं से जुड़े विचार विमर्श और विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस बदलाव से पहले बुधवार 13 अगस्त को जिम्मेदारी सौंपने का एक समारोह आयोजित किया गया था। नए सदस्यों की नियुक्ति सितम्बर तक की जाएगी। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। दो साल के कार्यकाल के दौरान नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी के 15 युवा सदस्यों ने अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही उन्होंने एक ऐसा अनुभव भी हासिल किया जो कई लोगों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। कमेटी की अध्यक्षा इमा सिसिल कहती हैं, हम मॉरिशन बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ में युवा पीढ़ी का भी। इस कमेटी और अन्य युवाओं से हुई मुलाकात के बाद इस फ्रेमवर्क से हमें लगता है कि हमारे बाद और भी लोगों का आना सुनिश्चित है। नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत बनाई गई एक व्यवस्था है। ये मंच केवल युवाओं को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देता, बल्कि उन्हें उन मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर भी देता है जो सीधे उनसे जुड़े हुए हैं। ये पहल बच्चों के अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते में मान्यता प्राप्त एक बुनियादी अधिकार के अनुरूप भी है, यानी बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने और उनसे जुड़े मामलों में उनकी बात सुने जाने का।

अधिकार। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल की कोऑर्डिनेटर नूरी ताकन कहती हैं, बोर्ड में आकर वे अपनी समस्याएं बता सकते हैं ताकि उनकी बात सुनी जा सके और हम समाधान ढूंढ सके। वे खुद समाधान के लिए अपने प्रस्ताव दे सकते हैं। सरकार युवाओं की इस भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि युवाओं को समाज में हो रहे बदलावों का केवल दर्शक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे सक्रिय भागीदार भी होना चाहिए जो इन बदलावों में योगदान दें और उनसे जुड़े फैसलों में अपनी भूमिका निभाएं। उप प्रधानमंत्री आगया नावामागी कहती हैं, एक लीडर का अन्य लोगों से बेहतर होना जरूरी नहीं, बल्कि उसे अन्य लोगों की मदद करना आना चाहिए। इस नई टीम की यही फिलोसफी होते हुए देखना चाहती हूं। प्रश्न करने से नहीं डरना चाहिए या अपने विचार देने से भी नहीं डरना चाहिए। अन्य लोगों की बातों पर ध्यान देना भी सीखना चाहिए जो आपकी तरह नहीं सोचते। नेशनल चिल्ड्रंस कमिटी की नई संरचना सितंबर में घोषित की जाएगी। अगले सदस्यों के चुनाव के बाद नई टीम भी युवाओं की आवाज़ को आगे बढ़ाने और इस मंच को संवाद, भागीदारी और सक्रिय जुड़ाव का एक मजबूत मंच बनाने की जिम्मेदारी निभाएगी। कल रात नया चांद नजर आया। आज जुम्मे को रबी उल अव्वल महीने की पहली तारीख है। जुमा मस्जिद मुस्लिम कौम को इतला करती हैं कि यौमुन नबी 25 अगस्त को मनाया जाएगा। और विदेशी खबरों में, ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से में कल एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना में कम 3 डिब्बे पलट गए। दक्षिणी इंग्लैंड के लुइस नामक पर्यटन शहर के पास ये हादसा हुआ। ये ट्रेन लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से इस्बोन जा रही थी। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का होमुज जलमार्ग पर पूर्ण नियंत्रण है और वे इसे बनाए रखेंगे। ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वाशिंगटन गलत खुफिया आकलन के आधार पर खतरनाक कदम उठा सकता है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर आज रात से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद को पश्चिम, उत्तर पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरेंगे और हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान दक्षिण, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और आज दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 6:32 पर सूरज निकला है और शाम 5:56 पर सूरज ढल जाएगा।

और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज शुक्रवार को लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। ये फैसला लेना होगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएं या इनमें बढ़ोतरी की जाए। रिजिल ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज लिमिटेड का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करना है। कंपनी ने कल एबेन स्थित एनएसी पार्क होटल में प्रोजेक्ट हेलियस की शुरुआत की। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने बताया कि सरकार की ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बस ऑपरेटरों को हर इलेक्ट्रिक बस के लिए 3.5 मिलियन रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के युवक देश के चारों क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। और विदेश में ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से में कल एक

0: यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना में कम से कम 3 डिब्बे पलट गए हैं, 18 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रॉयल रोड बेलव्यू में 66 साल के 66-year-old के श्री राधा मोहन सिंह संतोखी, जो विवेक से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर रॉयल रोड बेलव्यू से उठाकर लावांचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। उल्ये एवेन्यू कैथोबोन में 71 साल की 71-year-old की कुमारी सलोनी प्रभु, जो बिंदु से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके भाई सजन प्रभु के घर नंबर 289 ओलिये एवेन्यू कैथोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। ग्रोबियो न्यू ग्रोव बोआ डोआजो रोड में 79 साल की 79-year-old की मिसेस बीबी फरीदा बेचू, पैदाइश नाम समन, और जो रिशाद बेचू की माँ थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10 बजे उनके घर बोआडवासो रोड खोबियो न्यू खोव से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। आर्य मंदिर रोड गुडलैंड में 64 साल की 64-year-old की श्रीमती देवंती टीका, पैदाश नाम मानी सिंह, और जो मन से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके घर आर्य मंदिर रोड गुडलैंड से उठाकर बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। स्वदेश लेन वाले डिपथ में 72 साल की 72-year-old की श्रीमती लेखरानी हीरा, पैदाश नाम उकलू, और जो बेबी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके पति देवेंद्रनाथ हीरा के घर स्वदेश लेन वाले देवप्रथ से उठाकर सिपाही भूले वाले देवप्रथ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। लीड्स इंग्लैंड में 59 साल की 59-year-old की श्रीमती अमृता सिगुलाम, पैदाश नाम लक्ष्मण, और जो संगीता से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार कल शनिवार को इंग्लैंड में दिन के 1 बजे किया जाएगा। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। पोरिडा लेन बॉशेरी में 63 साल के 63-year-old के श्री डनराज महादू, जो गैब्रियल से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी नलिनी महादू के घर पोरिडा लेन बॉशेरी से उठाकर ग्रांड बोआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड लेस्यूर सेबास्टोपोल में 79 साल की 79-year-old की श्रीमती भुवनेश्वरी निधु, पैदाश नाम झरिया, और जो तिंता से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर रॉयल रोड लेस्यूर सेबास्टोपोल से उठाकर लेस्य सेबास्टोपोल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। आलिशा क्लिस्कालिये में 84 साल की 84-year-old की श्रीमती कुसिला डुली, पैदाश नाम आनंदी, और जो लीलो से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे दयानंद डुली के घर आलिशा क्लिस्कालिये से उठाकर बासकारोंग क्लिस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 16 वाल्मीकि रोड वाले देवप्रथ में 90 साल के 90-year-old के श्री रघुबर घीना, जो राजा मुंटन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके बेटे देवानंद घीना के घर नंबर 16 वाल्मीकि रोड वाले देवप्रथ से उठाकर सिपाही भूले वाले देवप्रथ की श्मशान भूमि

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से विज्ञप्ति। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। इसके चलते सोमवार 10 अगस्त से खेतों में सब्जियों की सिंचाई, कार वॉश द्वारा पानी का प्रयोग, वाटर प्रेशर से घर, आंगन, गाड़ी की सफाई के लिए पानी का प्रयोग, पूल को नल के पानी से भरना वर्जित है। पुलिस इन सभी नियमों के पालन के लिए नजदीकी से नजर रख रहे हैं। CWA सभी से सहयोग की मांग कर रहे हैं और आपके समझ के लिए धन्यवाद देता है। श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में गोष्ठीय रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 5 शुक्रवार 14 अगस्त को शाम 3 बजे गांधी भवन गोष्ठीय में एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है। नाडेस रोड हाइलैंड्स के बाल शिक्षा मंदिर द्वारा श्रावण मास के संदर्भ में 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 14 से रविवार 16 अगस्त तक। समय है शुक्रवार 14 अगस्त को शाम के 4:30 बजे, शनिवार 15 अगस्त को शाम के 4:30 बजे और रविवार 16 अगस्त को रात के 8:30 बजे।

Sports News. सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूईएफए यूरोपा लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के रिटर्न लेग के मैच कल खेले गए। स्कॉटलैंड की रेंजर्स टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई। फर्स्ट लेग में यागलेलोनिया ने रेंजर्स को 2-1 से हराया था। कल अपने होम मैदान में रेंजर्स केवल 1-1 का ड्रॉ कर पाया, मतलब अलविदा यूरोपा लीग। अन्य मैचों में बेसिकतास ने राडेक क्रालोवे को हराया 1-0 से, बेसिकतास क्वालिफाई। फेरेनवारोस ने अपना मैच ड्रॉ किया 1-1, फेरेनवारोस क्वालिफाई। ओमोनिया निकोजिया 1, लिंकन रेड इम्स 0, ओमोनिया निकोजिया क्वालिफाई। आरबी साल्सबर्ग ने एवे जाकर मैच ड्रॉ किया पाफोस के मैदान में 3-3, साल्सबर्ग क्वालिफाई। यूनिवर्सिटादिया क्रायोवा 2, कर्प्स 1, क्रायोवा क्वालिफाई। विकिंगू 3, टून 2, टून की टीम क्वालिफाई है। सीएसके सोफिया 1, मकाबी तेल अवीव 3, सोफिया की टीम क्वालिफाई। अंडरलेक ने 3-2 से पीएओके को हराकर अपना टिकट बुक किया, जबकि बेनफिका क्वालिफाई हुआ हॉट ऑफ मिडलोथियन टीम के साथ मैच ड्रॉ करके 1-1। इग्नाता ने 5-1 से शामरॉक रोवर्स को हराया, इग्नाता की टीम क्वालिफाई। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग में पार्टिजान इंटर क्लब डिस्काल्डेस कराबाग याब्लोनेक राको जेस्टोचोआ ML Vitesse Midtjylland Nordjylland Tromsø Drita Saint-Gallen Sion Jerusalem Motherwell Dynamo City Hajduk Split को जीत पाए, क्वालिफाई हो गए, नो मैच ड्रॉ गए। आज से इंग्लैंड की लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। एक ही मैच है, वुल्व्स का मुकाबला ब्लैकबर्न रोवर्स से। कल बाकी मैच खेले जाएंगे। कल ही क्लब फ्रेंडलीज में चेल्सी खेलेगा रियल सोसिएदाद के खिलाफ, बायर्न म्यूनिख आरबी लाइप्ज़िग, टोटनहम हॉटस्पर होफेनहाइम, मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा एसी मिलान के खिलाफ, बोरुशिया डॉर्टमुंड एएस रोमा।

0: इंटर मिलान रियल बेटिस, ये कल के फ्रेंडली मैच है। लिवरपूल संडे को अपना मैच खेलेगा, वो है कुमो के खिलाफ, और संडे को ही इंग्लिश कम्युनिटी शील्ड आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच, यानी प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने से पहले ट्रेडिशनल कम्युनिटी शील्ड चैंपियन आर्सेनल और एफए कप विजेता मैनचेस्टर सिटी के बीच। मैनचेस्टर सिटी का मिडफील्डर टिजानी रेंजर्स सऊदी प्रो लीग टीम अल खदसिया में जा रहा है। 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का सौदा होगा। पेरिस सेंट जर्मेन बार्सिलोना के स्ट्राइकर फेरान टोरेस को साइन करने जा रहा है। डील इन प्रिंसिपल डन, दाम लगभग 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। मैनचेस्टर सिटी सस्ते में रोड्री को नहीं जाने देगा। बार्सिलोना ने 55 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, सिटी चाहता है 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। लेस्टर सिटी ऑन सेल, 200 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग रखा गया है लेस्टर सिटी को खरीदने के लिए। थाईलैंड के ओनर 16 साल किंग पावर स्टेडियम में थे, अब हवा बदलना चाहते हैं। यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रिटेन की स्प्रिंटर आर्नी हंट ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता 200 मीटर फाइनल जीतकर। उसका टारगेट है 4 गोल्ड मेडल, 100 और 200 के बाद अब वुमेन्स और मिक्स्ड रिले बचे हैं। क्रिकेट, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस रविवार को मैच है पॉइंट दे लास्का की बार्सिलोना एफसी और वे लायंस के बीच। इधर आदिसी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंटर डिस्ट्रिक्ट पेतांग टूर्नामेंट इस संडे को गोकायू में लगेगी। सभी जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चैंपियन टीमें और रनर अप इस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भाग लेंगी 9 बजे से गोकायू में। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों का रिंग की ओर से शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए इस समय सुबह के 7:04 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 14 अगस्त को साथ निभा रही है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है कि इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस इच्छा में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होगी। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका दिन और काम दोनों अच्छा से ही बीतेंगे। आइए इसी शुभ विचार के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से, और इसकी प्रस्तुति करेगी श्रीमती डॉक्टर शांति मोहबिया जी। आइए इसको हम सुनते हैं।

0: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: सत्य को सिद्ध करने के लिए ऊंचे स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, उसका तो शांत होना ही उसकी शक्ति है। जबकि झूठ को

सज्जन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वैसे झूठ को कौन रोक सकता है, झूठ तो बोलते ही जाते हैं लोग, पर अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो आपको चुपचाप ही रहकर चलना चाहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही जवाब दे ही देता है। आइए, तभी तो हमारे इंडियन सिनेमा के किशोर कुमार जी ने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: लोगों को आप रोक नहीं सकते और बातों को भी आप रोक नहीं सकते। जिस पर आपका जो वश ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं, उस पर रोकना टोकना या फिर अपने आप को परेशान करना आवश्यक नहीं। बस चलते रहें, लोग आपको पसंद करें ना करें, आप बस अपने जीवन के हर एक लक्ष्य पर ही फोकस करके चलते ही रहिए। साथ निभा रही हैं अनिता जी मौदाल बेस से और इंदिरा लौटन जी हैं साथ में, हैं गायत्री जी नोवेल फ्रांस से।

घर पर साथ निभा रहे हैं या फिर काम के लिए निकले हैं, आप सभी को कहेंगे बूंकुआर श्यामा रघुनंदन जी हैं, साथ निभा रही हैं। और हम कहते हैं कि जीवन का हर एक किसी का एक कहानी है और हर घर की भी एक कहानी है, और अफसाना आप हमेशा अपने ही लिए लिखे। कहते हैं कि ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने अधूरे रह जाते हैं, कुछ अपने थे और कुछ फिर भी पराए रह गए। हमने हर दर्द को मुस्कुराकर लिख दिया और लोग समझे हम बस अफसाने लिखते गए। चलिए, इंडियन सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका नाम थी टुनटुन, और ये गीत उस समय का।

0: दादा अंगिरा दुबलाल जी साथ निभा रहे हैं, आपका स्वागत है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, इंडियन सिनेमा के
1: प्यार दीवाना
0: किशोरदा। आप सभी के नाम इस शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को

0: प्यार दीवाना होता है, पर इसमें फूक फूक के कदम चलना भी पड़ता है ना
1: बाबूजी।
0: तभी गीता दत्त जी ने भी कहा संभल कर चलना चाहिए।

कर भी चलेंगे तभी तो जिंदगी गिराएगी। कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, पर फिर भी हम अपनी जिंदगी खुद ही लिखते हैं, खुद ही उनका जो है तस्वीर भी बनाते हैं, है ना। और अभी साथ निभा रही हैं आशा जानू जी अपने पूरे परिवार ममा कुमारी और सूरज शर्मा सजादा जी, साथ में हैं सुदेवी जी और जो भी लोग अभी साथ निभा रहे हैं मुंजे ख्वायो से और अपने पूरे परिवार के नाम आप। साथ में हैं वीना रामफुल जी, ललिता कुशल जी हैं त्रियोले से, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और आरती जी हैं अपने बेटे आश्ले और तीनों बेटियों के नाम और साथ में हैं उनके पति। और अनीता जी हैं त्रियोले गांव से और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ अभी साथ निभा रही है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो चलिए तलत महमूद जी की आवाज़ में सुनते हैं, तस्वीर बनाता हूँ फिर भी तस्वीर बनती ही नहीं, क्या बात है।

0: इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनी है। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले फोगेस साइट के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर रेसिडेंस लाब्रास्की और लाब्रास्की के कुछ हिस्सों में के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 14 अगस्त 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं सुल्याक के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर इन गलियों में मायावरम रोड, लेडी बर्कली रोड, उतौ रोड के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 14 अगस्त 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जन विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है,
1: 819 किलोहर्ट्ज़। ये है रेडियो मॉरिशस।

0: झलकियां
1: झलकियां। चलिए एक नजर डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम लेकर आएगी किरण जानकी जी। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे फिर से समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम और 10 बजे फिर से समाचार आप सुन पाएंगे। और समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी द्वारा। और इसी कार्यक्रम के दौरान आप ज्ञान चक्र और शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम सुन पाएंगे। 11 बजे फिर से समाचार होंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 11:03 पर सायदा की तरफ से। 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे। दिन के 1 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी द्वारा। और 1:45 पर आप रंगारंग कार्यक्रम सुन पाएंगे रत्ना द्वारा। और 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे होंग होंग द्वारा। और आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर आएगी सुमिता 2:30। और दोपहर के 3 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा। 3:45 से लेकर शाम के 4:40 तक आप उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे अनवर की तरफ से। और शाम के 5 बजे गीत और गज़ल परविजा की तरफ से आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे। और शाम के 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे। 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉशर्स की लहरों पर। और 6:30 जिन्न द्वारा आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे। रात के सात बजे आप तमिल भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:30 तेलुगु भाषा में विश्वाजी द्वारा आप कार्यक्रम सुनेंगे। और 7:50 पर गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू के द्वारा आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे। भजले प्रभु का नाम भक्ति कार्यक्रम रोशनी द्वारा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रात के 8:10 पर। 8:40 पर महफिल शब लेकर आएगी परवेजा। और रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का सुरेखा जी द्वारा। और रात के 11 बजे कुछ पुराने दौर के गीत गिनी शाह की ओर से सुनहरे पल। और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
0: झलकियां
1: झलकियां,
2: रेडियो मॉरिशस।
1: सुन रही हैं प्यारी

जी हाँ, सुन रही हैं प्यारी गीता जी और उनकी एक प्यारी बेटी है आहाना और मामा है अनीता और बेटे हैं यश। तो चलिए उनके नाम ये

रासा गीत। और जो भी लोग अभी सुबह का नजराना कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को हम कहेंगे आपका स्वागत है। सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए हमारे साथ, खास तौर पर आहना के लिए। भोली हैं, सुंदर हैं, पर प्यारी भी हैं।

तो चलिए इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक पहुंचे हैं। 7:08 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे और अंत में शिव गोविंद परिवार अपने प्यारे

उते धनवीन शान सुगबिन के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ में है उनकी दादी रेणुका और दादा हैं लक्ष्मण और उनके सभी सुगबिन परिवार की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और साथ में है माला सुमारू जी, सुबह सुबह इतनी प्यारी मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग अभी साथ निभा रहे हैं उन सभी को हम कहेंगे स्वागत है और सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए हमारे साथ। तो चलिए इसी गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं साथ, तो ये मैं फिर से बोलती हूँ 8 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, तो तैयार रहें और आपको आप सभी को कहेंगे शुभ दिन। और आज जो भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं पूरे एमबीसी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सबको के नमस्ते। फजर के 8 बज अल्पा भोजपुरी में समाचार सुना जा। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज शुक्रवार के लगी। समिति पेट्रोल और डीजल के कीमत पर विचार करी। ये फैसला लेवल जाए कि मौजूदा कीमत के बरकरार रखल जाए कि ओकर में बढ़ोतरी आनल जाए। ये फैसला

ऐसन समय में लेवल जाए जब मध्य पूर्व में राजनीतिक तनाव और होमयूज जलमार्ग के लेके अनिश्चितता बनल बा। रिजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड लगे अभी 8 इलेक्ट्रिक बस बा जिके सोलर इनर्जी से चार्ज करल जाला। कंपनी के लक्ष्य 2030 ले इलेक्ट्रिक बस के संख्या बढ़ा के 100 करे के हा। कंपनी काल एबेन के हेनेसी पार्क होटल में प्रोजेक्ट हेलियस के शुरुआत करलक। ई बदलाव के आगे बढ़ाए खातिर रोजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड अपन खुद के सोलर चार्जिंग स्टेशन बनैले बा आर रिश्लियो में एगो सोलर पावर फार्म भी तैयार करता। पूरा तरह जीरो एमिशन बस के फ्लीट बनाए के ई लक्ष्य के पीछे ढेर मुख्य कारण बा। समारोह में भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद भी मौजूद रलन। उबुल्लन की सरकार के ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू करल गल बा। एकर तहत बस ऑपरेटर लोग के हर एगो इलेक्ट्रिक बस खातिर 3.5 मिलियन रुपया ले के सब्सिडी मिली सकी। अभिले खाली 11 बस के ई योजना से लाभ होल बा। एकर अलावा UNDP के एगो परियोजना भी बा जेकर खातिर 5.65 मिलियन अमरीकी डॉलर के फंडिंग देवल गल बा। काल रात के नवा चांद दिखल गल। आज जुम्मा के रबी उल अवल महीना के पहला तारीख है। जुम्मा मस्जिद मुस्लिम को के इतला करता कि यौमुन नबी 25 अगस्त के मनावल जाए। दूसर देश के खबर में ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्सा में कालीगो यात्री ट्रेन पटरी से उतर गल। दुर्घटना में कम से कम 3 डिब्बा उलट गल। दक्षिणी इंग्लैंड के लुइस नामक पर्यटन शहर लगे ई हादसा होल। ई ट्रेन लंदन से विक्टोरिया स्टेशन से स्पोर्ट जात रहल। पश्चिमी एशिया में सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लेके जबानी जंग तेज हो गल बा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर ले हवन कि अमेरिका के होर्मुज जल मार्ग पर पूरा नियंत्रण रख ले हवन और एके बनाए रखन। ईरान ई दावा के खारिज करके बोले बाकी वाशिंगटन गलत खुफिया आकलन के आधार पर खतरनाक कदम उठा सकी। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा होगल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबको के नमस्ते। मरने की खबर सुना जा। एडवांटेज लेन लिस्कालिये में 44 बरिस के काउन काथों के श्री सतीश पंचाई जिन सतीश बाबू से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 2 उनकर पत्नी वानिसा पंचाई के घर एडवांटेज लेन लिस्कालिये से उठा के मायबू के शमशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टूडे 2 PM एवेन्यू डे कोलोम्ब में जिन काउंड मास्क में 69 बरिस के स्वसंतनेवों के श्री महादेव गोपाल जोन बाबू राम से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 2:30 उनकर पत्नी चांदनी गोपाल के घर एवेन्यू डे कोलोम्ब मेजिन कौंड मास्क से उठा के मेजिन कौंड मास्क के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM सुदना काथोबोन में 41 बरिस के कागोत्यानों के श्री विरमल सिंह रामचंद गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 12:30 उनकर पिता ईश्वर रामचंद के घर से उठा के कौनव्यू के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 12:30 PM नंबर 16 वाल्मीकि रोड वाली दे प्रथ में 90 बरिस के 90 के श्री रघुबर घीना जुन राजा मुंटन से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज फजर के 10:30 उनकर बेटा देवानंद घीना के घर नंबर 16 वाल्मीकि रोड वाली दे प्रथ से उठा के सिपाही भोले वाली दे प्रथ के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM आलिशा क्लिस्कालिये में 84 बरिस के 94 के श्रीमती कुशीला डुली पैदाश नाम आनंदी अर्जुन लीलो से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज फजर के 10:00 उनकर बेटा दयानंद डुली के घर आलिशा क्लिस्कालिये से उठा के बासकागोंग लिस्कालिये के श्मशान भूमि ले जाल जाए।

Asian Today at 10 a.m. Royal Road Lesser Sebastopol में 79 साल के 79-year-old के स्वसंजीज नेपों के श्रीमती भुनेश्री निधु पैदाइश नाम झरिया अर्जेंटीन से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकर घर रॉयल रोड लेसियर सेबास्तोपोल से उठा के लेसियर सेबास्तोपोल के श्मशान भूमि ले जाल जाई।

0: सर्कल हवन अर्थी आज फजर के 10 बजे उनकर पत्नी नलिनी महाडू के घर पोखीडा लेन बशेरी से उठा के घोंबा के श्मशान भूमि ले जाल जाई। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM। लीड्स इंग्लैंड में 59 बरिस के 57वें के श्रीमती अमृता सी गुलाम पैदाश नाम लक्ष्मण अर्जुन संगीता से जस्ती जानल जात रलन गुजर गल हवन। उनकर अंतिम संस्कार काल दिन के 1 बजे इंग्लैंड में करल जाई। स्वदेश लेन वाले दिपथ में 72 बरिस के 72 के श्रीमती लेखरानी हीरा पैदाइश नाम उकलू अर्जुन बेबी से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 12:30 उनकर पति देवेंद्रनाथ हीरा के घर स्वदेश लेन वाले दिपथ से उठा के सिपाही भूले वाले दिपथ के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रीमेशन टुडे 8:00 PM। आर्य मंदिर रोड गुडलैंड्स में 64 बरिस के स्वसंकाथों के श्रीमती देवंती टीका पैदाश नाम मानस सिंह आजन मुन से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज फजर के 10:50 उनकर घर आर्य मंदिर रोड गुडलैंड्स से उठा के बेलमो गुडलैंड्स के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रीमेशन टुडे एट 10:30 AM। ग्रोबियो न्यूग्रोव में बॉडवासो रोड में 79 बरिस के 79वें के मिसेस बीबी फरीदा बेचू पैदाश नाम समन अर्जुन रिशाद बेचू के माँ रलन इंतकाल करकल हवन। जनाजा आज फजर के 10 बजे उनकर घर बॉडवासो रोड खोबियो न्यू खोव से उठा के यूनियन पार्क के कब्रस्तान ले चाल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नुमेरो 289 ओलिये एवेन्यू काथोबोन में 71 बरिस के 71 के कुमारी सलोनी प्रभु जिन बिंदु से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 2:50 उनकर भाई सजन प्रभु के घर नुमेरो 289 ओलिये एवेन्यू काथोबोन से उठा के गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड बेलव्यू में 66 बरिस के 76 के श्री राधा मोहन सिंह संतोखी जिन विवेक से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकर घर रॉयल रोड बेलव्यू से उठा के लावोचो के श्मशान भूमि ले चल जाए। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM। जितना जना शोक में बा उलोक के संगे हमने के हमदर्दी बा।
1: एट 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सभी को प्यार भरा नमस्कार पूजा की ओर से और गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर 402-80-85 पर, नहीं तो आप 5251-7005 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। आइए पहला सवाल, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसका प्रयोग आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसका प्रयोग आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? तो 4028085 पर आप सभी का इंतजार है।

0: बड़ा ही आसान प्रश्न है, तभी तो इतने सारे लोग जो हैं लाइन पर जुड़े हुए हैं। चलिए एक ना एक जो है मैं सभी को अवसर दूंगी। लाइन पर कोई है, आइए उनको हम सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब। हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग महेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा, बहुत अच्छा, आप कैसा है?
0: मैं भी ठीक। और महेंद्र जी, आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।

0: धन्यवाद।
1: और महेंद्र जी के पास क्या जवाब है?
0: नाम तो नहीं?
1: नाम नहीं, नहीं, हाँ है। आपने सही जवाब दिया है और आपको कहेंगे बधाई हो, और
0: बहुत
1: भाग लेने के
0: धन्यवाद,
1: लिए
0: बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। शुभ
0: शुभ
1: दिन
0: दिन आपको।
1: आपको भी।

0: वह क्या है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे छोड़ता जाता है? वह क्या है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे छोड़ता जाता है? 4028085 पर 4285 पर, नहीं तो 5251700 पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर। अगर आपको लाइन नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं। नमस्ते शोभा जी।
1: नमस्ते पूजा जी।
0: हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ जी।
0: बताइए, आपके पास क्या जवाब?
1: मालूम नहीं ठीक है या नहीं। वो है परछाई।
0: परछाई?
1: जी हाँ।
0: नहीं नहीं, एक और जवाब देना चाहेंगे?
1: वो है नहीं मालूम, चांद।
0: चांद? नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं शोभा जी, आपको कहेंगे शुभ दिन। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: और आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
2: जी, शुक्रिया।
0: हाँ तो वो बताइए, आपके पास क्या जवाब?
2: उतना ठीक नहीं जानती हूँ। हो सकेगा कदम।
0: कदम? नहीं, एक कदम और जवाब।
2: पीछे छोटा। उम्र?
0: नहीं
2: नहीं नहीं, कुछ नहीं।
0: वो आगे बढ़ता ही रहता है पर पीछे कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है।
2: आगे बढ़ता है?
0: हाँ।
2: हमारा फ्यूचर? नहीं।
0: फ्यूचर के साथ क्या जुड़ा हुआ है हमारा?
2: हमारा भविष्य के लिए, हमारा जो पढ़ते हैं लिखते हैं। नहीं,
0: कोई बात नहीं बसंती जी, आपको कहेंगे शुभ दिन।
2: और आपको मौका दिए जाए।
0: चलिए चलिए, नमस्ते। फिर से मैं प्रश्न दोहराती हूँ, वह क्या है जो आगे बढ़ता है? वह क्या है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही पीछे छोड़ता जाता है? चलिए क्लू दे देती हूँ मैं सभी को। उसकी सुई जो है ना आगे बढ़ती रहती है फिर भी
3: कुछ नहीं भाता है,
0: कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है पीछे।
3: तू नजर आता है मुझे।
0: हेलो,
4: दिल से प्यार भरा नमस्कार मेरी लवली लवली प्यारी सी पूजा जी, कैसे हो जी?
0: मैं ठीक हूँ गीता जी, आप सुनाइए।
4: आपकी आवाज़ सुन के तो और फिट एंड फाइन हो गई, अब मीठी मीठी आवाज।
0: धन्यवाद गीता जी। और गीता जी क्या जवाब लेकर आई हैं?
4: पता नहीं ठीक है या नहीं, रास्ता सुमे।
0: नहीं, मैंने कहा सुई है जो आगे बढ़ता ही रहता है पर कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है, क्या है वह?
4: रास्ता सुमे।
0: नहीं, सुई है, सुई।
4: ओके, टेक केयर, बाय बाय।
0: कोई बात नहीं।

0: हेलो,
1: लाइन में शायद कुछ खराबी है। आइए एक और श्रोता को हम सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
2: हेलो हेलो पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार राधा जी, कैसी हैं आप?
2: जी मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छी होंगी।
1: जी आप लोगों का साथ है ना, तभी मैं ठीक हूँ। बताइए
2: जी, जरूर
1: जी, आपके पास क्या जवाब?
2: जी मेरे पास जवाब है घड़ी, समय।
1: घड़ी, समय, और आपने सही जवाब दिया है।

0: और आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए।
1: आपको भी बहुत धन्यवाद और शुभ दिन आपको।
0: शुभ दिन आपको भी।
1: आपको भी।
0: बाय बाय।

अब ये बड़ा ही आसान है, पर कुछ दिमाग चलाना पड़ता है। चलाइए, दिमागी कसरत है तभी तो है गर्मा गर्म नाश्ता। चलिए, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना आँखों के रोती है? ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना आँखों के रोती भी है?

0: हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार जी, आपका शुभ नाम।
1: मैं हूँ शीला गातोबोन से।
0: शीला जी, आपका स्वागत है। और शीला जी के पास क्या जवाब है?
1: लाफी में धुआं,
0: अच्छा, आप बहुत करीब है। एक और
1: वो
0: जवाब।
1: धुआं धुआं लाफी
0: धुआं
1: में
0: तो रोती नहीं है ना, रुलाती है।
1: रुलाती है।
0: जी
1: लौम,
0: नहीं, अब बहुत
1: ओके
0: करीब है। आपने जो धुआं बोला है ना, वो उससे मिलती जुलती है ये जवाब।
1: आग,
0: नहीं,
1: ओके, पता
0: वो
1: नहीं
0: धुआं के
1: करके।
0: समान ही है। उसका जो आकार है ना, उसका जो शेप है, वो धुआं के समान ही है।
1: लौदिया,
0: नहीं। चलिए, कोई
1: ओके
0: बात नहीं। शीला जी, आपको
1: पूजा
0: कहेंगे
1: जी,
0: शुभ
1: ओके
0: दिन।
1: ओके, शुभ दिन पूजा जी।
0: जरला हले हले चलो रे साजना। अरे, हले हले यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से किसी ने सही जवाब दिया है। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब। हेलो,
1: हेलो बहन जी, प्रणाम।
0: प्रणाम, आपका स्वागत है। शुभ नाम, आपका
1: फुलवंती,
0: शुभ नाम।
1: फुलवंती,
0: फुलवंती जी
1: हाँ,
0: के पास क्या जवाब है?
1: बादल,
0: क्या कहा आपने?
1: बादल,
0: बादल। सही जवाब दिया है आपने, और ये बादल ही है जो
1: हाँ,
0: रोती
1: बादल,
0: है
1: जो
0: ना,
1: रोती है तो बरसात होती है।
0: बरसात होती है। और सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको फूलवंती जी।
1: आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया।
0: शुक्रिया, और शुभ दिन आपको।

चलिए, कौन सी चीज है जिसे हम पकड़ नहीं सकते? वो कौन सी चीज है जिसको हम पकड़ नहीं सकते लेकिन उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते? वह कौन सी चीज है जिसको हम पकड़ नहीं सकते लेकिन उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते? क्या है वह?

0: आपका स्वागत है श्यामा जी। नमस्ते,
1: धन्यवाद पूजा जी, नमस्ते।
0: कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: और श्यामा जी क्या लेकर आई हैं जवाब के तौर पर?
1: हवा।
0: हवा? आप बहुत करीब हैं एक और जवाब।
1: सांस।
0: क्या कहा आपने? सांस।
1: सांस।
0: सही जवाब दिया है आपने, उसको हम पकड़ नहीं सकते और उसके बिना हम जी नहीं सकते। सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी।
1: आपको भी बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए।
0: आपको भी, और आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: आपको बराबर।
2: हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भी की भीगी रुत है सुहानी।
0: सभी के पीछे मैं तो पड़ी हुई हूँ सवालों को लेकर। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती फिर भी दुनिया को चलाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती फिर भी दुनिया को वो चलाती है? आज का बस उसका ही चलन है। है तो है, सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती फिर भी दुनिया को चलाती है? लाइन पर आ गई है हमारी प्यारी आशा जानू जी। नमस्ते।
3: हेलो, नमस्ते पूजा जी, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं?
3: बस ठीक हूँ, आपके गीतों को सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ।
0: आपकी लवली लवली मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास क्या जवाब है?
3: शायद हवा।
0: हवा
3: जी।
0: मैं फिर से दोहराती हूँ, कौन ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती फिर भी दुनिया को चलाती है?
3: मैंने वो पिछले वाले सवाल का जवाब सुना।
0: हवा नहीं, वो पिछले वाला सांस था। श्यामा जी ने जवाब दे ही दिया है।
3: और दोहराएंगे फिर से।
0: ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती फिर भी दुनिया को चलाती है? उसके बिना मतलब मान लीजिए दुनिया ही नहीं है। है तो सब कुछ है, दोस्त है, परिवार है, सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या है वह?
3: शायद वो नहीं तो कुछ
0: शायद नहीं। कभी मुझे मिल जाए कहीं ना कहीं जब। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं आशा जी, फिर से
3: किस्मत।
0: किस्मत, किस्मत से जुड़ी एक और चीज है बताइए तो।
3: किस्मत से जुड़ी और एक चीज है हमारी करम।
0: नहीं,
3: उससे बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। ओके, मैं दोबारा सोच।
0: चलिए चलिए, सोच विचार करके आप दिमागी कसरत करके फिर से वापस आ जाइए, हम वही हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। चलिए, शुभ दिन आपको भी। चलिए, एक और श्रोता लाइन पर है, आइए उनको हम सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब। हेलो।
4: हेलो,
0: नमस्ते रंजन जी।
4: नमस्ते। नमस्ते,
0: कैसे हैं आप?
4: ठीक है ठीक है ठीक है, आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ।
0: हाँ, और आपके पास क्या जवाब है?
4: देखिए, मैं ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल से बुद्धि है। बुद्धि?
0: बुद्धि नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, और साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कहेंगे शुभ दिन। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
5: हेलो,
0: नमस्ते।
5: नमस्ते, जिसका से आली।
0: आली जी, आपका स्वागत है। और अली जी, आपके पास क्या जवाब?
5: मालूम नहीं, ठीक कहेगा या नहीं, शायद पैसा।
0: शायद नहीं, ये तो सही जवाब है अली जी, वो पैसा ही है जो खुद नहीं चलती पर दुनिया को चलाती है। उसके पास इतनी पावर है कि सबको अपने मुट्ठी में रख देता है ना। चलिए, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद अली जी, और आपको कहेंगे शुभ दिन।
5: शुभ दिन आपको।
0: तो चलिए श्रोतागण, इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। और सभी जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी

0: को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही मज़ा आया हुआ आज कि आप लोगों ने ऐसे जो है फ़ोन पे फ़ोन करते रहे, और ऐसा लगता है कि आप लोगों के प्यार के कारण ही हम चले आते हैं साथ निभाने के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, और इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, 9 बजे आप समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
1: गर्मा गर्म नाश्ता।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने यूनेस्को के एगो ऐसन संगठन पर बात करब जा जो उनकी अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, और एकर नाम है इक्रोम। इक्रोम अपन सदस्य देश लोक संगे दुनिया भर में और दुनिया भर के हर एक इलाका में सांस्कृतिक धरोहर के हर रूप में संरक्षण करेला और संरक्षण के बढ़ावा देवेला। 2001 के सांस्कृतिक विविधता यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लोरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी के जन कन्वेंशन बा, वो एकदम इक्रोम के फिलोसॉफी पर ही आधारित है। इक्रोम के मतलब का है? एक मतलब है द इंटरनेशनल सेंटर for the study of the preservation and restoration of cultural property, मतलब कि सांस्कृतिक विरासत के पुनर्स्थापना। एकर मकसद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खातिर आपसी विश्वास, सहयोग, बातचीत, सहनशीलता और संस्कृति के विविधता के सम्मान करते हुए काम करेंगे। 6 दशक तक इक्रोम अपन सदस्य देश के सहयोग दे ले आलबा अपन अपन धरोहर के संरक्षण करेंगे। इक्रोम की स्थापना इटाली में करल गल रहल और उ हुए से कार्य करेला। एकर गठन जानेला काहे करल गल रहल? जब दूसरा विश्व युद्ध चलल और समाप्त होल तब कितने धरोहर, कितने सांस्कृतिक धरोहर विशेष रूप से यूरोप में बर्बाद हो गल रहल। उ सब कल्चरल प्रॉपर्टी के फिर से स्थापित करे खातिर और धरोहर के सुरक्षा और प्रमोशन खातिर यूनेस्को हाली एकर गठन करलक। और एकर एगो और मकसद ई भी रहल कि इक्रोम ही वो मुख्य संस्था, सेंट्रल बॉडी रही जोन सब देश के रास्ता दिखाए, उ लोग के अपन विशेषज्ञता, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करी जे अपन धरोहर के बढ़ावा देवी चाहता। इटाली रोम के ई खातिर चुनल कर रहल मुख्यालय के रूप में, कहे कि इटाली सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में संस्था लोग के बहुत अच्छा तरह से तैयार कर ले रहल। और फिर 1957 जिजनफ सेकॉन सेट में पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में इस संधि पर सही कर गल। और 1958 जिजनफ सेकॉन चुट में इटाली के राष्ट्रीय सभा में ये फैसला के रेटिफाई करा गल। आज 60 बरिस स्वतंत्रता से जस्टिस समय के बाद भी इक्रोम उतने ही ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपन लक्ष्य में आगे बढ़ता। आज दुनिया के सबसे बड़ा चुनौती बा मौसम परिवर्तन, और इक्रोम बहुत ही वफादारी के साथ अपन मिशन, अपन लक्ष्य में आगे बढ़ता सब सदस्य देश लोक संगे। याद रखिए कि मॉरिशस भी इक्रोम के एगो सदस्य देश है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना। धन्यवाद। नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की 9 बजे हैं। आइए मिलते हैं गीता सुरानान से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार गीता जी।
2: नमस्कार वेदिता, सभी को हमारा नमस्कार। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज शुक्रवार को लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। ये फैसला करना होगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएं या इनमें बढ़ोतरी की जाए। ये फैसला ऐसे समय हो रहा है जब मध्य पूर्व में राजनीतिक तनाव और हुर्मुज़ तेल जल मार्ग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड के पास फिलहाल 8 इलेक्ट्रिक बसें हैं जिन्हें सोलर एनर्जी से चार्ज किया जाता है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करना है।

0: कंपनी ने कल एबेन स्थित हेनेसी पार्क होटल में प्रोजेक्ट हेलियस की शुरुआत की। इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए रोजल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड ने अपना खुद का सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाया है और रिश्लियो में एक सोलर पावर फार्म की तैयारी भी कर रही है। समारोह में भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बस ऑपरेटरों को हर इलेक्ट्रिक बस के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है और अभी तक केवल 11 बसों को इस योजना का लाभ हुआ है। कल रात नया चांद नजर आया। आज जुम्मे को रबी उल अव्वल महीने की पहली तारीख है। जुमा मस्जिद मुस्लिम कौम को इतला करती है कि यौमुन नबी 25 अगस्त को मनाई जाएगी। और विदेशी खबरों में, भारत में मौसम विभाग ने आज के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत करीब 15 राज्यों में तूफानी बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जहां श्रोताओं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जैसे कि पिछले हफ्ते हमारे बीच हमारे जो मेहमान हैं कपिल देव रघुनंदन जी, उनके साथ हमने गोद, जैसे हम बच्चा गोद लेते हैं, और आदुपशों जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो वो जो हमारा विषय है वो रह गया था। तो आज जो है उनसे हम फिर मिल रहे हैं इसी विषय पर बात करने के लिए। चलिए उनसे मिलते हैं। कपिल देव जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
1: कार्यक्रम में स्वागत बा।
2: शुक्रिया।
1: तो पिछले हफ्ते हमने आदुपशियों पर बतियले रलीजा, और हम के याद बा कि हमने बदले रलीजा की तीन तरह के आदुपशियों है, और उकर पर हमने बात करे रलीजा। हमने के पास इतना समय नहीं रहल कि हमने के जो पिछले हफ्ते के जो हमने के विषय रहल उकर पर पूरी तरह से बात करब जा। तो हम चाहते कि जितना कोई हमने के कार्यक्रम जो बा कहीं ना कहीं अगर छूट गल बा, नहीं सुन ले रह जा पूरा, या ढेर कोई नहीं सुन ले हो जा हमने के कार्यक्रम, तो एगो छोटा कुन एगो रिकाप कर दे ला जा।
2: अरे जैसे है, शुरुआत में तू बोल कि हमने के देखे ला सबने के कानून में कुछ सी विल में तीन काली थे के आदुपशों बा। और पहला देखले रही सब मज आदुपशों सैप, आदुपशों प्लीनेर और लेजिटिमाशों पर आदुपशों। इस सब हम एक्सप्लिके करब सर। ये जाने ला ये एगो टॉपिक है जो बड़ी लंबा है।
1: हाँ।
2: मैं ही खातिन तक मज वक्त लगे ला, कभी देख आधा में रह जाला आधा नहीं होला। मैं तो हर परमिशन से आज जैसे बोल शुरू करते हैं, एगो रिकाप करते हैं,
1: छोटा कुछ रिकाप जितना कोई मौके होगा हमने के कार्यक्रम।
2: अरे पहला देखे ला सर, ये आदुपशों सैप दिखले रही सबने। आदुपशों सैप मॉरिशस में बड़ी कुआं बा। तीन कार आदमी जो आदुपशों करेला एगो लड़का गोद में लेवेला, जैसे या छोकड़ी हो या छोकड़ा कोई, तो देखब वो आदुपशों सैप ही करेला। आदुपशों सैप के उकर मजा का है बा, उकर है बान रीजों बा कौन सी करे के चाहेला, वो सब दिखले रही सर। और हमने देखेला सर आज आदुपशों सैप कब एगो आदमी करेला एगो लड़का के, तो वो लड़का मेम दुआ होला ओके जोन के आदुपते कर लेबा ओकर लड़का नियर। कोनो तो आदमी आदुपते करेला कब नहीं है बा लड़का, कोनो तो आदुपते करेला एगो लड़का उकर माँ उकर बहन उनके या एगो परिवार जोन के पोस बा, उ लड़का के जोन उ लड़का उकर संगे है दिन भर ओके देखभाल कर ले बा, तो बोले अरे हम ओकर तो माँ बाप अब तक नहीं बा, तो जाई कहाँ, तो चलो हम ओके आदुपते कर देला। तो देखबा मेम की ओकर लड़का बा, और हियाँ देखब उ लड़का के वो आदुपते करता। जब वो आदुपते करता उपमा जे लड़का के, उ लड़का अन मन एगो लड़का लेजिटिम नियर बन जाला।
1: उ लड़का के एगो परिवार अपन नाम देवेला।
2: हाँ,
1: नाम देवेला, ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवेला, ओकर देखभाल करेला, ओकर लेकुल के, ओकर पढ़ाई के, ओकर खाए पिए के, ओकर कपड़ा जूता, यानी कि उ लड़का जोन बा उ लोग के जिंदगी के, उ लोग के एक परिवार के हिस्सा बन जला, जहाँ पर ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवेलन जा।
2: जरूर जरूर, सब तू बोल देला। तो ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ओके देखता, मैं हम नहीं देखते इस ई कुमा जल लेकुल भिजे के नहीं ओके का कर ले बा होला देख ले रही सर। मैं अभी के लिए देखता इस उ लड़का कब उ परिवार में चला वेला, अनमन एगो लड़का हो जाला आज के मैडम हो के या मिसेवा जोन के रल ओकर लड़का नियर। अब ओकर देख कब लड़का उ आवेला जहाँ आदुपशों कल सर, बस ओकर तो लड़का है बायोलॉजिक नहीं है ना, दूसर के लड़का है। जब वो आदेय होवेला उ फमिया में आदुपतों के फामी में, अनमन ओकर भाग जे रिचे हो जाला ओकर लड़का दूसर नियर। ओके धन दौलत घर उर सब मिली, और जब हियाँ भी देखे वो कितना जोली चीज है ओके मिली हियाँ सब चीज एक बगल पारूर रही या कुछ रही पैसा रही,
1: ओकर जो परिवार बा अगर हुआ पर बा तो हुआ पर मिली
2: है का, और हुआ को हुआ से देख ओके ओके फिर से मिली। तो यहाँ देखा कोई भाग को याद
1: उठते,
2: तो देखा कोई हमने के मन हो याद उठते खड़े के, तो याद उठते कर टेंशन, तो सब से दोनों बगल से कुछ ना कुछ मिली। अरे तो देखे ला उ लड़का के ओकर जैसे हम नहीं बोल से ओकर दुआ एक जीते अनमन ओकर दोनों बगल से मिलेला, माँ बगल से नहीं हो और हो बोल जो आदुपते कर लेबा। आर ये सब हमने कब दिखले रही सर, आर दिखले रही सर कौन कौन डिफरेंस चाहेला एगो आदमी के, सिबोजो थां थां रहे के चाहेला, इन बिटवीन चाहेला उ आदमी आके लाज आली उ में नहीं जाब सर। आज तो दिख ली सर हौ वाला दिख ली सर एगो आदुपशों सैप होला। अरे अब का होल मन बातों का रिवोके करे के हौ आदुपशों कर ले हुआ हौ आदुपशों सैपे है हौ दूसर में नहीं बात करते हैं सर। ओके मन बा हिया आदु रिवोके करे के, अब कौन प्रोसीजर करी काहे एगो आदमी देख बा सकेला एगो लड़का के आदुपते करे, वो लड़का कैसे बड़ा होल

0: तनी मनी जिजुतों से तक यहाँ बीता मोवे तो देखबा बहुत चीज लगल करी मूवे हो देखबा लाधोग में लगल जाए या जैसे ने गो काम लगी करे कि तुहरा देखत हो
1: सुधरत नहीं बा मूवे काम करता
0: हमनी के कानून में बोलेला ओके रिवो के करे के प मोचिव ग्राव ओ करे को कुमार जे इंटेंशन ग्राव बा एगो चीज करे के नहीं करे के चाहेला आज को बोली कि मुआ दे लेबा कोई के
1: हां
0: वो मिया तो सोचा था अरे ऐसा नहीं का हम का करे
1: नाम खराब करे तक है तब भोजन जन परिवार बा उत पर नाम दे लेबा ना
0: हां तो अब वो के कुमार जे मन बागी वो के करे के अब सकी रे वो के करे वो आदमी फिर से कुमार जे लाइक वा के कुमार जब नहीं मां बाप कुमार जब नहीं बनी ना अदुक्तों जैसे हमने वर्षा नहीं रही का एगो केस कब डाली लाकूर में कुमा जे डाली हुआ बोली कि कुम का दिख हम मांग कर थी हई जी से कि ई छोकड़वा या छोकड़िया के जोन के हम हई आदुक्ते कर लेली हम के मन बा रिवोके करे के हम के रिवोके करे के काहे मांगत हई एगो आबो के देखी अब
1: यार अगर चला कर वजह चला रहे के ना
0: हां अब उ में ए वोके करी ओके बोली कि ई लइकवा ए जी बा एगो लइकवा कुमा जो कर रिलेशन देते हुए बा नई लिमन लड़का जो ओकर कोपोट में जैसे हमने बोले तरवासी बा मुआ हुआ था सिर्फ है गुलाबी प्रोस्टिट्यूट या ना था तो ओकर परिवार के कुमार जो सब इज्जत जैसे बोला ओकर इज्जत तक कुमार जो है
1: परिवार के नाम खराब कर रहता तो कैसे भी करके परिवार वा जोन बा जो माता पिता बाबा लोग के अधिकार बा कि वो लोग जोन बा है अदोपशन वा के सकें जाए वो करके आएगी लेकिन नाम खराब कर रहता
0: और नाम तक खराब करती बा मैं क्या करता जो आदमियों के आदोपते कर लिया मैं नाश्ते करता वही आदमियों के
1: घर में तोड़ फोड़ मैं नाश्ते करता मारे जाता दुमिदे करता हो सकेला कि जन परिवार बा लोग के लड़का बा लोग के लड़का के मारता देखो खतरा से की बन जाए
0: लड़का ये सब लगल कुमा जे कब ऊ लड़का औसे करे अब कुमा जे एगो बोली के का करी एक बान बा ऐसा में हम कानून में तो है बा अब ऊ छोकड़वा कब बड़ा हो सिपोसो एको गो लड़का नहीं रहो जो आदमिया के आदोपते कर ली लड़का के खाली आदोपते कर ले बा अब ये लड़का का बोला था लादोग में ढूक गल बा बोले घरवा बेच है जमीनवा बेच अब हमके मन तुम बेच के हमके पैसवा दे पस हम ही तो जगी छी हाँ अब कहाँ जइबे तो अब ऐसा ऐसा काम ओकर मोचिव ग्राफ जैसे हमने बोला सर तो रही तो सकी मांग करी लाखू सिपाही से कि देख ऊ जीवो है लड़का के हम आदोपते कर लें अब हम चाहत हई रेवो के करे के अब हम नहीं चाहते ऊ हमार लड़का आदोपशों के लड़का हो
1: ऐसा मैं जूस कौन सी करे
0: हाँ तो जी सुने ला कहनिया जे कुमा जे झोली अरे तू ही एगो आदमी तुरा में है कुमा जे है एगो लड़का के तू है आदोपते कर ले वह वही लड़का तुरा में नाशे कर तुरा मोआई की
1: हाँ लड़का मान ला लड़का लाधोक ले हुआ था घर के चीज बेच देवा था चोरी कर देवा था पैसा
0: ये तो बा और का करे से नहीं देब ओके कुमा जे पैसा तो ऊ छोकड़ुआ ऊ तो आर कुमा जे घर में मजे एगो है कुमा जे तराका दे दई तो ही बोलल जला आदोपशों करे के गाड़ी एगो आदोपशों सै बोलत हैं सर चाहे ला बहुत लिमन से सोचे के हम पहला शुरू देखे सर कब आदमी सोचे रहे अरे हमार कब हम बूढ़ा हो जाब ना कोई नहीं रही हमके देखे ये लैकवा के देखब नहीं जन्म अनमन एगो शादी है शादी कर ल भैया नहीं सोचल कि कुमार जे पगाजी में हवत हो कुमार जे जैसे कुमार बोले सर शादी कर ल लाइफ खातिर नहीं जन्म बीच में का हुए लगो जीवो सो जाला हौ लैकवा के देख ल आदोपते कर ल सोच ल उ बखत हुआ कि हरी बाप हई हमार देखभाल करी एगो बड़ी लिमन नहीं बताई नहीं आदोपते कर है तो तू आदमिया जो आदोपते कर ओके जानी ओकर चाल चलन उ लैकवा के कि इस सकलाई आदोपते करे कि नहीं कि ओकर कुमार जे मोशियों हो जाइब एगो सागर करब उ लैकवा के बस कुमा जे जाके आदोपते कर ल का करेला एक बार कानून में बा केस आल बा जहाँ उ लैकवा लाधोग में ढुक गल बा दिन रात जो नो के आदोपते कर ले बा मऊआ या बपुआ पैसा मांगता
1: मारता
0: मारता अब उ लैकवा से कभी यहाँ यहाँ तक कभी तो बा को के पैसों नहीं बा उ सकेला गरीब हुई एगो लड़का के जैसे बोली ना सोचा था कि कम का कब बूढ़ा हुई तो ओके देखी तो वो नहीं बार ओकर यहाँ पैसा पसंद ओसन आदमी कोई नहीं दबाव कर लेगा तो दिखब एगो सिचुएशन चला वेला कि जहाँ उ लैकवा एगो प्रॉब्लम हो जाला कुमार जे अब हुए के आदोपते कर ल कितना खुशहाली से कितना गई से अब उ बड़ा होल घर बेच भैया सब चीज करके ओके अब पैसा द उ कुछ करे तोरा नहीं सकब कुमार जे ओकर में अब लोड डाले ये देख ल आले ये तो देख ली सही रिवोकेशन के तब लिख मोचिव ग्राव एगो सोलिड रीजन हुई एगो बॉन रीजन हुई तो सकब एगो मांग करे कुमार जे लाखू के ओके रिवोके करे के आले ये तो देख ली सर तने ज्यादा हलियाली जाते हैं सर अब एगो लड़का के कोनो कर प्रोसीजर आदोपते करे के

0: adopter ta bol dri sakun kon condition ha kon procedure kaise go laika ke adopte karba ali pahila चाहेला जोन अदमिया ओके मन बा अदोप्ते करे के ऊ छोकड़िया के या छोकड़िया के तो ओके चाहेला एगो केस डाले के लाकू सिपाही में
1: अच्छा यानी कि हम आज कोई के अदोप्ते करे खोजे थे एगो लड़का के तो हम के चाहेला लाकू सिपाही में
0: एगो केस डाले
1: एगो के केस डाले के
0: केसवा डाले के चाहेला एगो आबो एगो अबोका लेके
1: हां
0: पसी गो पोसेपे एगो प्लांट नियर डाले लनसन मांग करल जला जीजुआ के फैमिली डिवीजन में कि देख ई हमर कुमा जे ई लइकवा के जुनबा ओ हम के मन बा ओके अदोप्ते करे के और ओकर अदोप्ते अदोप्शनवा में एक बानु कर रीजन दे के चाहेला और चाहेला एगो कब डाली ओ अबोवा अदोप्शनवा में चाहेला एगो लाफिदाविद करे के लाफी दावित करे के जुन अदमिया
1: अदोप्ते करता
0: करता ओकर बोले के चला कौन कौन ओकर रीजन है बा ओके अदोप्ते करे के अब जे ऊ लइकवा के ओकर माँ बाप होई
1: तो ओके चला
0: हाँ ओकरो चाहेला एगो लाफी दावित डाले के न काल बोली हम तो नहीं बोले रही हमर परमिशन नहीं दे रही हमर तो लड़का छोटा हमी ने कैसे तू अदोप्ते कर ले
1: चला जाने के काहे अदोप्ते करत हो काहे देवत हो अदोप्शन के ई वजह भी चला जाने के
0: सब रीजन डाले के चला ज्यादा रीजन आए जो ना अदोप्ते करता ना
1: हाँ।
0: वो बोलत हुई काहे अदोप्ते करता
1: हमारे लड़का ने बा हम खातिर को लड़का अदोप्ते करे को था इसे की बोले
0: हाँ और वो से की बोले हम खुशी हई कि ऐतेल ऐतेल जान पहचान बाओ के बड़ी लिमन आदमी हम समझी ला कि लड़का फैका नहीं बा तो ओके कुमा जे हम के कुमा जे कोनो ऑब्जेक्शन नहीं बा वो कुमा जे ओकर परमिशन देवता उ लफी देवदवा बना के कि हमर लड़का है हम के ओके ओके ऑब्जेक्शन नहीं बा कि ई मैडम हो या मिशे हुआ अदोप्ते करी तो देख लो हिया का कर लग चाहत ओके जाए के एगो के है लाकू में आवे के है करे के लाफी दावित दे चाहेला मांगे के और चाहेला एगो मेमोरेंडम ऑफ कंसेंट यही मेमोरेंडम ऑफ कंसेंट जहाँ दोनों लोग के कुमा जे आक्षेपते हुई के चाहेला कि हे लैकवा ऐतिल के देवत हई उ अदोप्ते करी अब जे ये कब हो गल तो ऊ जो नदमिया अदोप्ते करता ऊ लैकवा के अरे तो चाहेला बहुत सा दुखी म कैसे शादी करे जाइब मांगे ला तुहरा ना
1: एगो लड़का के जब अदोप्ते करत हुआ तो लड़कवा के कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहेला
0: हाँ जो पहला चीज तो लड़कवा के एक गो डॉक्यूमेंट हुई ओकर तो हुई
1: लागे ने सांस
0: बस भी तो मिनेर बाक दे आईडी सब नहीं बा है तो हाँ नहीं कुछ तो सारे बोले कि आईडी के कब आवत है जानेला अब एगो लड़का कैसे जन्म होला ओकर एगो आईडी मिल जाला आज जन्म बोल कैसे डिक्लेयर कर लन सन तो एगो आईडी नंबर पहले तो फोले मजे लजवा में होता 18
1: साल के होता
0: तो अब नहीं अब दिस वीक उही दिन होए वो मजे कब डिक्लेयर करेला एगो निमिरो दे देवे लन सन अरे ऊ के बात नहीं करते सर यहां देख बा ऊ लइकवा के चाहेला ओकर लग देने सोसवा ना तब ना बताई कि कुम का ओकर नाम कौन सी निकल बा कैसे होल बा अब चाहेला आग देने सांस जोन हौ आदमीया जान एगो कुपवा जोन ऊ ओके मन बा अदोप्ते करे के ऊ लइकवा के ओके चाहेला पति हो या पत्नी हो या अकेले हो ओकर लाख देने सांस चाहेला और जे शादी कर ले होई तो ओकर लाख मयाज चाहेला लाख मयाज भी हो जाला तो ओके चाहेला ओकर कते दां चीते ओकर है के
1: यानी कि लाख मयाज ओके कते दां चीते
0: लाख मयाज देखब लाख कद है लाख देने सांस
1: हाँ।
0: ओकर है आ चाहेला एगो ए दं छिते है के ओकर आईडी
1: हाँ।
0: में सबसे बड़ा और चीज है
1: एकर अलावा और
0: हाँ ओकर सर्टिफिकेट दे मोगालिते कौन कालिते आदमी के तू कुमा जे है हुआ कि अदोप्ते करत हुआ बस की आग तो जन्मे करे ला दुनिया में बहुत सा तारे देखब समझ के पोगामा में जे मिली वक्त कितना ट्रैफिक होवेला लड़का के विषय में
1: अच्छा अच्छा
0: एक बात चीज कभी तो लड़का के एक मजे आन के उपेगाशों करन सन ओकर कुमा जे
1: पहुंची
0: जो ओ गान कम हां ये वो सब नहीं देख जा में है ही ते ही खातिर चाहे ला देखे के एगो सर्टिफिकेट दे मोरालिटी कि ई आदमीया कौन कालिते आदमी है ऐसी दिशा किस लाकू कर लेबा दिशा कौन दाने होल बा तथा कौन चीज दे एगो आदमी के जो कौन दाने कर लेबा एगो लड़का के या एगो घर हक में जो ब्रोवेल ये एगो लाका दे प्रोस्टिट्यूशन ऊ में के आदमी है ऊ जाके ओकी पे हई करता ओ हई अदोप्ते करता ऊ लड़का के तो जिजवा कहाँ दे बस कि ओकर सर्टिफिकेट दे मोगालिते में बोल देवेला कौन कालिते आदमी है ई बस जो हो प्रीवियस चोरी बड़का चोरी कर लेबा फुजों कर लेबा तब सर्टिफिकेट दे मोबाइल थे कब देवेला गुवेन मोबाइल से मिलेगा सब लिखल

0: जिकर ले बा आर को लदवास पोप हुई क्लीन रिकॉर्ड हुई तो उमे बोली ना कि देखो ऐतिल बा अब ये दैन्य चीज है दोनों चाहे हऊ माँ बगल के और बाप और हेनो माँ बगल के एगो सीए करे के कि दोनों को सौत में करे एगो पापी कुमा जे ऊ छऊ लाफीदा विधवा में कर ले वंसन और जो जिजुआ हियाँ करी चाहे लो उनके सियाँ छिया काल नहीं सीखे बोले कि हम नहीं कर ले हैं इस स्तर
1: पर एगो सवाल से कब करी यहाँ पर मानला भी बोला था कि एगो जोन जोड़ा बाजे से एगो कुब्बा एगो लड़का के आदुप्ते करत हुआ जा तो जे आदुप्ते करता और कर मोगारिते जोन बा वो चाहे ला प्रेजेंटे करे के तो जे जे कर लड़कुआ है ओकरो भी चाहे ला प्रेजेंटे करे के
0: दोनों
1: दोनों के अब मानला एक जना बा जे ओकर बाप जोन बा एगो जेल चल गल बा यानी कि प्रिजन में बा और लाइकवा जोन बा उ कैसे बोला कि ओकर देखे के कोई नहीं बा तेगो दूसर कोई ओके आदुप्ते करे खो जाता और ई देवे खत अपन लड़का कि हाँ हमर तब प्रिजन में है हमके तब अब यहाँ पर हमर जीवन खराब हो गल बा हम चाहते कि हमारे लड़का के कोई आदुप्ते करी तो ऐसा में कोई मुश्किल नहीं होला
0: नहीं कोई मुश्किल नहीं हुई मैं कहे चीज वा प्लीज इंपोर्टेंट देखे जे आदुप्ते करता ओकर झकमा जाल चलन जे रही ओकर हुकमा जे पापी है जैसे मुझे बोले सफा रही पोप रही तब तो उतो बोली नहीं तब ये ओकरी तो नहीं उ सकेला कुछ कर ले यही खातिन साइड नहीं सकता उलई को के देखे बस को मजा
1: एगो एगो एगो रीजन मिल जाला कि लइकवा के सगबा अदुप्ते करे
0: हां
1: अब आज लइकवा बड़ा हो गया जे अपन बाप कहते बन गल त हिया सगबा रिवो के कर दे
0: हां और एगो एक मजा रिवो काशो सगबा करे दूसरा चीज है सिर्फ को मजा तरेलवा नहीं बोली को मजा है बा सी वो जों प्रिजन करता ला ड्रग में बा जब उ लइकवा ओकर अदुप्शन सकल जाला रिवो के करे जब उ लइकवा ए ग्रैचुटीड बा और हई बगल ओकर जोन आदमा हई आदोप्ते कर लेबा कानून है जब एगो लड़का के आदोप्ते कर देबा अनमन तोहर लड़का हो जाला कब उ लड़का होवेला ओके भी चाहेला एगो सेतन कुमा जे हई पैसा दे के खाई के दे के मौवा के जे सकी काम करे ते देखभाल करे के अब ओके देखभाल नहीं करता मारता पीटता बस ओकर ए ग्रैचुटीड बा और ओकर गैलाशो जोन बा देते तोहिए हो गल बा ऊ परिवार में तो ऐसा काम ही दिखब सकी मांग करी कि एगो नहीं इ लड़कों से अब हम नहीं सकब जे रहे अब प्रीतो रिवो के कर ते सब जिजुआ के इताले करेला ओकर पेचिशियों आपो से पेवा में आवेवा कब जिजुआ देखेला कब आवेला बतियाला लाकुर में तो कुंवेंक करेला जिजुआ के चाहे के कुंवेंक करेगी तब ने जिजुआ है कुमा जे रिवो के करी जब जिजुआ सैटिस्फे बा कि रेजों बा और बा ऐसा बा एविडेंस बा प्रेव बा तो सकी कुमा जे केसुआ में ओ लैकुआ के जोन आदोप्ति कर ले रहल माता जिया या आ रहे हो चचा सकी वो है बुके कर दे
1: बहुत खूब
0: देख ला ये स्टबली बात कर ली सर तीन काल थे अदोप्शन बा अदोप्शन सेंट में कुमार जी फिनोल अब हमने आप सर ना तो नहीं फिनोल जिसे लंबा बा ना क्या करूँगा तो आप सर अब सेगों अदोप्शन वाले देख सर सेगों अदोप्शन वाले एक रे नाम हमने बात कर सर अदोप्शन प्लेनियर ये कहाँ है एक बार आदमी बोली अरे अदोप्शन सेंट तो सबको जाने ला गोद में के एगो आदमी के ले ले ला अच्छा एगो डिमांड अडॉप्शन प्लेनियर अप्लीके होए रहला दो तीन कंडीशन में तब देखब ई सकल जाय होई करी आली जब एगो आदमी मन बा ओके एगो है अडॉप्शन प्लेनियर करी के तो ऊ चाहला ऊ कुपवा के जो ना अडॉप्टे करता दोनों शादी कर ले वंसन में संगे रहे लंसन हो में तो देख ली सा सकी तो वेव हो रही जो आदमी ओके ओके बेगा एगो दादी सिवा मौसी है लड़का भाई का नहीं बा पति नहीं बा आदोपते वेब सगला में है में नहीं जब एगो है आदोप्शन प्लेनेय करे कर जाना दोनों के चाहेला संगे रहे के एक के घर में जाने पिता देख अब समझ जीवोस और सेपरेशन जी को एगो दो दो डिफरेंस चीज है एक बार आदमी को बोले नहीं सेपारे हैं योकर से कब सेपारे हुए तक अनमन जीवो से नियर मैं देखा सभी वो अभी ज्यादा कॉम्प्लीट वो नहीं बात करते हैं सर तो यहाँ आदोप्शन प्लेनेय में देखा वो का करता वो आदमिया की सखी हौलैकवा के आदोप्ते करे फोडे एगो खूब जोन संगे जियत वंसन अब जे संगे जियत वंसन ई में कोनो लाज की कुमा जिया नहीं नेसेसेर बा हौ में तो दिख ली सन तीस बरिस के चाहेला लैकवा के चाहेला पंद्रह बरिस ज्यादा है रहे के है से जोन कुपवा आदोप्ते करता से वो जो कुपवा जोन आदोप्ते करता बा ओके थ बा तो कैंज कुमा जे ऊ लैकवा कुमा जे है कम कम रहेला ना कैंज रही तब नौ थ के आदोप्ते कर एगो डिफरेंस दे लाज दे कैंज चाहेला ये सब दिख ली सर ई में नहीं इमे ओ कोनो कंडीशन ला

0: आज नहीं बा वो कुपवा के चाहेला अडोप्टे करे के एगो अडोप्शन प्लिनेयर में
1: यानी कि एगो एगो एगो जो जोड़ा बा एगो कुप हवन चा दोनों के कैसे 30 ans, 30 ans, 35 ans, or 40 ans होल होई एगो लेका के अडोप्टे करे तो संगे रहत हन जलो के लेका नहीं बा
0: जोली इहि हां संगे रहन सन पुवी तब वो कुपवा सके एगो अडोप्शन प्लिनेयर करे आले ई ते अडोप्शन प्लिनेयर करे के इमे त खाली एक एगो चीज नहीं है कि संगे रहिबा आलोस्त कुमा सकब अब का होइला एगो लैका जो अडोप्शन प्लेनिया करे सन कहाँ लैकुआ के मिले हौ तो देख ली से एगो परिवार के देवता
1: हाँ
0: तो तीन कार दिखब अडोप्शन प्लेनिया में ओ लैकुआ जो लैकुआ अबंदोने हो गल बा अबंदोने हो गल बा ओकर परिवार से परिवार वा के कोते नहीं लोता हौ में तो देख ला ना ओके चैनल कर परमिशन डाले के बपुआ के आर मऊआ के थब ना ओके दे हौ के हिया नहीं हिया तो बपुए मऊआ ओके जो जेले बा जनमवा
1: लेवा के छोड़ देले वत सा
0: छोड़ देले बा बंदोने कर देले बा कोई ये जगह नहीं बा एक बान आदमी बा भी देखब सका
1: ऐसा निकालो ज्यादातर कैसे बोला जा कि अनाथालय में मिलेला ना
0: ई दूसरा भी देखब स अनाथालय सिर्फ नहीं बा शेल्टर बा कोई के नहीं बा लिया देखब माँ बाबू को छोड़ दिल बा लैका देखब कुमा जी हमनी के देश में भी बा एगो लैका को एगो मैडम हो एगो लिपो खोल बा एगो केस रहल अरे लैको के का होल ओके कुमा जी हई ऐसे जे मैडमो का होल कोई के नहीं बा जियथल दूसर काली थे बस एगो कुमा जी लैका हो गल बिस्टोप के आगे बैठल बा बिस्टोप के आगे अभी लैकवा नहीं होल मारे गोलो हई में हई सेवियत में डाल के ओके वहाँ छोड़ के भाग गल एकरे ना अबोंदोने तो के छोड़ के हई चल गल अब लैकवा के अभी तक कभी देखबे को दूसर आदमी पासे होता सिपाला पुलिस पासे होता बोली देखे गो लैका खाने के छोड़ के गल बा तो के लेवे लनसन कोट में को जे आके ओके ले जाई तो यहाँ देख ला ऐसन ऐसन जोन लैका अबोंदोने हो गल बा शेल्टर में बा क्रैश में बा तो देख बा इस सब लैका के कुमा जे अडोप्शन प्लेनेयर आवेला अब दूसरा दिखेला सा जोन के लैका के उरे अबोंदोने हो गल बा तो किसी जन्म ओकर पारों के है ऐ कोनी ओकर पारों तो जब अबोंदोने कर के किसी एगो
1: लैका के जन्म देके कहूं जंगल में फेंक के कहूं कूड़ादान में डाल के चल गलो तो कैसे पता चली के है
0: कितना लेन में बा देखबक मैं हम अफाई हम तो बहुत लागल हई वहाँ देखने एगो लैका के कुमा जे खाई नहीं होल बा अभी देखल से एगो हई में अनमन एगो फ्लास्क में जे अबों दोने में एगो तेहा जैसे छोड़ के चल जन सन अब कोई नहीं जानत ओकर माँ है कि है बाप के है कि अब मजे फसिल चीज नहीं है मैं ऐसने होला अब औसन लैका के तो बा एगो इंस्टीट्यूशन कुमा जे कैसे हियाँ तो बा ना गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बा औसन लैका के देखभाल करे के लियन सन खश में लियन सन सिपा ओके शेल्टर में ले जाके ओकर भाल करी तबले कुमा जे ये गुहाई रही और दूसरा रही ये सब बोले से जिसे कर परिवार ऐ कोनी बा मैं ऐ कोनी बा कोरे एक बार तब बा बेचारा वो अपने मर गल बा तो यहाँ ताबों दोने हो जाए ना लेको मऊ बपुआ कुमा जे अब नहीं बा मर गई लंसन जन्म ले लकू मिसिर में का कर लक उ लैको के माँ बपुआ कब कैसे कुमा जे जन्म लेक से एक बड़ी सोल दू बड़ी सोल उ देख बा उ लैको के माँ बाप दोनों मर गल तो लैका तो एगो लैका अबोंदोने हो गल एगो लैका जोन के माँ बाप हाँ तो यहाँ देखे ल एगो अडोप्शन जो प्रिनेय है अब हम देख स तरलुआ नियर ओकर लिफे का है देख ली स पहला कब तू है एगो लैका के अडोप्टे कर ल सैं तो वो दोनों बगल से है एविते कर अभी अभी देख अच्छा अभी पहला चीज देखला सा ओकर लिफे अडोप्शन का है एगो अडोप्शन प्लेनेय में ओकर लिफे कौन चीज हुएला ओकर ऐसा लैके के कब रही बा जोन लैका अपन कुमा जे है अडोप्टे कर ले वा एगो अडोप्शन प्लेनेय ओ सब ओकर जोन रहल ओकर माँ बाप से ओ सब कुमा जे ओ ओकर फैमिली ओरिजिन से के सब बिला जाला कुछ ओके रिकोनेक्ट नहीं है करी अब
1: लैकवा के तो जन्मे नहीं करत हो ना के है कहाँ से आल बा के पैदा कर ले बा लाख दिन सांस नहीं बा कुछ नहीं बा
0: हाँ अब दोनों हो गए
1: नहीं लैकवा के ओकर नाम में कुछ नहीं बा कोई नहीं आता के ओकर माँ बाप
0: हाँ कोई गाली कोई नहीं जाने ला तो ऐसन लैका के ओकर फैमिली ओरिजिन से बुझो लैकवा जानत हो या बाप मऊआ तो जानत ये रही तो हमारे लैका है मेकअप वो आदमिया जो ओके अडोप्टे करता प्लेनेय ओकर नाता कुमा ज हौल हौ पहला परिवार से बियोलॉजिकवा से हौ लैकवा के नहीं बा कुछ
1: अच्छा
0: कुछ कुछ नहीं ओके रिकोनेते नहीं बा हई में तो देखली से जानी अनसन कि वो हमार माँ रखल हमार बाप रहल पहला अडोप्शन सैंपवा में
1: कहे के सब ओकर सब के कैसे बोले रहला पापी मोरालिटी

0: और लाख देने सा शादी कर लता होकर लाख माओ या सब कुछ देख के तब जाके एक्सेप्टे हुए रन सा लैकवा के आदुप्ति करे के दे के यहाँ पर बोला था कि आज लैकवा के पता नहीं बाओ कर माँ बाप के है आज कोई के आदुप्ति करता तो उ परिवार से आज काल के परिवार वा आई बोली कि लैकवा हमर हम आबाउ नहीं करे हम छोड़ के कर ली तो यानी कोनो
1: हक नहीं बा ये देखा ला ये ऐसा एक चीज है मतलब ओकर नाता जो रहल ओकर परिवार वासे अब नहीं रे कोनी
0: अब लैकवा का नहीं जान गल कि हाँ है हमर माँ हाँ बोल देलक माफ कर दे अब तो के छोड़ दे रही चल कर ली तो बोले जैन रही जिस भी तौके रही तो के छोड़ के चल गई नहीं अब हम चाहते हैं कि तू हमारे संगे आके रहो अब लैकवा आज अपन माँ के साथ जाए खोजत है तब
1: हाँ अब तब का हुएला एगो लड़का एंटीग्रे हुएला उ नया फमी वहाँ में जो ओके कुमा जे
0: आदोप्ति
1: कर ले बा तो हिया देख ला और वो जो आदोप्ति कर ले बा वो दे एगो नाम ओकर हाउ परिवरवा के नमवा नहीं बा बस ओके तक मजा बौदेव ने कर दे ले बा जय नाम दे ले बा खाली सिर्फ ई मैं ओके कुमा जे देखभाल कुछ नहीं कर ले बा ओकर कुमा जे अच्छी एगो एगो बात हुई पूछन सको कि है तोर माँ बाप बोले नहीं जानी ला बोले अरे तोर माँ बाप जन्म देले बा नहीं जानी तोर माँ बाप के है तो हम कहते हाँ माँ बाप वो छोड़ देले बा कैसे पैदा ही होल बा कुमजी कुजे वहीं तो माँ बाप
0: के वो हाँ जो आदित्य कर रहे हैं लोग के नाम से जानी
1: ओकर नाम से जानी अब ओकर भाई में ओकर भाई एविताज में पहला के देख ले सर दोनों बगल से एविते करी हाई में नहीं
0: हाँ तो पता नहीं बाकी माँ बाप के है
1: हाँ और हाउ बगल से कुमा जी वो एक बगल कोई कुछ नहीं भी हम सब चीज जोन चाहे हई बगल जोन परिवार वा ओके आदुप्ते करी ओकर बगल से मिली तो देख लो हिया के कर एगो लड़का बांधो ने कैसे हिया चलाल वो कर्मा एगो आदोप्शन प्रेनी है इ खातिर देख बहुत सा मूश है भाई बहन लोग तीन कार जो आदोप्शन करेला आदोप्शन सैप करेलन सन नया आदोप्शन कुमा जे है प्लेनी है वो सब करेला ओकर मुश्किल हो के जानने के ओकर कोसौत में जाने के कहाँ अभी देख सब प्रितार एक बार कोई आदमी बोले ला अरे तो के लड़का नहीं जाना था वे कहाँ बा बोले नहीं एगो लड़का तू के मिला दें बोले हाँ मिला दे भैया हमके तो खुद ही कही बड़ी से परिवार तो नहीं एक्सेप्ट दे पा लड़का मुश्किल होता बोले अरे शेल्टर में जो सिपा क्रश में जो हुआ तक बन लड़का बा बोने बा देख बे रहे लनसन तो भैया मवा बपुआ जुन जाके आप हई मा जे रजिस्ट्री करी एगो लड़का के आदुप्ते करी तो वो तो बोली पति आली हमे को लड़का को जता नहीं जोन कुमा जे सिपा छोटा से फोमातोरी में रहल या एगो मूवे लड़का रहल अब हमके बोते तो वैसन लड़का के हई करे के नहीं एगो एग्जाम्प ओके नहीं तो से मोगिश में देखब आदुप्शन सैप कुआ ज्यादा आदमी ई करेला में बहुत सा कम जोन आदुप्शन हई लेवेला अब हमने वो सब देख लिया
0: अच्छा था आदुप्शन प्लेनवा जोन बोलला एकर में ओकर फोसिजिया कोन चीज रहला
1: हां एकर फोसिजिया में जिस तो ओकर जाके अब मांग करी कि कमका अनमन आदुप्शन है नियर में ओ में अभी ई में परिवारवा नहीं बा तो ओकर ससिया चौ सब नहीं ओ तो विजा
0: हां तो बते
1: जब कुछ नहीं
0: बा तब परिवार ने बा कोई नहीं बा लेको शेल्टर में बा अब जब शेल्टर से कोई ओके आदुप्ते करे खो जाता तब कोन ओकर फोसिजिया रहला
1: तो फोसिजिया रही जोन आदमीया जोन है बा
0: शेल्टर
1: बा शेल्टर के ओ दे ओकर परमिशन और ओकर सब चीज ओकर है जोन जोन जो चीज ओकर है में बा आके हियाँ उबिला फिदाबित करी तो हुआ बता
0: कि लाखुर में
1: हाँ तब पूजे करी अनेक से करी ऊ प्लेने प्लेने में ओकर कुमा जल लाइक वाके एप्लीकेशन में तस्वीर देखी सब लेक नहीं मिली सब चीज उता ओ तो माछ में एगो हो ना लाख देने सांस ओ लाइक वाके नहीं हो हुई तक वो लाइक जोन हो बा एक जोन आदमी दिखलारे कर ले बा ओकर नाम में तो हुई तो देख ला हियाँ जे हुआ से लड़का आल हुआ था तो ओकर त नॉर्मल में माँ बाप कुछ ओके नहीं सकी दे कुछ बा पपी हुए नहीं रही मैं हियाँ जोन आसोस बा ओ दे सबों के दुखी में हुआ ओ तब हाउ जोन हो आदमिया ओके हई करी
0: अच्छा इतना ले बात करिए ले है जल आदिप शर्मा की बात करते लेकिन कबो कबो सवाल चला बेला जैसे कि बोल रहा कि वो लड़का बिस्तर पर पैदा हो गल
1: हाँ।
0: कोई नहीं जाना था कोई सेवित पे लपेट के छोड़ देलक अब लेके गए लंसा लड़का के शेल्टर में डालन सर तो लड़का के ओकरो ते को लाख देने सांस चाहिए ना
1: हाँ बस जो आदमिया ओके दिखलारे कर लग अरे को बोली कि हम एगो लड़का के देखते हैं सीमा में कोई आ बाँधो नहीं कर लेगा कोई कुछ ओके मजा कौन रहे हम ही लड़का के लेके लेता सिविल में जाके ओके दिखलारे कर लें बस ये होके तब हुआ था जब जो आदमिया दिखलारे करेला लेता सिविलवा में उही लैक आदमिया के नाम उ लैकवा के मिलेला कि ई एकर माँ है या कर बाप एगो बोली के एगो है पति पत्नी शादी कर ले रवन सन या नहीं शादी नहीं कर ले रवन सन एगो को मेराज से एगो लड़का हो गल पतिया तो नहीं जाई ना बाप पति बोला था कुमा जय एगो दूसर में प्रिय रिस्पेक्ट से पति पति तो ओकर नहीं है तो ओके गल ओके कुमा जय खुशी हो गल अब उसे

0: वो लड़का होल तो आदमिया नहीं जाय उकमा जैसे बुझो शादी कर लेबा कहाँ जाय दिखलारे करे हो लड़का के नहीं जाय
1: और के तो माँ चाहे
0: माँ जाय ना दिखलारे करे तो लग देने सांसुआ में कब दिखलारे करेला माँ तो हम पूछी ना लेता सिविल के ऑफिस हुआ ये कर लड़का है तो वो बोली ना कि हमारे ऐसे हैं तिल सुलवा तो बोले हाई कोरे तू अनले वाला लड़का ना तू दिखलारे कर तो है ना चला तुम्हारे नाम में डाल लीला सर तब ओकर नमुआ में हो जाला
1: तो यानी कि लड़का जब आम उन्होंने कोई की मिले ला जैसे ला पुलिस लेके जाला फिर ओके शेल्टर में जाता तो शेल्टर में जे ओके दिखलारे जे बा औसा उसे की दिखलारे करे
0: ना ओकमा जे है हां नहीं कभी नहीं मिल तो लोग दिखलारे करे सन कि ई लड़का के ओकर नाम में है दियन सन जो नुलो के मन बा अपने नमुआ नहीं देखे कुमा जे
1: हां तो जाने को कौन नाम देवेलन सर जा जेरे को लड़का आज एगो शेल्टर में बा लड़का दिखलारे नहीं बा कहे कि अभी अभी लड़का पैदा होल बा लड़का के सकेला अभी दो दिन तीन दिन हो लड़का के एक दिन होल हुई अब लड़का के लेके ला पुलिस लोग जाके शेल्टर में डाल दिला लड़का तो दिख लागे नहीं होल बा ना तो के दिख लागे करे
0: देख ही तो बोली ना कब ओके शेल्टर वाले पुलिस वाले के हां जोन रिस्पांसिबल है शेल्टर वाले के वो ले जाए अब कुआं हो जाए तो पूछी ना के पर नाम ही बताए ओके पूछी ना कौन नाम है तो हियां तो ओकर लड़का नहीं है ना
1: तो कौन नाम दे
0: तो दोन अब एगो नाम जोन के मन होई दे के ऊ नहीं दे तो हो लेता सिविल के कुमा जे बोगा एगो सकी आज ओके बोली देख ऐते लेते नाम बा कौन सी तोर मन बस वाज के
1: अच्छा तो कोनो नाम इसने डाल देवेला
0: हां तो इसने डाल के कोनो ना मैं पसी वो में लिखल बना
1: देखो सियाचे से क्या कोई किसी नाचे से क्या डाले
0: नहीं सियाचे नहीं बाहिया डाले कोई नाम देवता को नाम से बा ये आदमिया के देखला नमुआ खाली बकमा जा पोता ओकर खानदान के हा वो कोई नहीं है खाली दिखलारे करता ओकर
1: एगो नाम देवेलन
0: एगो नाम देवेलन सन
1: सियानो नहीं रहला खाली
0: नो नहीं अभी तक बान में बोले नाम हर बिनाम के हर लड़का हुई तू तो मिसेल मा हुआ एगो कुमा जे एगो नाम हर आदमी के देई
1: के राजेश रही तो खाली राजेश राकेश रही तो खाली राकेश
0: हां और दूसरों का सियानो नहीं रही खाली राजेश होता जैसे बोल लकू बोल ओकर नाम खाली रही और कुमा जे है दूसरा चीज नहीं बापसी नहीं बना है के एसोसिएशन के दे नमुआ नहीं रखी होकर लड़का होकर तो एसोसिएशन को है हमें गुड कुमा जे नहीं सके हूँ के लड़का पैदा करे नाली अब वो सब है बात कर ले ली सर दे ले अब सर लेजिटिमेशन पर अडॉप्शन तीन गो आते देख ले ली सर न तो नहीं फिनी हुई अभी तारे ले तंजे के देख अब से थोड़ा मन वही अडॉप्टे करे के गो लड़का के तभी यहाँ देखा था सर लेजिटिमेशन अब एक लेजिटिमेशन पर adoption il intervient là job ego comme dire hay conjoint pati patni do no accepter hoelanson ego laika hay adopter kare ke jun ego laika naturel ha allez kai kab na ego laika naturel la tab kar ma bap shadi nahi kare la civil to u laika jun paida hoela u tak ma ego laika naturel ha allez job ocean laika ka hoelanson job ego laika ho gal allez हम शादी कर ले हैं अब कुमा जे है हम है एगो है मैडम से नहीं दिखलारे कर ली उलई को वापस होकर ले हमार संगे उ आर मैडम वहाँ से उलई को होल तो उलई को के गल उकर माँ दिखलारे कर लग उकर माँ दिखलारे कर लग है है लेता सिविल में कि कुम को ये उकर लड़का है नहीं मिशुआ के नमुआ नहीं दिलक पशु तो जाने शादी कर ले बा उकर नमुआ दिलक उकर माँ
1: खाली सिर्फ माँ के नाम बा
0: सिर्फ माँ के नाम बा अब का होल एगो सेतन लेपो खोल लैकवा तब हुए बा ई है बपुआ शादी जोन कर ले रहल एगो बोली के बपुए के बुढ़िया मर गल जब ओकर बुढ़िया मर गल लैका उ सब नहीं बाबी एगो बोली के या हुई ते पाफे नहीं है तो हियाँ देखत हैं सर तो के मन हुई दूसरा शादी करे के
1: हाँ
0: तो दूसरा शादी करे के अब हौ जोन मदमुआ से लैकवा हो रहल
1: ओकर से शादी करे खोजी
0: अब ओकर से शादी होके मन हुई तो करे के तो शादी करी नहीं हो करी सदिया तो सकी कुमा जे जाके अब उ लैकवा जोन रखल पैदा रल ओकर से बस ओकर बुढ़िया तरल ही यार शादी कर ले रहा नहीं जनाई के तो नहीं गल दिखलारे करे अब ओकर कॉन्शियंस बोला था अरे ये तो हम जानी लई हमर लड़का है हम के चाहे लोग के दिखलारे करे के अब जाए लेता सिविल में वहाँ ओकर कोरेक्शन वहाँ करी ओकर नाम में जहाँ रल ओकर माँ के है नाम में उ लैकवा अब बपुआ के नमुआ में डाली बपुआस के नाम से उ लैकवा अब जाने मौवा के नाम नहीं अब बपुआ पसी अब तक कुमा जे दिखलारे करता था हमेशा कानून है जब कुमा जे पति पत्नी रहेला कभी को लड़का हुएला बपुआ के नाम आवेला अगाड़ी वो दिखलारे करेला कुमा जे जूनो जे दिखलारे कर ली तब कुमा जे देखब बपुआ के नाम लेवेला तो हियाँ अब दिखलारे कर लखा उ लैकवा के तब उ लैकवा ओकर नाम हुएला तो हियाँ देख लो लेजी चीजी माशो नेचुरल रखल अब वो रिकॉनेट हो वो लाइक वा एगो लाइक वा लेजिटिम

0: ये कानून जो कुमार जी हासिल नहीं है सिर में सब जाने के चाहेला ये दुनिया में हम नहीं भूल सको छुई तो यहाँ देख ला ओके कुमार जी ओकर नाम है जो मिशुआ अब देखलारी करता उले को के अब ओकर बाप हो गए अब ओकर नाम मिलता ओके और कुमार जी रिकोनेट करेलता जो लड़का नेचुरल रहल उ लड़कवा एगो लड़का है
1: अब लेकुआ बड़ा हो गल हो मान ला 20-25 साल के हो गल बा तब से की पप्पा पर नाम दे
0: नहीं बोले रही से ना कभी एगो अडॉप्शन सैप हुएला
1: हाँ।
0: तब हुआ एगो है रहल कि एगो सैतन लिपोक हुएला कि चाहेला कुमार जी ओके कुमार जी 20 बरिस के आगे
1: हाँ।
0: जिजुतांस मासे है 2 बरिस ओके देवेला अपने से सकत के स्वा करे मैं हिया बात करत है सा एगो अडॉप्शन है के लिजिचिम के
1: हाँ।
0: जब ले बपवा कैसे कुमार जी है सदिया नहीं रिकोनेट करी उले को के तो उसकी कुमार जी हाँ वो मेम की उलाई को कुमार जी है 18 मासे से ज्यादा हो गल बा ओके रिकोनेट करता हाँ सकी ओकर लड़का के ओकर नाम दे अब देख लो हिया अब देख ला सा ओकर पोसेजिया का
1: अच्छा
0: पोसेजिया देख लेली सा दोनों के देख ली सा अब ओकर पोसेजिया है एकरो चाहेला एगो लाफी दावित करे के हो मिशेवा के बस ओकर से मदमुआ बा बानो कर मदमुआ कि कुमार जी लड़कुआ के नाम में बा तो मिशेवा जोन से अब उजियता पति पत्नी नियर खुशी था अब वो का करिए वो लाफी दावित करी मिशेवा मदमुआ एगो लाफी दावित करी कि ऑब्जेक्शन नहीं बा कि ये ओकर बाप हो ओकर नाम दे या ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके आदुप्ति करी
1: तो मदमुआ के चाहला पापियामा में डाले कि लड़कुआ ओकरे है
0: नहीं अब बोली कि हाँ वो सब राखते करी ना
1: हाँ।
0: कि ये लड़कुआ रहल ओकर है के ओकर है हौ मिशुआ के तो ओकर से हो रहल कुमार जी एक नाम बोले सन एगो लड़का इलिजिचिम समझ लेजिचिमेट नहीं है मिसेल मकमा कब शादी हुएला सिविल तब न रिकोनेट हुएला तो नेचुरल हुएला जो कुमार इलिजिचिम जो लड़का कुमार जी माँ बाप के रिकोन नहीं बा तो हिया देखब मेम प्रोसीजियर जो रखल एगो अडॉप्शन सैप और एगो अडॉप्शन प्लेनिय में अनमन उकरो करे के चाहेला लग देने सांस सब चीज
1: सब जितना सब चीज चाहेला देता है सब चाहेला देख के
0: सब ओके चाहेला ये एगो चीज बड़ी इंपोर्टेंट है आले बड़ी जोली चीज है अब हमने देखब सर एगो आदमी
1: हाँ।
0: बहुत शक मजे मुगुशिय का करेला उ आदुपते करता एगो मुगुशिय एगो लड़का तो फैसिल हो जाला मैं बा हमने के अडॉप्शन में जहाँ एगो लड़का वो एगो मोगिश्य है मैं अडॉप्शन करे खोजता बाकी कुमार जैसे मुझे एगो अडॉप्शन एगो लड़का मोगिश्य के अडॉप्टे हुई एगो एथांजे से जाना सा बहुत देश से हमने के यहाँ मॉरिशस में आवेलन सन दिखेलन सन लड़का अरे बा क्यों मैंने लड़का हुआ के कोनो एक बान बा कोनो नहीं खुशी बा कि हुए के लड़कुआ के अदुप्ते करी और इफ नहीं बा कभी परिवार में जान पहचान बा हो इतरांजेवा से
1: अच्छा
0: सिर्फ एगो अंगले है तो इतरांजेवा से बस वो जान पहचान जाने ला हिया बा ओकर एगो लड़का बा अब ओके मन बा इ लड़कुआ के अदुप्ते करे के जो मुर्शियावा के लड़कुआ बा हुआ बा हुआ अनमन लाली सु सब बहुत आर जस्ती फासिल बा एगो अडॉप्शन सब मजे है के बा करे के तमे सिलम हिया एगो इतरांजे आवा ता अडॉप्टे करे एगो लड़का जो मोशे के वो कर पोषे जे का त हमनी के कानून में लिखल अचिक 356 कोड सिविल लिखल बा कौन कौन चीज चाहेला हर आदमी एगो इतरांजे बा उ लिब बा ओके कानून देवेला उ हकवा ओके दुआवा अडॉप्टे करे के
1: हिया
0: एगो लड़का जो एगो लड़का मुगुशिया के बा आलो आप देख अडॉप्शन कब एगो लड़का मुगुशिया के है वो इतरांजे ओके कुमार जी अडॉप्टे करता तो एकर एगो दूसर सीमा बा हिया ओके चाहे ला एप्लीकेशन करे के नेशनल अडॉप्शन काउंसिल के जो जिरे करेला मिनिस्टर दे एगालिते दे जॉ ए दे बियनेट दे ला फैमिली ओ मा कुमार जी ऐसन लड़का के पर है चीजवा में ओ कर पोसे जेवा में तू कर बा ऊ लड़कुआ जो अबा नहीं कि कुमार जी अपने मने ऊ ऐतरांजेवा आल हिया देख के एगो लड़कुआ के बोले कुमार जी कोरेक बा एक है कुमार जी स्वाजरे कर ले बा मैं पोसे जी अभी यहाँ देखत हैं सर तब ऊ आल बा ऊ लड़कुआ के ओके चल तो हर कुमार जी हमने के बा अडॉप्शन काउंसिल उ आके को माजिया देखी इके स्वामी ओकर पोषे जे ए देकर उ अडमिया के
1: हर जो पर तो चहला ना मुगालिते चहला ओकर बाग

0: राउंड, जैसे कि जो नदमिया आदुप्ति करता कहाँ लेके जाता, जैसे तलेवा बुढ़ला की एगो लड़का के लेके आदुप्ति करके गई लंजा, फिर ओकर बाद में ओकर जो ओगान हो बेच देवे लंजा, कोई की कैसे बोझला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बोल जला, ये सब प्रॉब्लम हो जाला, तो चाहेला ओकर देखे कि ओकर बैकग्राउंड कैसे बा, कैसन इंसान बा, काहे आदुप्ति करता, वजह भी चाहना जाने की काहे आदुप्ति करता।
1: अरे पहला चीज दे देगा एगो एग्जामिनर रहत वकील के, तो तू वकील में पासे हो जाई था उसके एगो रिज्यूमे में सब जोन रखल बोले के नहीं, ये बतावल जला कि एगो आदमी को मजे बड़ी ध्यान से सुनता,
0: हाँ
1: ध्यान से सुनता, जानता का बोलता, ओकर दिमाग में जाता, तो ऐसे तो सब एग्जामे है, जैसे जो एगो प्रोफेसर के स्पीके करेला लड़का जे रिमन से रमस लग तो उधर पासे होइबे करी, तो यहाँ हम देख रही तू एगो नेचुरल में छोटा में सब चीज बोल देला। आले ओ लैकवा के अब जो आलबा अदमिया इतना से हुआ हिया ओके आलबा अब लैकवा के कुमा जो के मन बा है आदुप्ते करे के, तो ओके चाहेला रिसेवोर होई के ओकर है में हुआ ये जहाँ देशवा में आलबा सुबह सोरंग लेते रोए के बोले एग्जाम्पल ले ला सर। ओ लैकवा के हुआ ओके मन बा कुमा जे हिया के लैकवा ओके चाहेला सब डिमांड करे के हुआ सब चीज अप्रूवे करे के चाहेला, सब डॉक्यूमेंट लेके आई हिया आके ओकर एप्लीकेशन वहाँ एन आर से के कुमाजे एडॉप्शन काउंसिल के कुमाजे आके अब सबमिट करे के कि देखो ऐते लैते लड़का के हम देखले हैं, ऐते लैते लड़का के अब हम कुमाजे एडॉप्ट कर ले हैं, एडॉप्ट करे खोजत हैं, तो एन आर से वो अपन लंकित करी वो देखी कि ये आदमिया जोन आलबा ऐसके कोरे के बा वो आदमिया ये लैकवा जोनों के मन बा आदुप्ते करे के आदुप्ते करे वो लोग एगो लंकित करेला।
0: अच्छा
1: नहीं तो इसने नहीं सकिन वो लोग की जिम्मेबारी है जे के कुम का लैका के हिया दे के एगो कुमा जो आदमी से आले माँ बापवा जोन के लैकवा से बोझो के मन बा हई करे के आदुप्ते करे के, तो वो तो नहीं है वो के जानत हुई दूसरा से बोझो क्रश के लैका बा शेल्टर के पिता रवि देखब सब मिनिस्टर है दे दुआ दे ला फार्म का करे खो जाता नुवो लालुआ आने अभी जे वक्त मिली था ये मैं एक्सप्लेन करब सर, तो हिया देख ला वो का करी हुआ से अब ओके देख है करी ओकर देखभाल करी कौन काली ते आदमी है, नहीं कि कुमा जैन आसे तो ऐसा नहीं है ना कि एगो आदमी मांगल कि एगो एप्लीकेशन ओके दे दिलक अब जैसे बोल तेल एगो ट्रैफिक दे मैं करत हो या कौन चीज करत हो, तो ऐसा काली ते आदमी बहुत सा ऐसा ऐसा का आदमी आवेला मांगेला देखेला में उन लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोग के जिम्मेबारी है देखे कि वो आदमी यहाँ कुमा जै कुरिक बा कि नहीं बा, ओकर दोषिये आदमिया के जो मांग करता ओकर दोषी एच जी ए करी और देखी ओकर रिकेत कोरेग बा कि नहीं बा, ओकर इन्फॉर्मेशन मांगी शायद जोन बा पपीवा में सबमिट कर ले बा है एन आर सी के उ लोग लंकित कर ले बा, बोलियन सर नहीं हमने ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं सर, मैं तो के चाहेला ज्यादा इन्फॉर्मेशन जैसे हमने बोल सा इन्फॉर्मेशन सुप्लीमेंटे तो के देखे के चाहेला ये आदोपते आदोपन में बस की बहुत चीज जो बोले हुए बहुत चीज कमती भाई में खेला फासिल नहीं है बोला आके कुमा जे आके आके हमने के देश में वो के आदुप्ते करे के, तो हिया बाय एना से ना वो अपन ये चीजें करी वो कर छानबीन करी देखी कि एगो लंकित करी ये वो चीजें करी दूसरे हुआ कि ये आदमिया एगो राइट पर्सन है कि नहीं मजे राइट पर्सन है, बस हुआ से अभी देखिए क्या करी हुआ भी ओके पूछ पाछ करी ना, तो कोई सक भी हुआ से आई हिया खाली होकर दिख लग को रेक बा कि नहीं, और हुआ तो माफ करिए एगो सबसे मोवा नहीं बोलब सर मैं एगो मुवे आदमी है समझ ला ना, तो हिया कबूलो के है करेला तब ओकर कोसे ही बैठेला एना से के उ लोग के मामू सब बैठ के उ लोग पोनो से करेला इसकी कुमा जे एगो आदमिया सकल जाइए कि लैकवा दे कि नहीं एगो देले लीगल भी बा कि ओके दे के चाहे श्वासों जू बा कि कुमा जो उमे ऊ दोषी हुआ है देखी करी, तो उ लोग का करी मांग करी कि देखो सिबो जो दोषी सब पारे होल बा, तो उ लोग मांग करी जीज के अब उ लोग एक बस जीज देवे ला है नहीं अपने को उठा के लैकवा के या सिपा है के वो लेके जाए, अब आज एगो प्लान डलबा लाकुर में अब तू लाकुर से मांग करत हो, तो लाकुर हुआ ओके मजे जिजवा सुने जिजवा सुने जिजवा देखी वो डिमांड जोन मांग ले बा ओकर मांग जोन कर ले बा ओकर प्लेतवा में ओकर दुसेवा के विषय में ऐसकी ई बा एगो मजे कोरेक बा कि नहीं बा, जीज जब देखी सब ओकर लंकित सब ओकर मजे चीज बा फावोरा बा वो आदमिया के है के केसवा में,

0: तब ऊ सकी मांग वही करे रेफरे करी कुमा जे कि ई लैकुआ के लै तेरे माफ करिए लै तेरे लैकुआ में हाँ कुरे सकल जाए ऐ के कुमा जे ई लैकुआ जो जो नदमिया मांग करता ए ट्रांसे हुआ के ऊ लैकुआ के दे के अडॉप्शन करेगी।
1: अब लैकुआ आज अडॉप्टे हो गल लैकुआ मान ला लॉन्ग लेती चल गल तो फिर अगर बाद में कोई रहेला देखेला कि वे ये करेला कि लैकुआ के निमन से देखत बन जा कि अडॉप्टे हो गल फिनी हो गल
0: देखेला एगो स्वीवी कम है ये खूब बोले एगो जोली चीज बोले है आले तो एगो तो आदमिया लेके चल गल ना
1: हाँ
0: ओकर स्वीवी के करेला
1: हाँ वही तो पूछा था कि जैसे बोला एन आज से बोला ना
0: हाँ मैं हुआ भी इंस्टीट्यूशन बा नहीं हिया एन आसे मुरिस के है नेशनल एडॉप्शन काउंसिल के विषय आदमिया वो लोग तो देखल ये चीजें करलक सिवा सकल जायो के मिले अब हुआ से ओके लैकुआ के लेके चल गल
1: अब हुआ पर लैकुआ अब तो माँ सोचला माँ बाप के पास पैसा नहीं बा नहीं सकत हुआ जाए तभी तो लैकुआ के अडॉप्टे में दे लन जा अब हो सके लगे लैका जोन बा वो लैकुआ जोन बा कोई नहीं बा ओकर
0: हाँ
1: अब लैकुआ हुआ गल बा लैकुआ के कौन चीज होल बा इसकी एगो एगो एगो रिपोर्ट रहेला एगो स्वीवी रहेला
0: जानेला
1: कौन चीज होवेला
0: फासिल नहीं है ऐसा काम है एगो लड़का हुआ जे चल गल बात एगो बा हूँ लोग के इंस्टीट्यूशन जाने लन सन की यहाँ ते लड़का
1: अडॉप्टे
0: हो के आल बा एना से जो हुआ के कौन से नहीं बा कुमा जे है एगो है कैसे ना बा एगो कुमा जे कम्युनिकेशन दोनों बगल से कैसे स्वीवी होवेला मैं कैसे जानब सहिया के आदमी यहाँ ऐसी लिखता हुआ कि नहीं लिखता सब कोई तो नहीं नहीं कुमार जैसे सोचे ला ना कि अरे वो दोषी रह जाए तेरे अब हम उठाबू दोषी हुआ वो तो बोली हो गल ना हई आदोष हुआ तब लेके चल गल नहीं अब वो कैसे रही कैसे हुआ था अब हुआ के आदमी हाँ मैं एगो चीज है हिया लोग कोट ले या नहीं ले हूँ कोट ले या नहीं ले हई लैकुआ जोन मोश हुआ आदोपते होल भाई गो बोली के मैं हुआ के देश में बा हूँ बा इंस्टीट्यूशन जो लैका लोग के इरिस्पेक्टिव ऊ लैकुआ मोरिशियन है अफ्रीकन है या कहूँ के है ऊ लैकुआ के ओकर देखभाल करे के ऊ स्वीवी करे लन सन
1: अच्छा
0: समझ लन सर ऊ हुआ के अवदमिया ओकर इंस्टीट्यूशन
1: देखे लन सर लैकुआ लेकुल जाता कि नहीं जाता
0: जो बात ही में थी हम लैकुआ लेकुल जाला बस कि हर लैका जो हुआ बा एगो प्रीमियर में बा आई मार्टिनेल में बा हमरे तो दोनों लैका मातेनल में हुआ रहलन सन कब हम रही तो देखब हुआ कब मातेनल में जालन सन नहीं बा कि नहीं बा रिजिश बा कि नहीं बा दुखतेर बा कि देखत ऊ लैकुआ के कौन काली थे हुआ जी तो खैश में कैसे बा सब आर जे एगो लैका नहीं लिमन से कुमा जो के देखभाल करतन सन तो कोई कंप्लेंट करी तो देखभाल क्यों ले वेलन सन ऊ आदमिया से देखल हिया इरिस्पेक्टिव ओ आदमिया के ओकर खुले ओकर रास या कहाँ से आल बा एगो अफो में होई कि ओ एगो सिटुआइए अंगले
1: हाँ
0: अब तो अनमन ओके कोट ले हर लैका के जैसे लेवल जाए वहाँ के देशवा के कानून बा अप्लीके करी यही लैका कोनो डिफरेंस नहीं रही कि एगो लैका अडॉप्शन है और ये वहाँ के लैका एगो लैका अंगले है देखल एगो एगो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है आले वक्त मिली तो हुकुमा जे हमने
1: तीन मिनट बा
0: आले देख तीन मिनट के लिए के अभी हमने सोचा नहीं सर अभी हमने कर आती सर कैसे एगो अडॉप्शन एगो लैका कुमा जे है अडॉप्टे कर एगो एगो लैका एतरांजे मोरिश के देख ले तरांजे वा के हिया आलबा मोरिशियन के लैकुआ लेके अब तू मोरिशियन वा तोहरा मन बा हुआ है एगो लैका हुआ के कुमा जे अडॉप्टे करे के
1: कुछ चाहना करे के
0: आले पहला चीज बहुत सकेस बा नहीं मोरिशस में मैं एगो एग्जांपल देला जना बहुत सा आदमी बा एगो बोली के सिबोजों अंग्ले है एगो मोरिशियन है मोरिशियन है शादी करलक एगो अंग्लेज से अब अंग्लेज से कुमा जे हुआ एगो अंग्लेज से अंग्लेज से नहीं एगो मोरिशियन शादी करलक हुआ कुमा जे एगो अंग्लेज से अंग्लेवा से एगो लैका होल अरे माँ बाप के है मोरिशियवा और है ना
1: अंग्लेवा
0: अंग्लेवा अब का होल उ लोग में कुमा जे एगो
1: खिटपिट हो गल
0: हाँ एगो प्रॉब्लम हो गल
1: अब लैकुआ मोरिस आए कि लैकुआ हो रही
0: है का आर अब हो गल मिशेवा से बोझू या आदोपते करके रहे द बोली है देखब से ऊ पिटार एगो कब आप सा जीवोश में का हुए ला अब हिया देखा था ऐसा कि हुआ के मिशेवा जेकर से शादी कर ले रखल मर गल अब कब ऊ हुआ कुमा अब मर गल बा तो एगो लैका छोड़ के हुआ छोड़ के चल गल बा अंगले तेरुआ में बाऊ लैकुआ

0: हुआ तो बाप संगे रहल मौवा तो हिया चला रहल ते अब बपुआ हुआ तो बा अब हुआ तो मर गल बपुआ के ओकर बाल देखी ओकर एक बा हुआ बाय सिचुएशन में हिया ओकर मौवा जोन से लैकवा रहल उ घतूने हो गल हिया अब ओके मन बा
1: ओ लैकवा के
0: बुलाई के अब खुशी हुई तो जहाँ लैकवा बा ओकर लाग देने संस्वा में हुई ना कि
1: मौवा
0: के नाम हुई हुआ सके अपन दिमास करे जाके कि बोली देखो हम मिशुआ रहनी आते लेके लैकवा लेके रगल अब हमर लैका के अब हमके चाहे हाँ तो कर पोसे जो अनवन जाई ओकर लाकू जाई आज मुको सीए छोड़ दे जा सर दूसरा वाला अब सर तेरा पोते करके जब सर ये ज्यादा
1: हाँ तो अगले हफ्ते जो बच गरबाओ के पूरा करके एक दूसरा विषय में से कब से बात करे
0: हाँ,
1: लेकिन नहीं, बहुत कर, बड़ा अवधि आई
0: ये क्या कर बना ये भी लंबा में देखवा था इसने बा अरे कैसे शादी यार जीवोस बड़ा लंबा है देखवा हाँ,
1: एक, एक मिनट बा बोले थे जैसे बोले कुछ कुछ रही कंप्लीट करके तो सब करे
0: हमने देखा था ऐसा ये बड़ी ऐप होता चीज है हमने देखा था ऐसा गवर्नमेंट आना था बहुत सा लालुआ जो अभी आमादे करता ये अडॉप्शन के विषय के लड़का के विषय में मजा कौन कैसे फैसिलिटे करी अनसन एगो अडॉप्शन करे के कौन कौन ओकर स्वीवी करे के चाहेला ये में दूसरा हला हमने आप सर तो हमने देखब सर लिसिटेशन या सेल बाय लेवी
1: अच्छा
0: एगो कभी को घर एगो आदमी नहीं सकल पे करे कैसे ओके कुमाजा आके है में कुमाजा है लाभार में जाए एगो जमीन लाभार ही दे सेल बाय लेवी देखब सर कैसे हुआ आल जाला हर जीजी के है होवेला एगो लाभार कैसे को घर जा बेचाला कैसे पूछे करे लनसन कैसे कुमाजा बेचाला सब ओकर देता है ओकर पोसे जे सब अनप सर
1: तन की हम के जो अगले हफ्ते के जो विषय बा ओ सेल बाय लेवी करब
0: सेल बाय लेवी
1: चला कपिल देवरा गुणनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के ये कार्यक्रम खातिर बहुत कुछ जाने के मिलल जितना कोई अतृप्ति करे खोजता लड़का के जितना कोई अपन लड़का के या देवी खोजत अतृप्ति करे खोजत के बहुत कुछ आज जाने के मिलल बा और पोसे जिया भी जनलन जा तो हमने के आज के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ था अगले हफ्ते थोड़ा से फिर मिलब जा तो प्रिय श्रोताओ हम अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे आज की चर्चा अब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सेल बाय लेवी जो होगा ये हमारे अगले हफ्ते का विषय होगा आप लोगों ने बड़े प्यार से हमारे इस कार्यक्रम को सुना बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को शुभ दिन नमस्ते

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, सभी को हमारा नमस्कार। युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2020 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के ये युवा देश के चारों क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्हें अपनी आवाज उठाने के साथ साथ युवाओं से जुड़े विचार विमर्श और विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस बदलाव से पहले बुधवार को जिम्मेदारी सौंपने का एक समारोह आयोजित किया गया। नए सदस्यों की नियुक्ति सितंबर तक की जाएगी। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन देवयानी रामचंद्र पर लगी मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थायी आरोप को हटाने का विरोध करेगी। एफसीसी की कानूनी प्रतिनिधि ने कल प्रॉब्लम्स की अदालत में ये जानकारी दी। वाक्वा फिनिक्स के पूर्व उप मेयर देवयानी रामचंद्र पर करीब 11.40 बिलियन रुपए की जब्त की गई नकद रकम में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थायी आरोप लगा है। मामले की सुनवाई मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 तक टाल दी गई है। उस दिन अदालत एफसीसी की दलीलें सुनेगी। ब्राजील की अदालत में कल

0: अद्रियन जुवाल के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह खत्म करने की बचाव पक्ष की मांग खारिज कर दी गई, जो 21 सितंबर 2022 को एबेन में हुए हादसे के मामले से संबंधित हैं। बहस का मुख्य मुद्दा मुस्तासलिक्स नाम से सामने आए और जो रिकॉर्डिंग थे। अद्रियन जुवाल के वकील जाक पोंक्लोस और अविनेश्वर दयाल का कहना है कि मामले से जुड़े कई लोगों के बीच हुई कुछ टेलीफोन बातचीत से ऐसा लगता है कि उनके मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र किया गया होगा। और विदेश में, भारत में मौसम विभाग ने आज के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत करीब 15 राज्यों में तूफानी बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। पांचू लेन थैफल रुजिल में 41 साल के 41-year-old के श्री विरमल सिंह रामचरण, जो अमित से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 उनके पिता ईश्वर रामचरण के घर पांचू लेन थैफल रुजिल से उठाकर कौलव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। अडवांटिस लेन लेस्कालिये में 44 साल के 44-year-old के श्री सतीश पंचई, जो सतीश बाबू से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 उनकी पत्नी वानेसा पंचाई के घर अडवांटिस लेन लेस्कालिये से उठाकर मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:00 PM। एवेन्यू डे कोलोम्ब मेजिन कॉन्डोमास्क में 69 साल के 69-year-old के श्री महादेव गोपाल, जो बाबू राम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 उनकी पत्नी चंदनी गोपाल के घर एवेन्यू डे कोलोम्ब मेजिन कॉन्डोमास्क से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:30 PM। टागो लेन मॉड अल्बिया में 75 साल के 75-year-old के श्री जगदीश हर नारायण, जो ब्रिज से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 उनके घर टागो लेन मॉड अल्बिया से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:00 PM। एवेन्यू ओलिये कात्रोबोन में 61 साल की 61-year-old की श्रीमती मानती बुधन, जो 6 से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3:00 उनके बेटे उदय कल्पनित के घर एवेन्यू ओलिये कात्रोबोन से उठाकर कोडेगाउथ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:00 PM। रिवालों रोड क्रेवक्योर में 83 साल के 83-year-old के श्री रघुनंदन बुडू, जो वालेद से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 उनकी पत्नी भगवंती बुधू के घर रिवालों रोड क्रेवक्योर से उठाकर क्रेवक्योर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, 10:06 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा। भक्ति की धारा जो है बहने जा रही है इस एक घंटे के सफ़र में। तो चलिए श्रोताओं, सावन का पावन महीना चल रहा है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम करने जा रहे हैं। वैसे जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति सिर्फ मंदिर तक जाने का नाम नहीं होता। भक्ति तो मन को प्रभु के करीब ले जाने का एक बहुत ही सुंदर जो है एहसास होता है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ज्ञान चक्र के इस विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आज के कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रावण मास का महान पावन पर्व चल रहा है, भगवान शिव की उपासना निरंतर हो रही है, सभी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसीद देव देवीश देहमाविश्य मामकम विमोचयेन विश्वेशम घृणाया घृणा निधे। हे देवेश्वर आप प्रसन्न होइए, हे विश्वनाथ हे दया निधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक जो है और इस भक्त को बंधनों से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं और सारे बंधनों से मुक्त करने वाले देवता हैं, इसीलिए और निरंतर भक्त लोग जो हैं भगवान शिव की उपासना करते रहते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव और जन्म मृत्यु के इस सारे बंधनों से मुक्त करने वाले देवता हैं, ऐसे भगवान शिव की और आप उपासना कर रहे हैं। उपमन्यु शिव महापुराण में और कहते हैं भगवान कृष्ण को कि हे यदुनंदन, कोई बड़ा भारी और पाप करके भी यदि भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा देवेश्वर भगवान शिव का पूजन करे तो वो उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार भगवान शिव का पूजन कर लेता है वो भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पा करके भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वो जन्म निष्फल है, क्योंकि वो मोक्ष का साधक नहीं होता है। जो दुर्लभ मानव जन्म पा करके पिनाकपाणी महादेव की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल होता है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते हैं। दुर्लभम प्राप्य मानुष्यम योचयन्ति पिनाकिनम तेषां हि सफलम जन्म कृतार्थास्ते नरोत्तमाः भवभक्ति पराये च भव प्रणत चेतसः भव संसार स्मरोद्युक्ता नते दुःखस्य भागिनः। मनोहर भवन भाव हाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिनसे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। श्रोताओं जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य कांतिमान रूप बल त्याग दया भाव शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की और पूजा करने वाले लोगों को सुलभ हो जाता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे तो

चलिए श्रोताओ, सावन के इस महीने में हम आपके लाए हैं इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम ज्ञान चक्र। ये कार्यक्रम मॉर्शल सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से प्रसारित है।

0: सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान शिव में मन लगा करके उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है, इसलिए पिनाक पाणि महादेव की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आ जाती, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, तब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान कोई दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। तो श्रोताओ, आज समय यहीं पर समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: चलिए श्रोता, और 10:19 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और अब आपकी सेवा में प्रसारित है शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नव

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है धर्म का संचय एवं दुष्टाचरण का त्याग। तीसरे समुलास में महर्षि दयानंद ने धर्म का संचय और धर्म के चतुर्विध लक्षणों के बारे में चर्चा की है, अर्थात धर्म के चार प्रमुख लक्षण हैं। सत्यार प्रकाश के तृतीय समुलास में बताया गया, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का पहला लक्षण है वेद। वेद ईश्वर का ज्ञान है और वेद परम प्रमाण है। वेद ईश्वर की अमर वाणी है। धर्म का दूसरा लक्षण बताया गया है स्मृति। स्मृति का अर्थ है ऋषियों द्वारा स्मरण किए हुए वेदानुकूल ज्ञान व ऋषियों द्वारा रचित मनुस्मृति आदि ग्रंथ। धर्म का तीसरा लक्षण है सदाचार, अर्थात अच्छा आचरण। अत्यंत श्रेष्ठ पक्षपात रहित धार्मिक महात्मा एवं उत्तम विद्वान पुरुषों व महापुरुषों का जो व्यवहार है वे सब सदाचार कहलाते हैं। वेदादि शास्त्र एवं महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना भी सदाचार कहलाता है, उनके विपरीत चलना दुराचार कहलाता है। सदाचार पुण्य एवं श्रेष्ठ आचरण का परिचायक है और दुराचार पाप एवं दुष्टाचरण का पर्याय है। महर्षि दयानंद ने सदाचार को सुख का कारण बताया है। सत्यार प्रकाश के तृतीय समुलास में कहा गया है कि आचार परमो धर्मः श्रुत युक्तः स्मार्त एव च। वेद एवं शास्त्र के अनुकूल श्रेष्ठ आचरण ही परम धर्म कहलाता है। धर्म का चौथा लक्षण है स्वस्य च प्रियमात्मनः। स्वस्य प्रियमात्मनः का अर्थ है जो अंतरात्मा को प्रिय लगे, जो अपनी आत्मा की प्रसन्नता के अनुसार हो, जो अपनी आत्मा के अनुकूल हो। आत्मा व अंतरात्मा की वह आवाज़ जिसमें भी किसी झूठ या अन्याय के लिए कोई स्थान न हो, अंतरात्मा की आवाज़।

धर्म का पर्याय माना गया है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य को स्वीकारना और असत्य को छोड़ना ही धर्म है। इसके विपरीत पक्षपात करना, अन्याय करना और असत्य का आचरण करना, असत्य को अपनाना अधर्म है। धर्म जिज्ञा समानानां प्रमाणम परमम श्रुति। महर्षि दयानंद ने वेद को सर्वोपरि माना है। उनके विचार स्पष्ट हैं कि यदि किसी स्मृति, पुराण या अन्य ग्रंथों की बात वेदों से टकराती हैं, वेदों के विरोध में आती हैं, तो वेदों की बात को ही परम सत्य माना जाएगा। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुलास में धर्म संचय और दुष्टाचरण अर्थात दुराचार से दूर रहने का उल्लेख इस प्रकार किया है। धर्म शनै संचिनुयाद भल्मीकमिव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थं सर्वभूतानि अपीडयन्। स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे किसी भी जीव को पीड़ा दिए बिना धीरे धीरे धर्म का संचय करें। धर्म का संचय कैसे करें? तो उत्तर मिलता है कि दीमक के समान। जैसे दीमक मिट्टी के कणों से धीरे धीरे अपना घर बना लेती हैं, इसी प्रकार अगले जन्म के लिए धर्म इकट्ठा करना चाहिए। चौथे समुलास में ही महर्षि दयानंद ने धर्म को जीव का सच्चा साथी बताते हुए पाप कर्म से दूर रहने का उपदेश दिया। महर्षि जी ने महाभारत के उद्योग पर्व से एक श्लोक प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि पाप कर्म का मुख्य कर्ता ही दोष व पाप का भागी बनता है। एकाह पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषे न लिप्यते। एक व्यक्ति पाप करता है परंतु उसका फल पूरा परिवार या समूह भोगता है। भोगने वाले तो बाद में मुक्त हो जाते हैं परंतु पाप करने वाला मुख्य कर्ता ही दोष का प्रमुख भागी बनता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति पाप करता है वही पाप का मुख्य भोगता होता है, परंतु जो पाप करने वाले के साथ होता है तो उस पाप का कठोर प्रभाव साथ रहने वाले को भी प्रभावित करता है, उन्हें भयभीत और दुखी करता है। चौथे समुलास में ही आगे महर्षि दयानंद बताते हैं, जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ क्या जाता है? मृत शरीर को मिट्टी के ढेले के समान माना गया है। मृत्यु उपरांत जीव का परम सहायक कौन है? इस पर महर्षि जी वर्णन करते हैं, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ सममुक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारम न ज्याति धर्मस्तिष्ठति केवलः। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके संग संबंधी उसके शरीर को मिट्टी के ढेले की तरह मृतशैया अर्थात चिता पर छोड़कर अंतिम संस्कार के बाद लौट जाते हैं। कोई भी उसके साथ नहीं जाता, केवल उसका संचित कर्म व किया हुआ धर्म ही उसका एकमात्र साथी होता है। इसलिए कहा गया है, जो जैसा बोता है वह वैसा ही फसल काटता है। परलोक में केवल धर्म ही मित्र और रक्षक के समान होता है। संसार में एक धर्म ही मित्र है जो मृत्यु के पश्चात भी साथ जाता है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि कभी अधर्म का आचरण न करें। किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता। अधर्म का परिणाम एक दिन भोगना ही पड़ता है। जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि सात्विक आहार तत्काल प्राप्त नहीं होता,

0: वैसे ही किए हुए पाप व अधर्म का फल भी तुरंत प्राप्त नहीं होता, किंतु धीरे धीरे अधर्मी के सुखों को रोकता हुआ सुख की जड़ों को काट देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। छल कपट और बेईमानी करने वाला अधर्मी मनुष्य शुरुआत में उन्नति करता हुआ दिखाई देता है, वह सुख सुविधा और ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है और अपने शत्रुओं पर भी विजय पा लेता है। अंत में वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान समूल नष्ट हो जाता है। धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर, समाज और राष्ट्र में शांति बनी रहती है और अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर, समाज और राष्ट्र की शांति नष्ट हो जाती है, शांति भंग हो जाती है। अतः चौथे समुलास में स्पष्ट किया गया है कि अधर्मी मनुष्य जड़ समेत पूरी तरह उसी प्रकार उखड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ कट जाने पर एक हरा भरा पेड़ नष्ट हो जाता है। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में ही समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और हिंसक, क्रूर या दुराचारी लोगों की संगति से दूर रहता है, वह सच्चा धार्मिक कहलाता है। संसार के सभी व्यवहार वाणी पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति छल कपट और मिथ्या भाषण द्वारा अपनी वाणी को दूषित करता है, वह सब पापों का भागी बनता है। चौथे समुलास में ही बुरे आचरण के दुष्परिणाम को रेखांकित किया गया है। पहला दुष्परिणाम है सामाजिक निंदा। दुराचारी व्यक्ति समाज और सज्जनों के बीच हमेशा निंदा व अपमान का पात्र बनता है। दूसरा दुष्परिणाम है दुख और रोग। दुराचारी व्यक्ति जीवन में निरंतर दुखों का भागी बनता है और सदैव कमजोरियों एवं बीमारियों से घिरा रहता है। तीसरा दुष्परिणाम है अल्पायु। कुसंस्कारों और गलत आदतों के कारण दुराचारी मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। वह अल्पायु अर्थात कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को दुराचार से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में महर्षि दयानंद का स्पष्ट कथन है, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करें, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग करते रहें। धर्मयुक्त कर्मों के सेवन से पुण्य की प्राप्ति होती है और अधर्मयुक्त कर्मों को करने से हम पाप के भागी बनते हैं। धर्मयुक्त कार्यों में पुण्य की वृद्धि होती है और अधर्मयुक्त कार्यों में पाप की वृद्धि होती है। आज के लिए इतना ही। आज की वार्ता यहाँ विराम लेती है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

की घड़ी में आइए, चंद भक्ति गीत आपके लिए हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। शिवमय वातावरण है और आपको पता है कि हम इन दिनों जो है शिव को पूजते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रही है, श्रावण मास का महीना है। तो चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है आपके नाम हम करने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और आपको पता है कि भगवान शिव जो है, शिव जो है सत्य है और सत्य ही शिव है, और देवों के देव महादेव जो है हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही दयालु है वो और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है। और महादेव का नाम ही वह शक्ति है जो टूटे मन को भी संभाल लेती है। तो चलिए बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ चरण भक्ति गीत आपकी सेवा में हम इस कार्यक्रम में चला रही है।

श्रोताओ कहते हैं कि भोलेनाथ को दिखावे की जरूरत नहीं, सच्चे भाव की जरूरत होती है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और मन में सच्ची श्रद्धा, इतना ही काफी है महादेव को याद करने के लिए। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि अपने अहंकार, चिंता और नकारात्मकता को शिव चरणों में समर्पित करने का भाव होता है। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है इसे आप जरूर गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

चलिए श्रोताओं, एक लोटा जल शिव को और सच्चा भाव अपने दिल में लिए हर हर महादेव का मंत्र जाप करें, मन को शांत रखने के लिए, कर्मों को पवित्र रखने के लिए और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति के लिए शिव से आग्रह करें।

श्रोता और 10:50 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में चंद भक्ति गीत आपके लिए भगवान शिव जी पर आधारित। वैसे श्रोताओं, शिव मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि मन को एकाग्र करने का और भीतर शांति जगाने का एक सुंदर आध्यात्मिक माध्यम है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को हम श्रद्धा से, इसका स्मरण करने से मन को स्थिरता, सकारात्मकता और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिल सकती है। तो आइए, आपके लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप हमारे साथ ज़रूर जाप कीजिए।

पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक आज लग रही है। समिति पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर विचार करेगी। ये फैसला करना होगा कि मौजूदा कीमतें बरकरार रखी जाएगी या इनमें बढ़ोतरी लाई जाएंगी। रोजिल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 100 करना है। कंपनी ने कल एबनी स्थित एनएससी पार्क होटल में प्रोजेक्ट हेलियस की शुरुआत की। इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए रोजिल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस लिमिटेड ने अपना खुद का सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाया है और रिश्लियो में एक सोलर पावर फार्म भी तैयार कर रही है। भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने बताया कि सरकार की ओर से बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बस ऑपरेटरों को हर इलेक्ट्रिक बस के लिए 3.5 मिलियन रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। युवाओं का एक नया समूह अब नेशनल चिल्ड्रंस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी में है, जिसका प्रावधान चिल्ड्रंस एक्ट 2022 के तहत किया गया है। 15 से 17 साल की उम्र के ये युवा देश के चारों क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों से चुने जाएंगे और उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के साथ साथ युवाओं से जुड़े विचार विमर्श और विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। विदेशी खबरों में यूरोप के कई हिस्सों में लंबे समय से जारी गर्मी के कारण डैन्यूब नदी का जलस्तर बेहद कम हो गया है। इसके चलते रोमानिया ने अपने एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र को बंद कर दिया है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब का जलस्तर कई देशों में पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ देर में शोक समाचार। रिवालों रोड क्रेवक्यू में 83 साल के 83-year-old के श्री रघुनंदन बुद्धू जो वाले से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी भगवंती

0: बुद्धू के घर गिवालों गोद क्रेफकियर से उठाकर क्रेफकियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। एवेन्यू ओलिये कातोबोन में 61 साल की 61-year-old की श्रीमती मानती बुधन, जो छाया से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3 बजे उनके बेटे उदय कल्पनत के घर एवेन्यू ओलिये कातोबोन से उठाकर कोडेगार्ड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। तागोलेन मोडालबिया में 75 साल के 75-year-old के श्री जगदीश हर नारायण, जो ब्रिज से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर तागोलेन मोडालबिया से उठाकर प्लेन मायों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू डे कोलोम्ब में जिन कॉन्डोमास्क में 69 साल के 69-year-old के श्री महादेव गोपाल, जो बाबू राम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी चंदनी गोपाल के घर एवेन्यू डे कोलोम्ब में जिन कॉन्डोमास्क से उठाकर मिजिन कॉन्डोमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। एडवांटिस लेन लेस्कालिये में 44 साल के 44-year-old के श्री सतीश पंचाई, जो सतीश बाबू से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी वनीसा पंचाई के घर एडवांटिस लेन लेस्कालिये से उठाकर मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। पांचूलेन थ्रेफल रोजिल में 41 साल के 41-year-old के श्री विमल सिंह रामचरण, जो अमित से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके पिता ईश्वर रामचरण के घर पांचूलेन थ्रेफल रोजिल से उठाकर कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: kHz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: श्रोता हुआ, ये सेंट्रल प्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बनान के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है ओब्ले डम, डोमेन लाग्राव, ओब्ले पुल्ट्री, MTS बनान, ले विलाज डे बनान के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार 17 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। आइए उर्दू कार्यक्रम हम सुन सकेंगे सायदा की पेशकश में।
4: रेडियो मॉरिशस
1: 800 kHz पर, ये है रेडियो मॉरिशस,
4: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
5: शम्मे फरोजा

0: पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए, आमीन। मौज़े सामीन, हर जुम्मे की तरह आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल-कहफ़ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

माहे रबीउल अव्वल, ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है जो हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की याद दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अजीम रहमत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।

मौजूद सामीन, माह रबीउल अव्वल हमें ये पैगाम भी देता है कि हम सिर्फ ख़ुशी का इजहार ही ना करें बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, शफ़क़त, सब्र, सच्चाई, अदल और हुस्ने इखलाक़ को अपनाने की कोशिश करें और कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें।

तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस

같지요. 예, 따로!

哦，再见了，感谢您的收听，下次节目我们再会，祝您拥有一个愉快而美好的周五。

शुक्रवार 14 अगस्त घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। और चलिए यहाँ पर 2:30 बजते ही हम भी आ चुके हैं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार, आदाब स्वीकार करें। और यहाँ से शुरुआत होती है आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद की। उम्मीद करते हैं जो शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और फरमाइशी गीतों का ये जो कारवा है शुरू होता है, 4028085 है नंबर हमारा आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, साथ ही आपके मैसेजेस 5251700005 पर। चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ, आशा जी और साथियों की आवाज़ों में, मोहब्बत के दुश्मन फिल्म से लिया गया।

जी हाँ, मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा, और जहाँ प्यार है, जहाँ पर मोहब्बत है, वहाँ पर नफ़रत के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती है। तो चलिए, बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है, इसे जोड़ते हैं बेवफा फिल्म का ये तराना गुलाम अली जी की आवाज़ में। और इस गाने की जो फरमाइश है, इस खूबसूरत तराने की फरमाइश आई है नोत्रदाम से रेहाना जी की ओर से। गाना जाता है इनकी ओर से माला फाउदाओ के नाम, और सुरेखा जी आपके नाम। इसी गाने को हम करेंगे ज्योति जी आपके लिए, यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही हैं। आपकी ओर से गाना जाएगा प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अभिषा के नाम।

0: की पसंद।
1: चलिए, बड़ा ही खूबसूरत सा तराना था, बस याद रह जाती है। यकीनन ज़िंदगी के इस सफ़र में कुछ साथ रह जाता है तो बस यादें रह जाती है। इसलिए कहते हैं ना, हमेशा अच्छी यादें बनानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बीते हुए बातों को याद करें, पुराने लम्हों को याद करें, तो बस चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ना ही कोई गुस्सा हो, ना ही कोई नफरत हो किसी के लिए, बस सबके लिए प्यार हो। चलिए अभी के लिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो तराना है, भरोसा फिल्म का ये जो गीत है, लता जी की आवाज़ में जाता है। विद्या जी आपके नाम यूनियन पार्क से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है गाना हो जाए उनकी बहनों के लिए। सती है, सुरेखा है, अमृता है, बबीता है, और ख़ास कर ये गाना उनकी चाची कुमारी के लिए, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उन सभी के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। और खूबसूरत गाने में जो अगला तराना है जाता है उन सभी के नाम जो इस गाने को पसंद करते हैं। वो दिल कहाँ से लाऊँ।

0: की पसंद।
1: चलिए यहाँ पर आपकी पसंद में अब बारी है इस अगले गाने की। उधार की जिंदगी फिल्म का ये जो अगला तराना होगा कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ों में, 90s का ये जो तराना है इसकी रिक्वेस्ट आई है, इसकी फरमाइश आई है विश्वानी की ओर से, विश्वानी दुमन की ओर से, और वाकवा से हमें सुन रही है। गाना जाता है उनकी बहनों के लिए।

0: की पसंद।
1: और चलिए अब बारी है इस अगले तराने की। मधुमति फिल्म से लिया गया ये अगला गाना मुकेश साहब की आवाज़ में, सुहाना सफ़र। और ये गाना जाता है लावेनिया से आफिस जी आपके नाम, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपने शौहर को याद करते हुए उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, और साथ ही ये गाना सभी बाबा साहेब परिवार के नाम। और श्रोताओं, इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। समाचारों के उस पार आपसे दोबारा मिलेंगे आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, तो साथ देते रहिए हमारा। यूं ही धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार और आदाब। शिक्षा मंत्रालय इतला करता है कि प्राइमरी स्कूल असेसमेंट सर्टिफिकेट पे साल 2026 के इम्तहानों की तारीख तय की गई है। 22 अक्टूबर को फ्रांसीसी जबान और साइंस के पर्चे होंगे। शुक्रवार 23 अक्टूबर को अंग्रेजी की परीक्षा निर्धारित है। सोमवार 26 अक्टूबर को हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, पूर्वी भाषाएं और अरबी जबान तथा रियाजी यानी मैथ्स का इम्तहान जुमेरात 27 अक्टूबर के लिए तय है। पर्यावरण प्रिय पहल के तौर पर मॉरीशस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम अपना रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाना चाहती है। कल रुजिल ट्रांसपोर्ट ने एलियस परियोजना की लॉन्चिंग की। इस मौके पर परिवहन मंत्री मौजूद थे। इसके तहत 5 सालों के दौरान डीजल से चलने वाली 20 बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा और ये बसें 5 मेगावाट सौर फोटोवोल्टाइक पैनल से चार्ज होंगी। मॉरीशस में कुल 116 बसें इलेक्ट्रिक हैं। मॉरीशस में ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग के वास्ते शिक्षा मंत्रालय ने आज कथोबोन में एक गोल मेज बैठक लगाई। इसके दौरान मॉरीशस में एक राष्ट्रीय स्क्रीनिंग प्रोग्राम को स्थापित करने के लिए बातचीत की गई, जो अस्पतालों और मेडिक्लिनिक्स में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मुलाकात के दौरान मॉरीशस में ऑफ्थाल्मोलॉजी के क्षेत्र में यूके से आए 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की यात्रा के संदर्भ में भी बातचीत की गई। विदेश में उत्तराखंड भारत में एक सुरंग के ढह जाने से कम 7 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग अभी भी फंसे हैं। एक वृहद बचाव कार्रवाई शुरू की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
1: आपकी पसंद। शुक्रवार 14 अगस्त समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरीशस पर। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में मैं हूँ सुमी और आप सबका साथ दे रही हूँ। और चलिए, आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स के जरिए 4028085 और साथ ही 5251700 पर। और चलिए, अगला जो तराना है पूनम फिल्म का ये गीत होगा रफ़ी साहब और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ों में, मोहब्बत रंग लाएगी। ये खूबसूरत सा तराना जो है जाएगा बहनों के लिए, शोभा है, अनुराधा है, लक्ष्मी है। और इस खूबसूरत गाने की जो फरमाइश है अनीता जी की ओर से आई है, जो इस समय फ्लिक ऑफ लक से हमारे साथ जुड़ी हुई है। यही गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम और साथ ही हमारी पूरी टीम के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी।

चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हैं। 3:10 यहाँ पर होने को है और अब बारी है इस अगले तराने की। और ये जो अगला गाना है ये जाएगा किन के नाम, चलिए देखते हैं कौन है।

इस समय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर शोभा जी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। यहाँ पर करुणा जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अमीना जी आप भी जुड़ी हुई है, अमीना जी कह रहे हैं कि ये गाना हो जाए।

0: आपकी पसंद।
1: ऐसा लग रहा है कि आप शायद कहीं खो गए हैं इन गानों को सुनते सुनते। गाने हैं ही इतने खूबसूरत के क्या कहे, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं भाई फैज़ल और भाभी ज़हीरा। फैज़ल जी और ज़हीरा जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बधाई, खासकर शहनाज की ओर से, ग्रांपुआ के आपके सभी फैमिलीज़ की ओर से, सभी परिवार की ओर से। और ये जो अगला खूबसूरत सा तराना है, 100 साल पहले इस गाने की रिक्वेस्ट आई है खासकर शहनाज जी की ओर से आप दोनों के नाम। और जितने भी सुनने वाले आज अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, ये तराना आप सभी के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: जी, इस गाने पर तो हम ये कहेंगे कि 100 साल पहले काफ़ी साल पहले भी इन गानों से प्यार था, आज भी है और आने वाले कल में भी हम इन गानों को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और ऐसे ही रेडियो मॉरिशस के ज़रिए इन खूबसूरत पुराने एवरग्रीन गानों को सुनते रहेंगे, है ना। और आप भी ऐसे ही अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश करते रहेंगे। और चलिए, यहाँ पर आपकी पसंद ये प्रोग्राम है और अब बारी है सगले तराने की। खून भरी मांग फिल्म का ये जो अगला गीत है, ये जाता है सभी बंधु परिवार के नाम जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, बिल्कुल ये जो गाना है इसे आप सुनेंगे यहाँ पर साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में। और यहाँ पर इसी गाने को जो है हम करेंगे ज्योति जी आपके नाम जो हमेशा शात बनारस से हमारा साथ देती हैं, और यही गाना आपकी ओर से जाएगा आशनी, रेखा, सुरेखा और सभी मदब फैमिलीज़ के नाम जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन सभी के नाम भी जो इस गाने को बेहद जो है पसंद करते हैं।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और बस हंसते मुस्कुराते इन गानों को चलाते हुए सुनते हुए हमारा ये जो आपकी पसंद का सफ़र है ये भी बहुत अच्छे से कट रहा है यहाँ पर। लेकिन अगला जो तराना है वो थोड़ा सा एक इमोशनल सा गाना है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। यकीनन कभी कभार मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी वजह होती है। कभी ये जो गाना है अर्थ फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है जिसे आप सुनेंगे जगजीत सिंह जी की आवाज़ में, और इस समय बेल्जियम से प्रकाशवती जी हमारा साथ दे रही हैं क्योंकि बेल्जियम में काफ़ी गर्मी है और ऐसे में उन्हें इस गाने की याद आ गई और इस गाने को वो सुनना चाहती हैं। तो चलिए प्रकाशवती जी, इतनी दूर से भी आप हमारे इन प्रोग्रामों को इन्जॉय कर रही है, सिलेक्शन को इन्जॉय कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गाना खास कर आपके लिए, और थैंक यू सिलेक्शन को पसंद करने के लिए। प्रकाशवती जी, गाना आपके ये करेंगे और हमारे सभी प्यारे सुनने वालों के नाम, सभी श्रोताओं के नाम। और ये गाना इतना पॉपुलर है कि शायद ही कोई होगा जिसे ये गाना पसंद नहीं होगा।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, अर्थ फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। चलिए प्रकाशवती जी, आपका दोबारा हमें मैसेज मिला, गाना आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है अगले तराने की, और अगला जो गाना है होटल फिल्म का ये तराना होगा आशा जी मनोहर जी की आवाज़ों में, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। इस समय जो है वर्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि इतने खूबसूरत गानों को सुनते सुनते उन्हें भी मन किया कि एक गाने की फरमाइश वो भी कर दे। चलिए, अच्छा लगा वर्षा जी हमें भी आपसे बात करके, और यह अगला तराना खासकर आपके लिए चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए यहाँ पर हमें भी हमारे सभी श्रोताओं से बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है, और ऐसा ही प्यार आपसे भी हमें मिलता है, ऐसा ही विश्वास आपसे भी हमें मिलता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार, ये अपनापन, ये विश्वास हमारे बीच हमेशा रहे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और चलिए इसी के साथ बारी है इस आखिरी गाने की, आखिरी गाने की इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार है, तो आज हमारा प्रोग्राम जो है 4:15 समाप्त हो जाता है। और जाते जाते ये आखिरी गाना दिल तेरा आशिक फिल्म का तराना होगा। भाई माहेन जी की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, और माहेन जी की ओर से गाना जाता है उनके सभी परिवार के नाम और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। तो बस आज के लिए हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी, जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे 4:15 आप गुलदस्ताए उर्दू इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे निसार की पेशकश में, और 4:00 आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम अनवर जी की पेशकश में। तो चलिए हमें दीजिए अनुमति, ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर आप जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए, और ऐसे ही हमारे सभी प्रोग्रामों में भाग लेते रहिए। शुभ संध्या आप सभी को हमारी ओर से,
0: आपकी पसंद।

0: गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मेरे अजीज सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं। आपकी समागतों की नज़र हैं गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन की वो बज़्म जहां हर हफ्ते हम उर्दू की खुशबू भरी दुनिया से मुख्तलिफ रंगों के फूल चुनकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तमाम शायकीन उर्दू का हम नहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ इस्तकबाल करते हैं। सामईन कराम, पिछले हफ्ते को एक अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ था जहां हमने मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना कफन का पहला हिस्सा आपको गोश गुजार कराया। कफन दरअसल एक ऐसी कहानी है जिसमें भूख सिर्फ जिस्म की नहीं रूह की भी महसूस होती है। ये अफसाना महज दो किरदारों की बेहिसी या एक हादसे का बयान नहीं बल्कि उस निज़ाम पर गहरा सवाल है जहां इंसान जिंदा हालत में जिल्लत महरूमी और बेकदरी का बोझ उठाता रहता है मगर मरने के बाद उसके लिए रस्म और रिवाज की चादर तलाश की जाती है। तो आइए पेश खिदमत है अफसाना कफन का आखिरी हिस्सा, तवज्जो के साथ समाप्त फरमाइए।
1: माधु भागा हुआ घेसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आहुजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफी करने लगे मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों पीट भी चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में पूछा, क्या है बे घसवा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती, अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घेसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी बिपता में हूं। माधु की घरवाली रात गुजर गई, दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया मगर वो हमें दगा दे गई साहब। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा इसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो इसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके द्वार पर जाओ।
2: जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दें, चल दूर हो यहां से, लाश घर में रखकर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा बदमाश।
1: मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तौन व करहन दो रुपए निकाल कर फेंक दिए मगर तशफी का एक कलिमा भी मुंह से ना निकाला, उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। घेसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने दो आने दिए, किसी ने चार आने। एक घंटे में घेसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घेसू और माधु बाजार से कफन लाने चले गए और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कल्ब औरतें आ आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधु? माधु बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को छीतड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए।

पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे, फिर घेसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कचियां पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कपन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधु आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। है बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को क्या है, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधु भी हंसा। इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी पर, कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घेसू ने दो शेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधु लपक कर दो पतलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। जोफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या इसे पुण्य ना होगा। माधु ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बेखंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से उसके लिए दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधु के दिल में एक तश्वीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक ना एक दिन जाएंगे ही। घेसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधु की तरफ पुर मलामत अंदाज से देखा, जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे। कहेंगे तुम्हारा सर, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा, मुझे गधा समझता है, मैं 60 साल इस दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधु को यकीन ना आया, बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज हो गया, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं है, कौन देगा, बताते क्यों नहीं, वही लोग देंगे जिन्होंने आपके दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठ के पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू बन जाते हैं, यहां आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए, शराब से ज्यादा यहां की हवा से मसरूर होते थे। जीस्त की बला यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं या जिंदा दरगोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेके चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधु ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा उनकी तरफ गर्सिना निगाहों से देख रहा था, और देने के गुरूर और मुसर्रत और वलवले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा, ले जा, खूब खा।

0: आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रुए रुए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घेसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने बाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। तलवन नशे की खासियत है, यास और गम का दौरा हुआ। माधु बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेलकर। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और वो दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। सारा मैखाना महवे तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।
1: सामईन जी वकार, गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में निसार अख्तर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता है। इसी के साथ हमने मुकम्मल किया प्रेमचंद का अफसाना कफन। प्रेमचंद की कलमकारी का कमाल यह है कि वो किसी किरदार को मुकम्मल तौर पर मुजरिम नहीं ठहराते और ना ही बेगुनाह साबित करते हैं, बल्कि हालात की संजीदगी को इस अंदाज से पेश करते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि असल कसूरवार कौन है, फ़र्द, मुआशरा या गुरबत। अफसाने के किरदार माधो और घेसू बज़ाहिर बेहिस दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बेहिसी के पस मंज़र में सदियों की महरूमी, भूख और मुआशरती नाइंसाफ़ी की एक तवील दास्तान पोशीदा है। यही फ़नी अज़मत कफन को एक लाजवाल शाहकार बनाती है कि उसका अख्तिताम कारी को जवाब नहीं देता, बल्कि ऐसे सवालात छोड़ जाता है जो अफसाना ख़त्म होने के बाद भी जहन और दिल में देर तक गूंजते रहते हैं। सामईन, आज के चरागे अहले कलम में हमने मुंशी प्रेमचंद के शोहराए आफाक अफसाना कफन पर गुफ्तगू की। बड़े अदीब जिस्मानी तौर पर एक दिन रुखसत हो जाते हैं, मगर उनका कलम जमानों तक बोलता रहता है। प्रेमचंद भी उन्हीं खुशनसीब अहले कलम में से हैं जिनकी तहरीरें हर दौर में इंसान को इंसान बनने का सबक देती रहेगी। सामईन, अगले हफ्ते किसी और मौजू को लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

This is Radio Mauritius. घड़ी मिला लीजिए सामीन इकराम, इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं। शाम के ठीक 4 बज रहे हैं और बज़्म नूर में हम आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

मोहतरम मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। आप तमाम लोगों को रबीउल नूर, रबीउल शरीफ का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ ही दिलों में एक नई रोशनी, एक नई खुशी और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई लहर बिलाशुबा इस नए चांद से जाग उठी है। इस बाबरकत महीने का इस्तकबाल करते हैं इस उस हस्ती के ज़िक्र से कि जिनकी आमद से कायनात को रहमत मिली, दिलों को सुकून मिला और इंसानियत को जीने का सलीका मिला। अब तमाम लोगों को रबीउल नूर, रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो, और आज का दिन, जुम्मे का दिन, आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो।

जी हाँ बिल्कुल सामीन, रबीउल नूर का चाँद आसमान पर तुलू हो चुका है। ये वो मुबारक महीना है जिसकी आमद पर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल खुशी से झूम उठते हैं, फिज़ाएँ दुरूद सलाम से महकने लगती हैं, महफिलें ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजने लगती हैं और हर दिल में एक ही सदा गूंजती है, मरहबा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

बेशक। और यकीनन सामीन, आज का ये पूरा प्रोग्राम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मुश्तमिल होगा। ये बज़ाबता मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। बाहर अदब समात करके अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं।

आइए सामीन, आज जुमे के मुबारक मौके पर हज़रत क़िबला अल्लामा हाफिज़ो क़ारी मौलाना मोहम्मद इब्राहिम शामी दामद बरकत मालिया ने जुमे के मुबारक मौके पर जुमा मस्जिद पोटली में जो बयान फरमाया उसकी रिकॉर्डिंग सदाबंदी हम आपको पेश कर रहे हैं। हज़रत क़िबला ने आज जिस मौजू का इंतखाब किया वो रहा अल हसद यानी जलजी। समाप्त कीजिए।

everything is going to be deleted because of the spiritual virus. Just like كما تأكل النار الحطب, a fire removes, demolishes, ends up the wood. When it burns it, it will turn it into ashes. The wood is useless once it becomes ashes. Just like that, all your righteous deeds shall be removed, and you will be deprived of thawab of those righteous deeds. So wasted. Everything wasted. A'udhu billah. Farmaya ki hasad is bimari se bacho. Is liye ki hasad nikiyon ko is tarah kha jata hai jis tarah ke aag lakdi ko kha jati hai. A'udhu billah. Aajkal ye bimari हमारे घरों में इस हद तक आम हो चुकी है, हमारी कम्युनिटीज़ एंड फैमिलीज़ में, कि भाई भाई से हसद करता है, बहन भाई से हसद कर रही है, सगा चचा अपने भतीजे भतीजी से हसद में मुब्तला, नऊज़ बिल्लाह, भांजा अपने मामू से, मामा अपने भांजे से. It's getting common day by day, na'udhu billah. But the thing is, we don't even realize that what are we doing with ourselves. Awliya, Sufiya, rahimahumullah ta'ala, they say al-hasadu yuhliku al-hasida wa yadurruhu qabla an yadurra al-mahsud. We have two persons, the envious, the jealous person, jalne wala, and we have the other one, al-mahsud, the envied, the one who you are jealous of. Two persons. The thing is, this virus is going to harm the envious person, al-hasid, before it harms the envied one. Ye bimari itni khatarnak ke ye jis ko aap ye bimari lagana chahte hain to usko to baad mein takleef degi, आपको पहले ही तबाह कर डालेगी. और ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा वायरस जिससे बचने की ज़रूरत हर इंसान को. ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का इशू नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ का इशू नहीं है, बल्कि इस रुए ज़मीन पर रहने वाला हर इंसान, उसे ज़रूरत है कि अपने आप को इस वायरस से बचा सके. नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दी और इस बात की तरगीब दी कि किस तरह अपने आप को हसद से दूर रखा जाए. वी नीड टू रियलाइज, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. देर इज अल हसद एंड देर इज अल मुनाफसा और अल तनाफुस. सहाबा, इफ यू लुक एट देयर बायोग्राफी, इन द टाइम ऑफ आवर बिलोव्ड होली प्रोफेट अलैहि सल्लतु वस्सलाम, you would have heard many stories. Sayyiduna

0: देख कर जो जो गुनाह करता जाएगा सबका वबाल आप पर भी आएगा। नाउज़ बिल्लाह। नेकियों की आदत डाले, गुनाहों से बचे। हसद ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ अता फरमाया आप उससे खुश नहीं है। हासिद ला यक़्नउ बिमा आताहु अल्लाह, द एनवियस पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाटएवर अल्लाह हैज ग्रांटेड हिम, अदरवाइज व्हाई वुड ही हैव इशू विथ अदर्स। You need to say Alhamdulillah. You need to convince yourself whatever was in your favor, Allah has already granted you. And whatsoever shall be in your favor, Allah shall grant you definitely. But whenever you find a blessing, righteous deed, someone has been performing, say, Ya Allah, grant me tawfiq to perform this righteous deed. Ya Allah, grant me the same blessing which you have granted my sister, which you have granted my brother. Those who were not blessed with children, don't try to be jealous of your brothers, your sisters, if they have been granted children. Those who were not blessed with wealth, don't try to be jealous and envious of those, especially your family members who are granted the wealth, property, money. Never ever. A person who has been granted, who was granted the wealth, remember he was tested by Allah through this wealth. जिसको माल मिला है ये नहीं समझे उसकी कोई नेमत मिली है, अल्लाह ने उसको माल के जरिए आजमाया है। आपको नहीं मिला, अल्लाह ने आपको इस तरह आजमाया। जो शख्स औलाद वाला है ये वो ना समझे कि वो अल्लाह का कोई ख़ास मुकर्रब बंदा है सिर्फ औलाद की वजह से। नहीं, आप नहीं जानते कि आपकी आजमाइश औलाद के जरिए की गई है। किसी और को अगर अल्लाह ने औलाद नहीं अता फरमाई तो आप ये नहीं समझें कि नऊज़ु बिल्लाह वो शख्स बदबख्त है, बदनसीब है। ये माओं बहनों से भी कोशिश करूँगा इस चीज़ को जहन में डालें, ईमान को पुख्ता और मजबूत करें कि अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क, उसकी कदर, उसकी तकसीम पर राज़ी रहने की कोशिश करें। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया अगर आप उस पर राजी रहेंगे, दिल में कभी हसद नहीं पैदा होगा इंशाअल्लाह। आपको औलाद नहीं मिली, आपको अल्लाह ताला ने इस तरह आजमाइश में डाला। कुछ ऐसे भी होते हैं अल्लाह ने उनको औलाद अता फरमाई फिर वापस ले ली, उनकी आजमाइश इस तरह की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: सामीन, अभी आप जुम्मा मस्जिद पोटली में आज जुमे के मुबारक मौके पर वाज़ की सदाबंदी समाप्त कर रहे थे। हज़रत क़िबला हाफिज़ क़ारी मौलाना इब्राहिम शामी दामत बरकतुल्लाह ने हसद पर ये जमा तकरीर फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हम रीडो मोर्शिद साहब से मुखातिब हैं। 4:45 हो रहे हैं, चंद ऐलानात समाप्त कीजिए। दावत इस्लामी मॉरिशस की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है, बेशक ये महाफिल सिर्फ ख़वातीन के दरमियान है। बुध 19 अगस्त को सुबह 10:30 जुमा मस्जिद हॉल गुडलैंड्स में फयाज़ुल मदरसा नवेली कुवैत, ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद मेलगोज, बाबा जहांगीर शाह मस्जिद त्यागूज, सुन्नी मस्जिद ग्लनपा, कालिमिया मस्जिद बुबुआ और अहमद कादिर मदरसा गुद्दी पॉपलमस पोटली, फैज़ान सहाबियात आईदोगे पोटली, सुन्नी मस्जिद फिनिक्स और बकर सिद्दीक मस्जिद वाले पीटो, मस्जिद फातिमा अहले बैत मदरसा स्टैनले रोजहिल में बुध 19 अगस्त को सुबह 10:30 से इंशाल्लाह ख़वातीन के दरमियान ख़ास इज्तिमाई मिलाद का अहतमाम किया गया है।

और आज एमबीसी के चैनल 9 पर आप देख सकेंगे सबसे पहले ख़ास प्रोग्राम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर। आज से एक सिलसिले की का आगाज़ है और पहला प्रोग्राम जो आप देख सकेंगे उसका उनवान है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम नमूने अमल, और इसमें शामिल होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सलमान अशरफ अशरफुल जीलानी दामत बरकातुहु आलिया। और उसके फौरन बाद आप देख सकेंगे कुरान कंपटीशन की तीसरी प्रिलिमिनरी। तो ये रहे चंद ऐलानात। आइए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की सदाबंदी समाप्त कीजिए।

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर।

मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। मज़ीद सामीन पर वीज़ा का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, महफिल गीत और गज़ल में आप तमाम लोगों का पुरजोश और खरोश इस्तकबाल है। जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं, दिल की अतीक गहराइयों से शुक्रगुजार हैं हम। बतौर नजराना आपके लिए चंद नख़मे और गज़लें पेश करेंगे 6 बजे तक, बस आप साथ देते जाइए। फ़िलहाल ये पहला तराना आपके नाम चल पड़ा।

किसी के पास रहकर भी कोई दूर होता, कोई दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब होता है। मोहब्बत का एहसास ही कुछ ऐसा है। बहुत ही रूहानी संगीत और दिल को सुकून देने वाले अल्फाज, खूबसूरत लम्हों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। शाम ढल रही है बेशक, और इससे ढलती शाम के साथ एक अजीब सा नूर फैल रहा है। रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये उन यादों को भी रोशन करती हैं जो दिन की रोशनी में कहीं खो जाती हैं। लता मंगेशकर।

फिर आदाब, खुशामदीद और एक बेहद ही प्यारी शाम मुबारक हो। ये रेडियो मॉरिशस हैं, आप साथ दे रहे हैं गीत और गज़लों के इस सफ़र में। परवीज़ा का साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक। वैसे तो पता ही नहीं चलता कब जिंदगी बदल जाती है, रास्ते वही रहते हैं बस मंजिल बदल जाती है। मज़ेसामीन, खुशियाँ और गम का एक हसीन आँचल है, जो हर हाल में मुस्कुराना सीख ले वही हकीकत में जीना सीखता है। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल को सुनते हैं समीर के इस कलाम में।

मौसम हसीन है, सुर रूहानी है और आपका साथ सबसे खास है। कहानियाँ और नख़मे अभी बाकी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ 6 बजे तक। ऐ दोस्त, कहते हैं ना कि चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा दिल का हाल नहीं बताती। कुछ लोग अपने दुख छुपाने के लिए सबसे प्यारी मुस्कान पहन लेते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ एहसास होता है, कभी बेहद खुशी तो कभी कोई गहरा राज। इसी हसीन और गहरे एहसास को अपने लफ्ज़ों में समोए हुए पेश है आज का अगला तराना। समाप्त फरमाइए अलका यकनिक।

दिल की दुनिया भी एक अजीब बस्ती है। यहाँ यादों की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। दिल के इस आलम को, इसी खामोशियों और इससे की धड़कनों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इंसान को सब कुछ सहने का हौसला देती है, चाहे वो चाहत का सुकून हो या जुदाई का दर्द।

क्या तासीर है ना कैलाश खेर की आवाज़ में, और कितने गहरे हैं ये बोल, दिल के तारों को छू लेने वाला ये सिलसिला भी जारी है। शाम ढलने को है और हमारा ये रूहानी सफ़र अपने सबसे हसीन मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां रंग और यादों के हसीन साए अब हमारे दिल के और नज़दीक आ रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यादें यादें वही ठहर जाती हैं। कभी ये यादें होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान लाती हैं, तो कभी आँखों के कोने को नम कर जाती हैं।

यादें जंजीर नहीं बल्कि रूह का वो हिस्सा है जो हमें उन लोगों से जोड़े रखता है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। मज़ीसामीन, यादों की इस मीठी धूप में भीगना भी एक अलग ही सुकून देता है। घड़ी की सुइयां अब 6 बजने का इशारा कर रही हैं और इसके साथ ही हमारा आज का यह हसीन सुरीला सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँच जाएगा। वैसे

सेतू जिंदगी अक्सर हमें ऐसा मोड़ पर लेकर खड़ा कर देती है जहाँ खामोशी ही हमारा वाहिद सहारा बन जाती है। इसी खूबसूरत गज़ल के साथ ही हमारी आज की महफिल गीत और गज़ल का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे सुरों और अल्फाज के एक नए गुलदस्ता के साथ। तब तक परवीज़ा को इजाज़त, खुदा हाफिज़ और शब बख़ैर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब। शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की अहम खबरें। आज पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक लगेगी ताकि ईंधन की कीमतों पर दोबारा जायजा लिया जा सके। आज अगर इन दामों में बढ़ोतरी लाई गई तो पीपीसी के नियमों के मुताबिक 10% की वृद्धि लाई जाएगी। सूखे के इन दिनों में पानी का संचालन करना सबसे बड़ी चुनौती। होटल क्षेत्र नए तरीके अपना रहा है ताकि गतिविधियों में कोई रुकावटें पैदा ना हों। पर्यावरण प्रिय पहल के तौर पर मॉरीशस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम अपना रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाती जा रही है। कल रुजिल ट्रांसपोर्ट ने एलियस परियोजना की लॉन्चिंग। और पूर्वी जापान में मूसलाधार बारिश की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली की सप्लाई बंद, 7 लोगों की मौत की खबर। नमस्कार और आदाब। आज पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी पीपीसी की बैठक लगाई जाएगी ताकि ईंधन की कीमतों का दोबारा जायजा लिया जा सके। फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल का दाम 64 रुपये 25 सेंट है।

0: और डीजल लीटर पीछे 71.25 रुपए में बेचा जा रहा है। आज अगर इन दामों में बढ़ोतरी लाई गई तो पीपीसी के नियमों के मुताबिक 10% की वृद्धि होनी चाहिए।
1: अप्रैल महीने में बढ़ोतरी के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 71.25 रुपए प्रति लीटर है। अप्रैल में दामों में बढ़ोतरी 10% तक सीमित रखी गई थी, जबकि पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के अनुसार पेट्रोल के दाम में 20.29% और डीजल में 34.44% की बढ़ोतरी हो सकती थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम काफी ऊंचा था। अप्रैल में ब्रेंट तेल की कीमत 100 से $117 प्रति बैरल के बीच थी। इसकी बड़ी वजह दुनिया में तनाव और तेल की सप्लाई में रुकावट थी। आज 4 महीने बाद ब्रेंट तेल की कीमत करीब $88 प्रति बैरल है। ये अप्रैल के मुकाबले काफी कम है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव के कारण दामों में अब भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। मॉरिशस में पेट्रोल और डीजल की कीमत ब्रेंट तेल की रोज की कीमत के हिसाब से अपने आप नहीं बदलती। कीमत तय करते समय आयात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव दर और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट की स्थिति को भी देखा जाता है। अप्रैल में इस खाते में करीब 3.2 बिलियन रुपए की कमी थी।
0: ग्लूकोमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कैथोबोन में गोलमेज बैठक का आयोजन किया। एक राष्ट्रीय ग्लूकोमा प्रोग्राम को स्थापित करने के सिलसिले में ख्यालात पेश किए गए। ये प्रोग्राम अस्पतालों और मेडिक्लिनिक्स में चलाया जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन से 2 स्पेशलिस्ट मॉरिशन डॉक्टरों की मॉरिशस आमद के संदर्भ में ये मुलाकात की गई। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: ग्लूकोमा की समय रहते पहचान के लिए मॉरिशस में एक राष्ट्रीय जांच कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इसी को लेकर नेत्र विशेषज्ञों और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े लोगों की एक बैठक लगी। योजना है कि देश के अस्पतालों और मेडिक्लिनिक्स में आंखों की जांच की सुविधा दी जाए, ताकि बीमारी का शुरुआती दौर में ही पता लगाया जा सके।
2: Même pas de médiclinique qui nous est là, nous pouvons faire provision pour mettre ça dans l'appareil là, entraîne nous mal médecins.
1: इस सप्ताह करीब 100 मरीजों की आंखों की जांच की गई। जिन मरीजों में ग्लूकोमा की स्थिति ज्यादा गंभीर पाई गई, उनमें कुछ का ऑपरेशन करना पड़ा।
3: On opère des patients qui tiennent à glaucome sévère. Elle en tient une mamzelle 30 ans qui voit même un peu pleuré dans clinique parce qu'il voit même des PPD sous vision à cause à tension lisée glaucome. Donc, nous ne faisons beaucoup d'interventions, mais aussi sans traitement médical. Donc, it's been a very productive week en termes improve glaucoma and eye care in Mauritius.
1: इस दौरान मॉरिशस के स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें लेजर के इस्तेमाल और ग्लूकोमा के इलाज की नई ऑपरेशन टेक्निकों के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी गई।
0: आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त की तारीख तकसीम हिंद और पाकिस्तान के क़याम के लिए बड़ी मायने रखती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बरतानी शासन को ख़त्म करते हुए बंटवारा किया गया था। मॉरिशस में पाकिस्तानी लोगों ने आज मिलकर फ्लोरियाल में पाकिस्तानी सिफारत में यौम आज़ादी मनाई। इस मौके पर मॉरिशस और पाकिस्तान के गहरे रिश्तों पर रोशनी डाली गई, ख़ास तौर पर सकाफती, तजारती और माली शोबों में। किशन सिथिया की रिपोर्ट पर आसिता रघु का विवरण।
4: कुरान का एक हिस्सा पढ़ने के बाद आज 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे को ध्वज स्तंभ के ऊपर तक फहराया गया। इस साल पाकिस्तान की आजादी का 79वां सालगिरह है। मॉरिशस में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए ये गर्व का लम्हा रहा।
5: मेरे लिए पाकिस्तान मेरी जान है, मेरी आन है। मैं पाकिस्तान का एक फ़र्द हूँ, पाकिस्तान की एक फ़र्द हूँ। मैं बड़े अरसे के से यहाँ पे मुकीम हूँ, कोई 38 ईयर से। जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा तो मेरा दिल वहीं रह गया, लेकिन यहाँ मेरा जिस्म है, वहाँ मेरा दिल है। इस लिहाज से तो मैं यहाँ जब उदास थी तो मैंने शायरी शुरू कर दी।

0: अपने शायरी में मैंने अपना सारे जज्बात वो निकाले, और इस दिन के लिए भी मैंने अपने वतन पे लिखा है, बहुत कुछ लिखा है।
1: कुछ पाकिस्तानी नागरिक स्थानीय संस्कृति की तुलना पाकिस्तान की संस्कृति से करते हैं, जिससे उन्हें यहाँ अपने घर जैसा महसूस होता है।
2: हमारे यहाँ जो नमक होता है, सॉल्ट, मॉरिशस में लामिया से हम उसको निकालते हैं, सी से निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये माउंटेन से आता है, जिसको हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं। सो इट कम्स फ्रॉम देयर। सो इसके अलावा जो लोग हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम, जैसे आपके यहाँ, हमारे यहाँ मॉरिशस में भोजपुरी है, तमिल है, और बहुत सारी जुबानें हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर आप कराची में स्पेशली जाएंगे तो एक तमिल पूरी सोसाइटी है, एक हिंदू पूरी एक सोसाइटी है, सिंध के रीजन में उमरकोट, नोकोट, डिप्लो, ये सब इलाका जो है, यहाँ काफ़ी बड़ी हिंदू मेजॉरिटी है जो वहाँ रहती है। अगरचे वो पाकिस्तान के टोटल प्रोपोर्शन के हिसाब से एक माइनॉरिटी है, लेकिन अपने रीजन के हिसाब से दे आर अ गुड मेजॉरिटी।
1: उच्चायोग ने पाकिस्तान और मॉरिशस के बीच कायम मजबूत राजनयिक और आर्थिक ताल्लुकों पर जोर दिया। वर्तमान प्राथमिकता दोनों देशों के बीच तरजीही व्यापार समझौते को फिर से सक्रिय करना है, जिसकी आखिरी कार्य बैठक 2014 में हुई थी।
3: मॉरिशस वो वाहिद अफ्रीकन कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मुआहदा रखता है, और ये मुआहदा फ़िलहाल काफ़ी डोरमेंट है, इनएक्टिव है, लेकिन इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इसका 11वां सेशन जॉइंट वर्किंग ग्रुप के नाम से एक सेशन है जो कन्वीन होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, उसकी कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान जो एक्चुअल पोटेंशियल है ट्रेड का, उसको मज़ीद बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, जो इससे बहुत ज़्यादा मुमकिन होगी। फिलहाल हमारे पास मैंगोज़ आ चुके हैं मॉरिशस में, ये हमारा दूसरा साल था मैंगोज़ के इंट्रोडक्शन का, और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। अब हमारे पास पाकिस्तानी पेंट आ रहा है मॉरिशस में, पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक केबल्स आ रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, हमारे बहुत सारे ट्रेड डेलीगेट्स आ रहे हैं मॉरिशस से पाकिस्तान और पाकिस्तान से मॉरिशस।
1: समारोह में प्रवासी समुदाय द्वारा अपनी मातृभूमि के सम्मान में प्रस्तुत किए गए गीत भी शामिल थे।
4: हमारी अजमत का पासबां है।
5: पर्यावरण प्रिय पहल के तौर पर मॉरिशस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम अपना रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाते हुए सरकार सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा कारगर बनाना चाहती है। कर्रोजिल ट्रांसपोर्ट ने एलयूएस परियोजना की लॉन्चिंग की। इसके तहत 5 सालों के दौरान डीजल से चलने वाली 20 बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा, और ये बसें 5 मेगावाट सौर फोटोवोल्टाइक पैनल से चार्ज होंगी। मॉरिशस में आपको बता दें कुल 116 बसें इलेक्ट्रिक हैं। संतना पोस्नो की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: सार्वजनिक परिवहन के ऊर्जा परिवर्तन ने प्रोजेक्ट हेलियोस के शुभारंभ के साथ एक नया चरण पार कर लिया है। बस कंपनी रोजिल ट्रांसपोर्ट ने अगले 5 वर्षों के दौरान हर साल 20 नए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करते हुए अपने डीजल से चलने वाले बसों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना बनाई है। शुभारंभ के दौरान 2 इलेक्ट्रिक बसों और 1 इलेक्ट्रिक वैन का अनावरण किया गया, जो पहले से ही फ्लीट में मौजूद 8 इलेक्ट्रिक बसों में शामिल हो गई है।
6: Bien souvent, on a une perception qui ban bis on dirait ban pollueur et tout. So
1: nous रोजिल होल्डिंग लिमिटेड तथा ग्रुप के सीईओ डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा कहती हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि बसें प्रदूषण फैलाती हैं, इसलिए हमारा विजन बहुआयामी है, और जब परिवहन उद्योग के खर्चों को देखते हैं तो इसमें वृद्धि लगातार हुई है, मुनाफा कम हुआ है, इसलिए हमें लागत को कम करना होगा, और रोजिल में हम एक मुख्य परिवहन सेवा है, इसलिए हवा व पर्यावरण के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ये बदलाव नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर भी आधारित हैं। रोजिल ट्रांसपोर्ट वर्तमान में रिश्लू में लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में 5.5 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को ऊर्जा उपलब्ध कराना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। कंपनी जुलाई 2019 में 2 इलेक्ट्रिक बसों के साथ शुरू किए गए अपने पहले अनुभव पर भी भरोसा कर रही है। 7 वर्षों के संचालन के बाद कंपनी ने अपने ऊर्जा बिल में 60% और स्पेयर पार्ट्स पर होने वाले खर्चे में 70% की कमी की घोषणा की है। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद कहती हैं, सरकार की ओर से बस ऑपरेटरों के लिए एक बस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कायम है, जिसके तहत

फंड उपलब्ध है। पिछले वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री ने ये राशि बढ़ाकर 150 मिलियन रुपया कर दिया था। इस स्कीम के तहत केवल 11 बसें खरीदी गई हैं, जो बहुत कम है। मैं अन्य बस कंपनियों तथा निजी बस ऑपरेटरों से भी इस स्कीम में आने की मांग करता हूं। ये फंड सभी के लिए उपलब्ध है। कुल मिलाकर इस परियोजना में 2 बिलियन मॉरिशन रुपए का निवेश किया गया है। इस परियोजना

0: तेज करना चाहती है, साथ ही अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहती है।
1: गए कुछ हफ्तों से आपने जरूर रास्तों पर देखा होगा, सड़कों पर हम्प्स को और बड़ा किया जा रहा है और इन्हें लाल रंग से पेंट किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके लिए कितने पैसे लग रहे हैं, अंजू राम गुलाम ने जांच की है।
2: जून महीने से देश के कई सड़कों पर लाल रंग के नए स्पीड ब्रेकर नजर आ रहे हैं। ये पहले के मुकाबले ज्यादा ऊंचे और चौड़े हैं, इसलिए गाड़ी चालकों को इन पर खास ध्यान देना पड़ रहा है। देश भर में करीब 30 ऐसे स्पीड टेबल्स लगाए गए हैं। कट्रोबोन, एबेन, बोबासन, रोजिल, लामिचे, गोकुला, पोर्ट लुई और फ्लक समेत कई इलाकों में, खासकर स्कूलों और धार्मिक स्थलों के सामने इन्हें लगाया गया है। देश भर से हमें मांगे आती हैं, हम पहले जगह का अध्ययन करते हैं, खतरे वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन इन्हें लाल रंग क्यों दिया गया? अधिकारियों के मुताबिक ताकि वाहन चालक इन्हें दूर से देख सके और समय रहते अपनी रफ्तार कम करें। चालक को दूर से ही स्पीड ब्रेकर दिख जाता है और वाहन की रफ्तार कम करने का संकेत मिल जाता है। अब सवाल ये भी है कि बारिश में ये लाल रंग कितना सुरक्षित रहेगा, क्या इसकी सतह फिसलन भरी हो सकती है जैसा पहले हरे साइकिल ट्रक्स के साथ देखा गया था, और समय के साथ इसकी हालत कैसी होगी। ये एक खास पेंट है, इस स्पीड टेबल को इस तरह बनाया जाता है ताकि फिसलन नहीं हो, विशेषकर बारिश के समय भी। इन नए स्पीड ब्रेकर पर कितना पैसा खर्च किया गया है ये भी एक सवाल है। एक स्पीड ब्रेकर को बनाने में 1 लाख से 2 लाख रुपए लगते हैं। इसमें निर्माण कार्य, तारकोल बिछाने का काम, रोड साइन का खर्च भी शामिल है। अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है। 14 अगस्त तक देश में 85 जानलेवा सड़क हादसे हुए, जिनमें 88 लोगों की मौत हुई। इनमें 40 मोटरसाइकिल चालक, 11 चालक और 25 पैदल यात्री शामिल हैं। पैदल यात्री अभी सड़क पर सबसे ज्यादा खतरे वाली श्रेणियों में दूसरे स्थान पर
3: हैं।
2: अगर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से एक गाड़ी आ रही हो तो राहगीर की जान बच सकती है। ज्यादा स्पीड में जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। आने वाले महीनों में ऐसे और लाल स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे, लेकिन लाल रंग हो या काला, मकसद एक ही है, गाड़ी की रफ्तार कम करना और सड़क को ज्यादा सुरक्षित बनाना।
1: सरस्यू सागर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आते पीर 17 अगस्त से एक स्मार्ट पार्किंग प्रणाली कायम की जाएगी। 50 मिलियन रुपए की लागत पर ये सेवा लागू की जा रही है। इसके जरिए पार्किंग स्थल पर ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट दर्ज करना, खाली जगहें, मोबाइल पेमेंट की प्रक्रिया वगैरह उपलब्ध होगी। इस नई प्रणाली का मकसद पार्किंग में गाड़ियों की आवाजाही को ज्यादा आसान बनाना है और साथ में पार्किंग पर सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। सागाउनु आस्था गोविंद टामन।
0: हर दिन 50,000 वर्ग मीटर में फैली इस पार्किंग स्थल में लगभग 7,500 वाहनों की आवाजाही दर्ज की जाती है। सोमवार 17 अगस्त से वाहन चालकों को नई व्यवस्था के अनुसार खुद को ढालना होगा। प्रवेश द्वार पर 20 से अधिक कैमरे नंबर प्लेट को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से पहचानेंगे। इसके बावजूद वाहन का नंबर और एक QR कोड वाला टिकट जारी किया जाएगा। कार पार्क ऑफिसर जोगी स्वामी कहते हैं, इस टिकट पर एक QR कोड है और अब एक व्यक्ति काउंटर पर जाने की जगह पर अपने स्मार्टफोन पर इस QR कोड को स्कैन कर सकता है। 15 मिनट से कम समय यदि वह अंदर रहा तो वह बिना शुल्क चुकाए निकल सकता है, और यदि 15 मिनट से ज्यादा समय तक वह अंदर रहा तो वह QR कोड को स्कैन करने के बाद जूस, ब्लिंक, मोकास इत्यादि से पेमेंट कर सकता है, तथा उसके पास के बाद 15 मिनट होगा अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालने के लिए। नई व्यवस्था 2013 से इस्तेमाल की जा रही पुरानी प्रणाली की जगह लेगी, जो अब अपने निर्धारित उपयोग की अवधि के अंत तक पहुंच चुकी है। अटोल अब अधिक सुगम प्रवेश और निकास

0: बेहतर निगरानी और संचालन पर अधिक कड़ी नियंत्रण पर जोर दे रहा है। अटल की सीईओ लोमेश बंधु कहती हैं, हमने इस पार्किंग स्थल से यातायात कम करने की कोशिश की है तथा मॉरिशन जनता को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सेवा देने के लिए प्रबंध किया है। नई प्रणाली अधिक प्रभावी और सुचारू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग अब तक भुगतान नहीं करते थे उन्हें अब पेमेंट करनी होगी। एक नियंत्रण केंद्र लगातार पूरे संचालन की निगरानी करेगा। तकनीकी समस्या की स्थिति में वाहन चालकों की सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे।
1: गए 10 अगस्त से मुशरस में पानी को लेकर कई पाबंदियां हैं। खासतौर पर जो पानी पीने के लिए है उसे दूसरी वजहों से इस्तेमाल करना मना है। इनमें बागों को और ग्रीन स्थलों को पानी देना, गाड़ियों को धोना, इमारतों की सफाई करना और आंगनों तथा रास्तों को स्वच्छ रखने के लिए जल का प्रयोग करना। हर रोज 2 घंटे कम पानी की सप्लाई की जा रही है। इल्दी दुकुकुपर स्थित होटल अलग तरीके से इस संसाधन का संचालन कर रहा है। वो बारिश का पानी स्टॉक करता है, समुन्दर के पानी का डिसैलिनेशन करता है और इस्तेमाल किए हुए जल की रिसाइकलिंग भी करता है और ये संचालन होटल के बिजली उत्पादन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। और अब विदेश की खबरें। उत्तराखंड भारत में एक सुरंग के ढह जाने से 7 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी बताए जाते हैं। बचाव कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चीन के जेजियांग राज्य में भूस्खलन पेश आया, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 3 अन्य लोग गुमशुदा हैं। चीन के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जापान के पूर्व में राजधानी टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ वर्षाओं से कम 6 लोग जान से गए हैं और अन्य लोग 5 लोग जख्मी बताए जाते हैं। इस बारिश की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली की सप्लाई बंद है और टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे में करीब 7,000 मुसाफिर फंसे हैं क्योंकि यातायात ठप है। जापान में दर्जे 5 की आपात चेतावनी जारी की गई है। और अब करते हैं स्थानीय मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है और पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम पर असर करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात मौसम अच्छा रहेगा, बाद में पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटों में घने बादल होंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 21 से 24, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:31 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:56 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी शिव नाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: जगृति रोड सिच्यामिल थियोले में 71 साल के 71 years old जनाब इसाक मिर्जान, जनाब इसाक मिर्जान जो इस्लाम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 9 बजे इनके घर जगृति रोड सिच्यामिल थियोले से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंडे पापाय का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9 PM। रॉयल रोड काथोकोको में 73 साल के 73 years old श्री सत्यदेव मीटू जो चंद्रदेव के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और टैक्सी ड्राइवर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को 2 बजे इनकी पत्नी प्रतिमा मीटू के घर रॉयल रोड काथोकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 2 PM। B85 रेजिडेंस Saint-Jean-Quatre-Bonnes में 79 साल की 79 years old श्रीमती कुप

कुपामा सुबेन, श्रीमती कुपामा सुबेन पैदाइशी नाम रामसामी जो आईवी के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं अर्थ कल 2 बजे, कल दोपहर के 2 बजे इनके घर B85 रेजिडेंस सेंट जॉन क्वाट्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM एवेन्यू डी कोलंब मेडिन कॉन्डिमास्क में 76 साल की 76 years old श्रीमती इंदराबाई टुकुबा, श्रीमती इंदराबाई टुकुबा पैदाइशी नाम आबा जो आतोसोनी बाई के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल सवा ग्यारह बजे इनके बेटे बेतन टुकुबा के घर एवेन्यू डी कोलंब मेडिन कॉन्डिमास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेडिन कॉन्डिमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन tomorrow at 11:15 AM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

MBC Radio 24 hours a day. सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सोमवार 17 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक क्यूपिप में और आसपास के इलाकों में डनपत लेन, मिसिसिपी स्ट्रीट, रिविया सेश स्ट्रीट और जूरी लेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और सोमवार 17 अगस्त को दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्यूपिप में रेजिडेंस किंग जॉर्ज, स्पा शालम, एपिसरी, MFDP, फूड क्लिनिक और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की ओर से विज्ञप्ति। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। इसके चलते सोमवार 10 अगस्त से खेतों में सब्जियों की सिंचाई, कार वॉश द्वारा पानी का प्रयोग, वाटर प्रेशर से घर, आंगन, गाड़ी की सफाई के लिए पानी का प्रयोग, पूल को नल के पानी से भरना वर्जित है। पुलिस इन सभी नियमों के पालन के लिए नजदीकी से नजर रख रहे हैं। CWA सभी से सहयोग की मांग कर रहे हैं और आपके समझ के लिए धन्यवाद देता है। आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में एवं मोका आर्य जिला परिषद के सहयोग मॉरिशस आर्य युवक संघ अपना 34वां आर्य युवक दिवस एवं भारत की स्वतंत्रता की 71वें वर्षगांठ का आयोजन कर रहा है। शनिवार 15 अगस्त को शाम 4 से 5:30 बजे तक लावण्या के आर्य मंदिर में। श्रावण मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में कैथ को आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 27 शनिवार 15 अगस्त को रॉयल रोड कैथ में शाम 3 बजे यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। श्रावण मास के संदर्भ में मौडालबेय आर्य समाज रविवार 16 अगस्त को मौडालबेय आर्य समाज मंदिर में शाम 3 से 5:15 बजे तक श्रवानी यज का आयोजन कर रहा है। आचार्य होंगे भारत से आए डॉक्टर वेदपाल जी। श्रवण मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में शनिवार 15 अगस्त को बॉशेरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा सुबह 9 बजे से

0: दिन के 12 बजे तक सुर गिपाई वैदिक मंदिर शाम 3 बजे यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। प्रवचन आचार्य मोहन आचार्य श्रुत बंधु द्वारा किया जाएगा। श्रावण मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में रविवार 16 अगस्त को महर्षि दयानंद वैदिक मंदिर थ्रोबिश सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक यज्ञ होगा। सरस्वती वेद मंदिर अपदागुचिया शाखा नंबर 13 सुबह 10 बजे प्रवचन आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु द्वारा किया जाएगा। नादिस रोड हाइलैंड्स के बाल शिक्षा मंदिर द्वारा श्रावण मास के संदर्भ में 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 14 से रविवार 16 अगस्त तक, शनिवार 15 अगस्त को शाम के 4:30 बजे और रविवार 16 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भजले प्रभु का नाम एक बार फिर से आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके लिए चैनल प्यारे प्यारे भक्ति गान इस कार्यक्रम के अंतर्गत। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बस आज दिल से बस इतना कहिए कि हे प्रभु, रास्ते चाहे जैसे हो

भजले प्रभु का नाम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। श्रोताओं, महादेव के दरबार में देर हो सकती है लेकिन विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोलेनाथ के चरणों में झुककर देखिए, मन का बोझ अपने आप हल्का महसूस होगा।

भजले प्रभु का नाम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं रात्रि के हम सफर। एक ओम नमः शिवाय मन की बेचैनी को भक्ति की शांति में बदल देता है। यकीन हो तो आप जरूर इस मंत्र का जाप श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ आप जरूर इस मंत्र का जाप कीजिएगा। शिव जो है हमें सत्य की ओर जो है अग्रसर करने की प्रेरणा देती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल ही हमें प्राप्त होगा। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओ भजले प्रभु का नाम। श्रावण मास का पावन महीना है। कहते हैं भोलेनाथ को पाने के लिए बड़े बड़े दिखावे की नहीं, बस सच्चे मन और श्रद्धा की जरूरत है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और दिल से निकला हुआ ओम नमः शिवाय भी भक्ति को पूर्ण कर दी।

तो चलिए श्रोताओ, भजे प्रभु का नाम इस कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि महादेव के मस्तक का जो चंद्रमा है शीतलता का संदेश देता है, गले का नाग निर्भयता का और त्रिशूल हमें जीवन के संतुलन की याद दिलाता है। तो चलिए इन सभी से को आप अपने जीवन में उतारे हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

तू ही राजिक हर एक बशर, तू ही मालिक शाम सहर, तेरी हमद से बेदिलों को नूर, तू ही बख्श दे सभी का कसूर। तेरी ज़ात पाक है ऐ खुदा, तेरी शान सबसे जुदा जुदा। ये रेडियो मॉरिशस है उर्दू नशरियात में फिलिशप में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया और हमने आपको तमाम जहानों के

लिए रहमतें बनाकर भेजा। मसीह सामीन, दुनिया में अजीम लोग बहुत आए लेकिन रहमतुल आलमीन सिर्फ एक है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

जिस दिल में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होती, उस दिल की धड़कनों में वो लज्जत नहीं होती। सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इबादत का तरीक़ा सिखाया, बल्कि मोहब्बत, इंसाफ, अमानत, सब्र और रहम का दर्स दिया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो हैं जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो। कितना खूबसूरत पैगाम है ना। आज के दौर जब लोग अल्फाज से ज़ख्म देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट को भी सदका करार दिया। आइए इस बात का अहद करें कि हम हर रोज़ कम अज़ कम एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, उनकी सुन्नत पर अमल और उनकी शफाअत नसीब फरमाएं। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शरीक करें। अंजू की तकनीकी मदद रही है, मशकूर और ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी तड़का।

नमस्ते हमनी के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करत हैं जा और जहाँ हुई बजा हो जा खुश खुश रहिया जा ही उम्मीद करत हैं जा। रेडियो मर्श सौरी रेडियो मनोरंजन दोनों पर ही कार्यक्रम चला था और तो हर स्वागत करत हैं जा हमने ये कार्यक्रम में। अपन पसंद के गाना तो हमें से फरमाइश करिया जा 5251700055 पर SMS के जरिए और 4028085 पर कॉल के जरिए जैसे खुशी तैसे अपन फरमाइश करिया जा। जोन गाना खोजवा जा वो गाना हम तो रुके सुनवाब जा और अभी तो शुरुआत करब जा भैया के शादी से उमेश दन हो जे के गावली गाना है। चले भैया के शादी हो तो गाना खूब मजे से गई है जा।

तो चलो छोटी जी के फरमाइश पर हमने प्रस्तुत करे थे जगगीत गवाई होलाई गाना विभा चिंतामणि के गावल, और ये गाना हमने प्रस्तुत करे थे जा छोटी जी बगल से ललिता जी खातिर, प्रभावती जी, आत्माराम जी और हरी जी खातिर।

चला करी जा नारी के जय जयकार, नारी के जय जयकार हमने राकेश परमेश्वर जी के संगे संगे कर अब जाओ। और ये नारी ये दुनिया में बहुत बहुत तरह से आगे बढ़ता और ये दुनिया में सब कुछ संभाल लेवेला। जय जयकार करी जा नारी जी के। और ये गाना हमने सुनीता जी के पसंद पर मंगले हैं जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में चला हमने जन्मदिन के बधाई देला जा धनवंती राजा राम जी के। मौदालबिया के धनवंती राजा राम जी अपन 75वां जन्मदिन मनावत हवन काल 15 अगस्त के। उनका हमी के पूरा टीम बगल से बहुत बहुत मंगल कामना। तोहरा अच्छा सेहत मिली, तोहरा अच्छा प्यार मिली परिवार के, ये उम्मीद करते जा तोहर पूरा परिवार बगल से मंगल कामनाएं जन्मदिन के धनवंती राजा राम जी। गाना लीलो माथुर जी के गावल तोहर नाम करते है जाना।

पानी के बुलबुला बिस्वाजी महेश जी के गावली गाना हमने बजाओ था जा हमने के श्रोता आत्माराम जी के नाम आत्माराम जी बेले से गाना मंगले हुआ ना पर बहन सुदेवी ललिता छोटी प्रभावती जी के नाम और ये बेले के इस्नू परिवार के नाम

आप सुनिजा बड़का मामा के कर पत्तर याईगा ना सुरेश भोजू जी गैले अवन और मंगले होन हमसे विश्वानी दुमन जी वाकवा से गाना विश्वानी जी मांगत हवन अपन बहन इंदिरा शारदा खातिर अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर।

और अभी कुछ अभी 9:32 होल बाद सुनी जा हमनी गुर की समर की गाना पूर्णिमा फकीर आज गैले हवन और एकर फरमाइश नोवेल फ्रांस से गायत्री जी कर ले हवन अपन बेटा अजय खातिर माई बुके मामी कल्याणी मोहन जी खातिर मौतालों के भाभी शकुंतला खातिर और नोवेल फ्रांस के अपन सखी गीता बाई खातिर।

और चला हमनी के भोजपुरी तड़का के शान बढ़ाई ला जा राजीव मंगर जी के गावल गाना के संगीत धितना धितना। और ये गाना हमने बजावत है जा अमृता जी खातिर, पीतों के अमृता जी गाना मंगले हुआ सोनिया और परी खातिर, बेटा विहान और पतो मीनाक्षी खातिर।

0: के सवाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

और चलिए जरा हम बढ़ें, चला बढ़ी ला जा। हमने अभी श्रावण मास चला था और श्रावण मास के अवसर पर शिव जी के आराधना पूजा हुआ था और गुलशन जी कार्य में खूब हाथ बटावत हवन और इस संगे संगे अपन दोस्त परिवार लोग के संगे मिल के शिव जी की आराधना करत हवन। गुलशन जी सब जितना कोई परितालाब की ओर जाता उनकर खातिर एगो शिव जी पर आधारित गाना मंगले हवन। पूरा भोला परिवार खातिर और सब सब शिव भक्त लोग खातिर, सब श्रावण मास मनाए होला भक्त लोग खातिर ये गाना जो न सुनब जा शिव जी पर आधारित, यह कुणाल हीरीलाल जी के गावल।

0: अभी
1: भोजपुरी तड़का।
0: हाँ जी, भोजपुरी तड़का चलता अभी 9:50 हो बा। और बढ़ते बढ़ते हमने चली जा सुनीता ननकू जी के गाना बगल। ये गाना हमने बजावत है जाज सुनीता ननकू जी के गावल सुनीता जी माफ़ करिए सुदेवी जी के नाम सुदेवी जी मंगले अवनी गाना अपन बहन ललिता खातिर थयोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेगा के रामरतन परिवार खातिर त चला चमेली चमेली गाना सुनी जा जहाँ घूमे हन घूमे चली जा।

0: भोजपुरी तड़का।
1: अभी जन सुनवाओ अब जाता लो के वो एगो शिव जी के गाना हलीलो माथुर सुकन जी गैले हवन शिव जी के नाम लेवत हैं जा शिव जी के आराधना करत हैं जा गाना हमने तयोले के ललिता जी खातिर बजावत हैं जा उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी देवी ना नीता खातिर छोटी जी प्रभावती जी आत्मा राम जी हरि जी खातिर शुक्लाल मौसी और उषा लोकाना जी खातिर।

संतोष महादेव जी के गावल चढ़ल बा मड़मिट में गरम पानी चलाए हमने भी साथ साथ ये गाना गायला जा और ये गाना हमने बजावत है जा सुनीता जी के फरमाइश पर गौ गुप के सुनीता जी गाना मंगले हुआ अपन बहन विमाला और अमृता खातिर

सिया मांगे अयोध्या के राज, ई गाना हमने सुनत है जा अभिमन्यु हरपाल जी के गावल, और ई गाना हमने कल्याणी जी खातिर बजावत है जा। कल्याणी जी गाना मंगले हवन सत्यानंद साली खातिर, गीता राधे की सुन और कर ले कालू खातिर, अंजू और बड़की मीनोवा खातिर।

चला पाई के सुनीता जी के नाम करते हैं जाई गाना, राजेश कोप की गावल गाना और खत लिखे के ई जन जज्बाबा। चला सुनी जा

त खत लिखे के जज्बा अभी लिख चाहे ला रहे कि खत तनी कमती हो गल बा, बाखिर खत लिखे के मजा ही कुछ और रहा। अभी 10:11 हो बा और ये आगे बढ़ जब हमने दादा की कहानी दादी की कहानी सुने के सुनते सुनते ये गाना हमने के सुनावत हवन गासन सिंगारों जी और मंगले हवन से सुयाक से श्रीमती जी चंद्रमुनि परिवार खातिर और हमने के सब श्रोता लोग खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का में अब रिकुत हमने अंबे मैया के को गाना सुनवा हम जाता हूँ लोग और गीत सुनीता नन कुछ गैले हवन अभी पूजा के माहौल चलता त राजन लक्ष्मण जी लाफलोहा से गाना मंगले हवन अपन पत्नी माला खातिर बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर बहिन मानती खातिर भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर

राजकमल चिंतामणि जी के गावल गांव के लाफों तेनुआ में, और ये गाना हमने बजवा थे जा उर्मिला जी खातिर। उर्मिला जी गांव पे से गाना मंगला हुआ अपन चारों बहन खातिर, संध्या, मेधा और मनीषा और सुनीता खातिर, अपन बचपन के याद दिलावेला, उनका बचपन के याद दिलावेला ये गाना उन लोग की।

और अब चला सुनी जा हमनी रंभा राम तोहर जी के हवे गाना जिन सब कोई सुन सुन के खूब ठुमका लगावेला। रेखा जी गाना मंगले हवन बॉम्बू से अपन बहिन मीना के जन्मदिन के अवसर पर अपन भाई विनेश और विजय तथा माता पिता के तरफ से।

और अब जुन गाना सुने थे जहाँ रेशमा भी कंजी के गावल है इपिनी हो गई ले इश्क के मामला ये गाना हमें बजाओ थे जा विनीता के नाम विनीता जी गाना अपन बहन बबीता के नाम कर लिया हुआ और अपन भाई राघव के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय पूरा हुआ था। अभी 10:53 होल पा ओरिजिन गाना अभी तो लोके सुना अब जा वो गाना हमने के कार्यक्रम के अंतिम चरण लिख चलाए और ये हमने के कार्यक्रम 11 बजे लिख के है। 11 बजे सुनिया जा आज के हमने के पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल और सुनहरे पल कार्यक्रम लेके आई हन गिनीशा। हमने के मुलाकात आवथला हो दिमाग के फजीर के मिलब जा। तब तक खातिर हम सुरेखा तौर से आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ,
1: जहां सुर हो, संगीत हो और दिल से निकले एहसास हो, वही तो है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत सा सफर आपके और हमारे बीच में। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम।

हर गीत एक एहसास है, हर सुर एक याद है, और आज का हर पल आपके नाम है सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। बिल्कुल, आज का दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, कुछ मिनट अपने दिल के लिए जरूर निकालिए और सुनिए वो गीत जो

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

कुछ गीत हमेशा अमर रहते हैं और आज हम उन्हीं अमर नगमों को लेकर हाजिर हैं। बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए और इन गीतों के साथ अपने जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को फिर से महसूस कर लीजिए। आप सुन रहे हो सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

पुराने बॉलीवुड के गीतों की मिठास आज भी उतनी ही ताज़ा हैं जितनी पहले थी, तो चलिए उसी मिठास का मजा ले लेते हैं। वैसे हर धुन में छुपा है एक रिश्ता और हर लफ्ज में छुपा है एक जज्बात। ये सफ़र आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा, सिर्फ और सिर्फ सुनहरे पर। तो चलिए जी, हमारी तरफ से अगला नगमा सारे सुनने वालों के नाम जो बड़े शिद्दत से गिनेशा का साथ दे रहे

जो गीत माँ बाप ने सुने, जो हमने सुने और जो आज भी नए लगते हैं, उन्हीं गीतों का खूबसूरत संगम है सुनहरे पल में। आज के गीत आपको मुस्कुराएंगे, आज के गीत आपको मुस्कुराएंगे भी और शायद थोड़ा इमोशनल भी कर देंगे। बस दिल खोल कर सुन लीजिए और यूं ही साथ देते रहे ऑन रेडियो मॉरिशस।

म्यूजिक कभी बुरा नहीं होता है, अच्छे गीत हमेशा जवान ही रहते हैं और इसी खूबसूरत एहसास के साथ इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे ये जो सुनहरे पल हम लेकर आते हैं, यादगार बना देते हैं पुराने गीतों के साथ, आइए इन नगमों के साथ दिल को सुकून देते हैं। और अगला नगमा आप बस सुन लीजिए, आपके लिए ही है।

मानना तो पड़ेगा कि बहुत सारे ड्राइवर्स लोग जो हैं हमारा साथ देते रहते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस इस वक्त, पुराने गीतों को एंजॉय करते रहते हैं और साथ साथ में इतने सारे मॉरिशियंस हैं डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब साथ निभाते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए ये अगला नगमा हमारी तरफ से आप लोगों के नाम, खासकर हमारी तरफ से।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गनीशा टू से गुड बाय टू यू. हम बाय बाय इसीलिए बोलते हैं ताकि हम दोबारा वापस आ सके. मिलेंगे फिर से एक और सुनहरे पल के खूबसूरत से सफर में. तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

Yeah.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: सीएनजी रेकी किट्टा सीवारा दौड़ चिट्टा।

0: फिर वही फुर्सत के रात।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो भाई भेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।